0: श्रोताओं, भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब समय है कार्यक्रम चिंतन का। आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर सुरेश सम्राट से उनके विचार।
1: जीवन के समस्त सुखद एहसासों का नाम ही प्रेम है। प्रेम श्रेष्ठतम मूल्यों, व्यवहारों और प्रवृत्तियों के समवेत स्वरूप का एकमात्र पर्याय है। सुख, आनंद, सहिष्णुता और सद्व्यवहार का मार्ग प्रेम से ही शुरू होता है। जहाँ प्रेम होता है, वहाँ शांति और संतोष का स्थायी आवास होता है। प्रेम से सहज सरल कुछ भी नहीं और प्रेम से महान भी कुछ नहीं होता। प्रेम के लिए न धन की जरूरत होती है न बल की। प्रेम की इस सहज सरल और सर्वव्यापकता के बाद भी जब कहीं प्रेम का अभाव दिखता है तब अचरज होता है। लेकिन यह भी सच है कि प्रेम उतना सुलभ भी नहीं रहा है जितना वह सहज है। उसकी इस दुर्लभता के पीछे वे कारण महत्वपूर्ण हैं जो व्यक्ति को प्रेम तक पहुंचने में अवरोधक होते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, अशांति, प्रतिस्पर्धा, अहंकार, असंतोष, बदले की भावना और असहिष्णुता जैसी प्रवृत्तियां ही वे अवरोधक तत्व हैं जो प्रेम को पाने और प्रेम देने के बीच रोड़ा बन जाते हैं। यूँ प्रेम के अनेक रूप बताए जाते हैं, लेकिन उसका मूल तत्व एक ही है, परस्पर सद्भाव, समर्पण और सेवा। इसके अलावा आस्था, विश्वास, निष्ठा, सत्य और ईमानदारी सदैव इसके वाहक होते हैं। शुभ और मंगल कामना ही इसकी मूल सृष्टियाँ होती हैं। प्रेम के ये तात्विक अंश जहाँ भी असंतुलित और असंयत हो जाते हैं, वहीं प्रेम की भावना नष्ट होने लगती है।

0: शीस देई ले जाए। वस्तुतः प्रेम खरीदा नहीं जा सकता, वह तो अपने आप को अर्पित करता है। प्रेम बलिदान है, आत्मत्याग है, ममत्व का स्मरण है। प्रेम असीम विश्वास, असीम धैर्य और असीम बल है। वह आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। प्रेम का नाता संसार के सभी संबंधों से पवित्र और श्रेष्ठ होता है, और इसीलिए प्रेम की पवित्रता का इतिहास ही मनुष्य की सभ्यता का इतिहास है, उसका जीवन है। वस्तुतः जीवन में प्रेम का वही स्थान है जो शरीर में हृदय का। जब हृदय गति रुक जाती है तो शरीर भी छूट जाता है। इसी प्रकार प्रेम का अभाव होते ही जीवन खोखला हो जाता है। नीतिकारों ने भी कहा है कि प्रेम जीवन का प्राण है, जिसमें प्रेम नहीं वह केवल मांस से घिरी हड्डियों का ढांचा है। कबीरदास ने कहा है, जाघट प्रेम न संचरे, सो घट जान मसान, जैसे खाल लोहार की, सांस लेत बिन प्राण। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेम जीवन में माधुर्य का रस घोलता है। जैसे मरुस्थल के सूखे हुए ठूंट में कोपलें नहीं फूट सकती, वैसे ही प्रेम रहित मनुष्य का जीवन कभी भी फल फूल नहीं सकता। प्रेम ही जीवन का आंतरिक सौंदर्य है। प्रेम के अभाव में सभी बाहरी सौंदर्य अर्थहीन हो जाते हैं। जिसका जीवन प्रेम के रस में पगा होता है, वह संसार में कहीं भी क्यों न चला जाए, उसे कोई संकट नहीं आता। सामाजिक चेतना में भी प्रेम की विशिष्ट भूमिका होती है। परस्पर प्रेम के बल पर समाज में समरसता लाई जा सकती है। जिस समाज और जीवन में प्रेम होता है, वह स्फूर्ति से भरा रहता है। इसीलिए जो दूसरों के प्रति प्रेम का व्यवहार करता है, वह सर्वत्र आदर पाता है, और इसके विपरीत जो दूसरों से घृणा करता है, वह स्वयं भी तिरस्कृत हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास ने इस सत्य को यूँ व्यक्त किया है, आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे में।
1: अभी आप चिंतन में सुन रहे थे डॉक्टर सुरेश सम्राट से उनके विचार। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ।

श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ करते हुए संत गुरु तथा देव समाज की वंदना के साथ गोस्वामी तुलसीदास ने उसी विनीत भाव से खल वंदना भी की है। उन्होंने दुष्टजन को विनम्र प्रणाम किया है, जो बिना प्रयोजन ही हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं, जिनको दूसरे के उजड़ने से हर्ष तथा बसने से विषाद होता है। दुष्टों की ये रीति है कि वे शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर ईर्ष्या की आग में जल उठते हैं, किंतु संतों और दुष्ट जन में एक लक्षण समान होता है। जहां संत जन का विछोह प्राण हर लेने वाला होता है, वहां असज्जन का मिलना दारुण दुख देने वाला होता है। गोस्वामी तुलसीदास ने खल वंदना तो की है, किंतु अत्यंत प्यार से पाले जाने पर भी क्या कौवे मांस खाना छोड़ देते हैं?

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है, समय है कार्यक्रम कृषि चर्चा का। आज सुनिए पशुपालन व्यवसाय से अधिक लाभ कैसे विषय पर एसपी सिंह से सामयिक चर्चा।
1: पशुपालकों को सलाह है, डेयरी उद्योग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जिस तरीके से देख रहे हैं आप, जनसंख्या बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, तो डेयरी दूध और दुग्ध उत्पाद हैं उनकी मांग बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही है और आने वाले समय में इनकी मांग खत्म नहीं होनी है। तो हर गांव, कस्बा, शहर, हर जगह दूध उत्पादों की मांग है और इसका भविष्य उज्जवल है, बशर्ते इसको वैज्ञानिक ढंग से किया जाए। तो पशुपालक भाई सबसे पहले ध्यान रखें, जैसे मैंने बताया कि आप प्रजनन पर विशेष ध्यान रखें, अच्छी नस्ल का पशु रखें। नस्ल अच्छी नहीं है तो आप कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से अच्छे नस्ल के सांड से उसको गर्भाधान कराएं तो नस्ल सुधार हो। दूसरी चीज़, खिलाई पिलाई पर विशेष ध्यान रखें, आप विशेषकर संतुलित आहार, संतुलित पशु आहार और संतुलित हरे चारे का विशेष ध्यान रखें। साथ ही आवास प्रबंधन पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अक्सर कर गांवों में देखा गया पशुपालक पशु तो पाल लेते हैं पर आवास बहुत अच्छा उनका अच्छा नहीं होता, कहीं छप्पर के नीचे या वैसे ही गंदगी पड़ी है। आवास न अच्छा अच्छा न होने की वजह से भी पशुओं को बहुत सारी बीमारी लग जाती है। साफ सफाई अच्छी नहीं है पशुशाला की, गंदगी रहती है, कीचड़ रहती है, तो एक बीमारी बहुत बड़ी तेजी से पनप रही है जिसको थनेला के नाम से जानते हैं, आपके प्रबंधन से ही जुड़ी बीमारी है। तो पशुशाला साफ स्वच्छ सूखी रखें और पर्याप्त स्थान हो जिससे पशु तनाव में न आए। एक आदर्श पशुशाला के लिए, एक पशु के लिए, गाय भैंस के लिए जो आदर्श स्थान है वो 12x12x12 यानी 12 फुट लंबा, 12 फुट चौड़ा, 12 फुट ऊँचा पर्याप्त स्थान रहता है एक पशु के लिए, खासकर एक गाय भैंस के लिए। वाह्य और अंति परजीवी ये पशुओं के बहुत बड़े शत्रु हैं। इनका आप जो चिकित्सा के माध्यम से इलाज कराना चाहें डॉक्टर से, इलाज इनका संभव बहुत मुश्किल है। आप इसको प्रबंधन में शामिल कर लीजिए। तो जैसे आप पशु के, दुधारू पशु के पेट में कीड़े हैं तो उस दुधारू पशु के दुग्ध उत्पादन का 40% हिस्सा पेट के कीड़े खा जाते हैं, क्योंकि जो दूध बनता है दूध खून से बनता है। दूध की जो मोटी सी नस होती है, दूध की नली नस कह देते हैं हम उसको, उसमें खून के मादा है और खून जब अयन में आता है तो मेमोरी ग्लैंड होती हैं, दूध ग्रंथियां होती हैं, उस दूध खून में से ग्लूकोज और कैल्शियम निकल के अलग होता है। ये कीड़े उस खून को चूसते रहते हैं, खून चूसते हैं, फलस्वरूप खून की कमी हो जाती है, दूध खून बन रहा है, दूध का निर्माण कम होता है, कई सारी बीमारियां लगती हैं। इसलिए हर दुधारू पशु को या जो 1 साल से बड़े पशु हैं, हर 4 महीने के अंदर पर उस पशु को उसके शरीर भार के अनुसार पेट के कीड़ों की दवा एडबंडाजॉल

0: साल्ट के नाम से आती है, उसको खिलाएं। यदि गर्भवती पशु है तो गर्भ ठहरने के पांचवें महीने पर और ब्याने के एक महीने बाद गर्भवती पशु को फेनोवार नाम की साल्ट की दवा आती है उसको खिलाएं, तो उससे जो है गर्भ भी सुरक्षित रहेगा और गर्भावस्था के दौरान जब हमारे पशुपालक भाई पेट की कीड़ों की दवा देंगे तो उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसके पेट के कीड़े भी गर्भावस्था के दौरान ही खत्म हो जाएंगे। और बाह्य परजीवियों के बचाव के लिए पशुपालक भाइयों के बाजार में बहुत सारी दवाएँ आती हैं, उस दवा को 1 लीटर पानी में 2 ml के अनुपात में मिलाया जाता है, पूरे शरीर पर ऐसे चुपड़ना है आँख नाक मुँह छोड़ते हुए, और चुपड़ने के बाद 1 से 1.5 घंटे बाद आप नहला देंगे तो बाह्य परजीवी खत्म हो जाएंगे। आज बाजार में कई सारे इंजेक्शन के रूप में भी अंतः परजीवियों बाह्य परजीवियों की दवा आती हैं, तो जानकार कोई व्यक्ति है तो ये क्योंकि इंट्रामस्कुलर लगता है, मांस और आपकी खाल के बीच में इंजेक्शन लगता है, तो इस इंजेक्शन को लगवा के भी इसका निदान कर सकते हैं। पर ध्यान रखें जो गर्भवती पशु हैं उनको इस इंजेक्शन का प्रयोग न करें क्योंकि थोड़ा गर्म होता है तो वो दिक्कत भी दे सकता है, परेशानी भी पैदा कर, वो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से भी संपर्क कर सकते हैं, हम उनको भी दवा बता सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से पशुपालन प्रबंधन के रूप में बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। सबसे पहला हम किसानों को प्रशिक्षण देते हैं, अपने केंद्र पर बुला के प्रशिक्षण देते हैं, जैसे ऑन फार्म ट्रेनिंग कहते हैं। दूसरा हम गांवों में जाके किसानों के घर पर जाके किसानों के खेत पर जाके वहाँ किसानों को प्रशिक्षण देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन प्रशिक्षणों में, क्योंकि पशुपालन कार्य में सबसे ज़्यादा हमारी महिलाएं माता बहनें करती हैं, महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते हैं कि महिलाएँ हमारी शिक्षित हों, महिलाएँ पशुपालन की तकनीकी को सीखें और वो उसे अपनाएं। तो केंद्र पर प्रशिक्षण और केंद्र से बाहर प्रशिक्षण, पूरी तकनीकी ज्ञान उसमें बताते हैं। इसके अलावा हम किसानों के यहाँ प्रदर्शन भी आयोजित करते हैं, जो भी तकनीकी हमारी कृषि शोध संस्थानों में विकसित हो रही है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो शोध संस्थान है वो तकनीकी हमारे केवीके पे आती है प्रसार प्रसार के लिए, केवीके के काम ही प्रसार प्रसार है। तो उस तकनीकी के जो प्रदर्शन हैं, तकनीकी ज्ञान है, उनके प्रदर्शन जो हम किसान की भैंस पर किसान की गाय पर डालते हैं। जैसे दूध बढ़ाने का एक कार्यक्रम है तो वो हमने तकनीक का डाला, उसका दूध बढ़ता है, किसान को तुरंत दिखता है, किसान उस तकनीक को बहुत जल्दी अपनाता है और प्रयोग में लाता है। गाय के दूध का बहुत अच्छा छेना बनता है, पनीर बना सकता है, दही बना सकता है और इसको जो है घी बना सकता है, खोआ बना सकता है, इनको जो है बाजार में आप बेच भी सकते हैं। बाजार में आप पहले से संपर्क कर लें तो बहुत सारी डेयरियां बाजारों में चल रही हैं, बहुत सारे बड़े बड़े कैटर्स हैं, वो सीधे आपसे संपर्क कर लेंगे और आप अच्छा पनीर और छेना और घी दही बेच सकते हैं।
1: कृषि चर्चा में अभी आपने सुना पशुपालन व्यवसाय से अधिक लाभ कैसे विषय पर SP सिंह से सामयिक चर्चा। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है, समय है सूचना परक कार्यक्रम दर्पण का। श्रोताओं कुछ रोजगार सूचनाओं की ओर ध्यान देंगे। सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2026 के लिए 7,150 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन 19 मई से प्रारंभ हो चुके हैं और अंतिम तिथि 8 जून 2026 है। न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष इस आवेदन के लिए रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। श्रोताओं नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी नालको ने 268 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 जून 2026 है। इसके लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अलग अलग पदों के लिए आयु अधिकतम 27 से 40 वर्ष रखी गई है। आवेदनकर्ता को जनरल OBC EWS कैटेगरी में 100 रुपये फीस, SC ST PH कैटेगरी में 0 फीस रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए आप नालको NALCO की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इसके साथ ही श्रोताओं इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना ने FCAT एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट 2026 के लिए 142 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। न्यूनतम आयु फ्लाइंग बैच कैंडिडेट्स के लिए 20 वर्ष है और अधिकतम 24 वर्ष। इसी के साथ फॉर ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 26 वर्ष।

0: 2026 के लिए यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CTET के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस टेस्ट के जरिए आप CBSE स्कूल्स में पढ़ाने के लिए दावेदारी कर सकते हैं, मतलब आप उसके काबिल माने जाते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 जून 2026 है। अधिक जानकारी के लिए आप CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इसके साथ ही राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड यानी RSSB ने कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के 3,951 पोस्ट के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। अंतिम तिथि 23 जून 2026 है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए आप RSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। श्रोताओं, भारतीय रेल ने रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के जरिए असिस्टेंट लोको पायलट के 11,127 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन 15 मई से प्रारंभ हो चुके हैं और अंतिम तिथि 14 जून 2026 है। जनरल OBC कैंडिडेट्स के लिए ₹500, SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए ₹250 ये फीस रखी गई है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष है। अधिक जानकारी के लिए आप RRB यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इसके साथ ही SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल के 12,256 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 जून 2026 है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और पोस्ट अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग इसकी अधिकतम आयु है। जो अधिकतम आयु है वो 32 वर्ष रखी गई है। जनरल OBC EWS के लिए ₹100, SC ST और सभी फीमेल्स के लिए शून्य, PH कैंडिडेट्स के लिए फीस शून्य है। अधिक जानकारी के लिए आप SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। सूचना परक कार्यक्रम दर्पण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को है। संस्कृत में समाचार और उसके ठीक बाद हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: चकह पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। केन्द्रेण अनुप्रवेशेण अन्यैः कारणैः च जनसांख्यिकीय परिवर्तनस्य समाह्वानान् निवारणाय उच्चस्तरीय समित्याः निर्माणं विहितम्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः ह्यः अवदत् यत् सर्वोच्च न्यायालयस्य पूर्व न्यायाधीशः प्रकाश प्रभाकर नावलेकरः समित्याः अध्यक्षः भविष्यति। जनगणना आयुक्तेन सह पूर्व IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तवः, अर्थशास्त्री डॉक्टर समीका रवि इत्येषा च समित्याः सदस्य रूपेण नियुक्तः अस्ति। गृहमन्त्रालयस्य संयुक्त सचिवः एकः वैदेशीयः समित्यां सदस्य सचिव रूपेण कार्यं करिष्यति। गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन उक्तं यत् ड्रोन यन्त्रैः मादकद्रव्याणां शस्त्राणां च तस्करणं निवारयितुम् अग्रिमेषु षण्मासेषु एव सर्वकारः ड्रोन अवरोधप्रणाल्याः नियोजनं प्रचालयिष्यति। राजस्थानस्य बीकानेर जनपदस्य सांचू सीमा पोस्ट इत्यत्र BSF सैनिकान् सम्बोधयन् सः अवदत् यत् यद्यपि सीमापारात् उद्भूताः विभीषिकाः महत्वपूर्णानि एव सन्ति, तथापि देशस्य अन्तः एतादृशानां विभीषिकाणां साहाय्यं कुर्वताम् आन्तरिकतत्त्वानां विषयेऽपि समानं ध्यानं दातव्यम्।
2: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
1: ऑस्ट्रेलिया देशस्य विदेश

0: मन्त्रिणा पेनी वोङ्गः इत्येषा ह्यः नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह मिलितवती। श्रीमोदी रक्षा व्यापार प्रौद्योगिकीत्यादिषु क्षेत्रेषु वर्धमानस्य भारत आस्ट्रेलिया व्यापक सामरिक सहभागित्वस्य विषयेपि आपूर्तिशृङ्खलायाः स्थितिस्थापकतायाः विषये च चर्चितवान्। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् भारत आस्ट्रेलिया देशौ स्वतन्त्रं मुक्तं सुरक्षितं समृद्धं च हिन्द प्रशान्त क्षेत्रस्य कृते निरन्तरं कार्यं करिष्यतः। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः सुश्री वोंग इत्यनया सह 17वें विदेशमन्त्रिणां फ्रेमवर्क संवादेत्यस्य सह अध्यक्षतां कृतवान्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् ते हिन्द प्रशान्त प्रदेशे पश्चिम एशियायाः स्थितिम् अन्येषु क्षेत्रीय वैश्विक बहुपक्षीय विषयेषु च मतानाम् आदान प्रदानं कृतवन्तः। भाजपेति दलाध्यक्षः नितिन नवीनः ह्यः नवदिल्ल्याः दलस्य मुख्यालये नो बीजेपी इति उपक्रमस्य अन्तर्गतं 12 देशानाम् अभियानप्रमुखैः सह वार्तालापम् अकरोत्। श्रीनवीनः ब्राजील, जर्मनी, इण्डोनेशिया, मलेशिया, मॉरिसस, न्यूजीलैंड, सेशेल्स, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम इत्यादीनां देशानां प्रतिनिधीनां स्वागतम् अकरोत्। तथा च भाजपेति दलस्य यात्रायाः विचारधारायाः संघटनात्मक शक्तेः लोकसेवायाः प्रतिबद्धतायाः च विषये अवधानं प्रदत्तवान्। केन्द्रीय वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूष गोयलः दृढविश्वासं प्रकटितवान् यत् भारत कनाडा आर्थिक सहभागित्वस्य अग्रिमः अध्यायः विश्वासेन प्रेरितः भविष्यति, येन द्वयोः राष्ट्रयोः संयुक्त समृद्धिः भविष्यति। गतरात्रौ कनाडा देशस्य टोरेंटो नगरे राजनैतिक पुनरुत्थापनात् वाणिज्यिक वितरण पर्यन्तम् इति मन्त्रिस्तरीय पूर्ण सम्मेलनस्य उद्घाटन सत्रं संबोधितवान् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉक्टर शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ विदेश मंत्रियों की 17वें द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। भारत और रोमानिया ने कल नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक की। इसमें दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के बारे में बातचीत की गई। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता विकास और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर आपसी रक्षा सहयोग योजना को अंतिम रूप दिया। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। बोर्ड ने कहा कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को अपनी मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी और इसकी कुल क्षमता 1200 किलोवाट होगी। IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में शुरू होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा।

श्रोताओं, सबसे पहले प्रातः 7:10 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किए जाएंगे। उसके ठीक बाद प्रातः 7:20 पर आप सुनेंगे सुबोध चतुर्वेदी से उनकी कहानी एक और चिट्ठी। फिल्म संगीत का लुत्फ प्रातः 7:30 से लिया जा सकेगा। फिल्म संगीत का एक और कार्यक्रम जिसमें हम आपकी फरमाइश पर गीत सुनवाते हैं, कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश, सुनिए प्रातः 10:05 से। प्रातः 8:00 समाचार प्रभात और उसके ठीक बाद प्रातः 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़, दोनों ही न्यूज़ बुलेटिन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगी। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे भानुप्रिया राय से उनके गाए कुछ भजन प्रातः 8:30 से। इस घंटे की खास खबरों का अनुप्रसारण भोपाल से प्रातः 8:58 पर किया जाएगा। प्रातः 9:00 आप सुनेंगे सूचना समाचारों और जानकारी पर केंद्रित आपका पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। प्रातः 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे नासिर अहमद से मैंडोलिन वादन राग अहीर भैरव में। प्रातः 10:00 जिले की चिट्ठी का अनुप्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जाएगा। प्रातः 10:58 पर आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। श्रोताओं, प्रातः 11:00 से सभा की समाप्ति तक सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से ही अनुप्रसारित किए जाएंगे। दोपहर बाद 12:58 पर आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें। दोपहर बाद 1:00 महिला साथियों का कार्यक्रम महिला कार्यक्रम, यह कार्यक्रम आज आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति होगा। इसमें चर्चा के विषय होंगे फिजूल खर्ची से बचने के उपाय, बकरीद का संदेश, गर्मियों में हरी भरी रहे बगिया और चहचहाए पक्षी। इसके साथ ही सुश्री नीरजा वर्मा से उनकी कहानी वो सांवली लड़की। दोपहर बाद 1:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम सुना जा सकेगा। यह कार्यक्रम भी आज आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति होगा। कलाकार होंगी विजयलता पाराशर। उसके ठीक बाद दोपहर बाद 1:45 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम हमारे श्रोता सुन सकेंगे। यह कार्यक्रम भी आज आकाशवाणी ग्वालियर की ही प्रस्तुति होगा। कलाकार होंगी वैशाली मोघे। दोपहर बाद 2:58 पर इस घंटे की खास खबरें सुनी जा सकेंगी। श्रोताओं, हमारी सायंकालीन सभा भी पुनः आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से ही अनुप्रसारित होगी। सायं 5:02 पर युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। यह कार्यक्रम आज आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति होगा। चर्चा के विषय होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि, भारतीय लोकतंत्र और युवाओं की भूमिका, शिक्षा ज्ञान और युवाओं के सपने, पर्यावरण। इसके साथ सायं 6:00 NCERT का प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग सुना जा सकेगा। सायं 7:20 पर ग्रामीण श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम चौपाल। चर्चा के विषय होंगे आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ईद उल जुह बकरीद, इसके साथ ही खेती का सशक्त आधार बीज, इस विषय पर डॉक्टर रिया मिश्रा से सोहन सिंह की बातचीत। रात्रि 10:30 पर आप सुन सकेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। आज का कार्यक्रम विवरण यहीं समाप्त हुआ।

0: हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:10 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार अब से कुछ ही समय में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।
1: से बोल रहे हैं। सुबह के 7:10 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्री। ओलंपिक खेलों की सूची में योगासन को शामिल करने के प्रयास होंगे, कहा केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने। भोपाल में आज होगा जल संरक्षण पर केंद्रित सदा नीरा समागम का शुभारंभ। और आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला। अब समाचार विस्तार से। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी पोंग ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इस दौरान रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित करने जैसे क्षेत्रों में भारत ऑस्ट्रेलिया की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया एक स्वतंत्र, खुले, सुरक्षित और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री से जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भी मुलाकात की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे परे शांति, स्थिरता तथा समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के प्रयास किए जाएंगे। डॉ. मांडविया ने कल नई दिल्ली में कहा है कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। ये देश की पारंपरिक स्वास्थ्य पद्धति को वैश्विक खेल के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि योगासन देश की सॉफ्ट पावर को दर्शाता है और विश्व भर में शारीरिक फिटनेस, मानसिक स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देने का एक माध्यम बनकर उभरा है।
1: योग ये हमारे देश की संस्कृति भी है, हमारी जीवन शैली भी है। आज से सदियों पहले योग भारत से निकल के सारे दुनिया में गया है। फिर से योगासना की फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप करके उसको पुनः भारत में एक बड़ा कार्यक्रम के रूप में आयोजित करेंगे। वर्ल्ड चैंपियनशिप है, अभी प्रारंभ भारत से कर रहे हैं और सारी दुनिया के अलग अलग कंट्री में उसको भविष्य में करा जाएगा।
0: प्रदेश में जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। 25 मई तक 2,39,00,000 से ज्यादा मकानों की गणना पूरी हो चुकी है। 1 मई से शुरू हुआ ये काम 30 मई तक पूरा कर लिया जाएगा। नोडल अधिकारी शिल्पा गुप्ता ने बताया कि इस बार पूरी प्रक्रिया डिजिटल है। प्रगणक घर घर जाकर HLO ऐप के जरिए जानकारी दर्ज कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान जन आंदोलन बन गया है। जनता की सहभागिता से जल संरक्षण में मध्य प्रदेश देश में अग्रणी राज्य बन गया है। डॉ. यादव कल उज्जैन में शिप्रा तट पर शिप्रा तीर्थ परिक्रमा के समापन समारोह में मां शिप्रा को 351 फीट की चुनरी अर्पित करने के उपरांत जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में भारतीय नौसेना के बैंड ने रामघाट पर मनमोहक प्रस्तुति दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अन्य अतिथियों के साथ अंतरजली यात्रा, श्री शिप्रा महिमा और ये है मोहन की सरकार पुस्तकों का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आगामी सिंहस्थ के दौरान शिप्रा नदी की घाट पर श्रद्धालुओं को स्वच्छ जल की उपलब्धता आयोजन को पावन बनाएगी। श्रद्धालुओं की आकांक्षा को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं।
2: जल संरक्षण के काम कर रहे हैं और जल संरक्षण के काम हम नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी, पोखर, नदियों के उद्गम हर एक जगह जल की महत्ता को स्थापित करते हुए जन सहयोग के माध्यम से शासन भी 10,000 करोड़ की राशि का अमृत सरोवर से लेके सही कई प्रकार के जल रचनाओं पे काम कर रहा है, तालाबों पे काम कर रहा है और हमारा प्रदेश तो अब और नदी जोड़ो अभियान की तरफ आगे बढ़ रहा है। नदी में हमारे लिए जीवन, जल में ही जीवन है। ऐसे में नदी जोड़ो अभियान विश्व का सबसे पहला अगर कहीं हो रहा है तो मध्य प्रदेश में हो रहा है।
0: पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली, जलवायु अनुकूल शहरी विकास पर केंद्रित राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आगामी 30 और 31 मई को भोपाल के पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संस्थान एप्को परिसर में किया जाएगा। सम्मेलन में जैव विविधता संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और शहरी विकास के संबंध में विषय विशेषज्ञ अपने विचार प्रकट करेंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भारत भवन में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय संगोष्ठी और सांस्कृतिक उत्सव सदा नीरा समागम का शुभारंभ करेंगे। वीर भारत न्यास द्वारा जल संरक्षण, भारतीय संस्कृति, पंच महाभूतों तथा सतत विकास के विषयों पर केन्द्रित ये गरिमामय आयोजन 2 जून तक चलेगा, जिसमें देश विदेश के विद्वान, पर्यावरण विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, नीति निर्माता और कलाकार सहभागिता करेंगे। इस 7 दिवसीय समागम में भारतीय दर्शन के पंच महाभूत जल, पृथ्वी, वायु, आकाश और अग्नि पर आधारित विभिन्न वैचारिक सत्र आयोजित किए जाएंगे। महिला और बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया की अध्यक्षता में कल मध्य प्रदेश महिला वित्त और विकास निगम की बैठक हुई। बैठक में महिला रोजगार, कौशल विकास और संस्थागत सुधारों को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में मंत्री सुश्री भूरिया ने निर्देश दिए कि महिला वित्त एवं विकास निगम को प्रदेश की महिला वर्कफोर्स तैयार करने वाली प्रमुख संस्था के रूप में विकसित किया जाए। इसके लिए नियम एक व्यापक ऑनलाइन पोर्टल तैयार करेगा, जिसमें महिलाओं की कौशल दक्षता पर परीक्षण कर उन्हें कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा। प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख शुभ रंजन सेन ने भोपाल स्थित वन भवन में अत्याधुनिक IT ट्रेनिंग हॉल का लोकार्पण किया। IT ट्रेनिंग हॉल के माध्यम से विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को डिजिटल तकनीकों, ई गवर्नेंस प्रणाली, आधुनिक सॉफ्टवेयर आधारित कार्य प्रणालियों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इससे विभागीय कार्यों में दक्षता, पारदर्शिता और त्वरित निर्णय प्रक्रिया को मजबूती मिलेगी। धार जिले में विकसित किए जा रहे PM मित्र पार्क के अंतर्गत प्रभावित परिवारों के पुनर्वास का कार्य संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण के साथ निरंतर प्रगति पर है। परियोजना से प्रभावित कुल 89 परिवारों में से अब तक 48 परिवारों को 2 चरणों में 24-24 परिवारों के समूह के रूप में सफलतापूर्वक नवीन आवासीय कॉलोनी में स्थानांतरित किया जा चुका है, जबकि शेष 41 परिवारों का पुनर्वास आगामी 3 माह में पूरा किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। IPL प्रतियोगिता में दूसरा क्वालिफायर मुकाबला आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच शाम 7:30 बजे न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इसके पूर्व कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को पहले क्वालिफायर मुकाबले में 92 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने कल पुलिस लाइन का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। झाबुआ में संभागीय चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला ने ग्रामीण क्षेत्र में औचक निरीक्षण कर 29 नमूने जांच के लिए लिए हैं। आगर मालवा में कल आयोजित हुई जिला शांति समिति की बैठक में कलेक्टर प्रीति यादव ने ईद और मुहर्रम पर्व शांति सौहार्द से मनाने की अपील की है। भोपाल में संभावित हवाई हमले और बड़े आपदा हालात से निपटने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय आवास परिसर में मॉक ड्रिल की गई। शिवपुरी में आज शासकीय ITI झांसी रोड में युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बालाघाट में वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को वन अधिकार पट्टों का वितरण करने के लिए जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। डिंडौरी कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया की अध्यक्षता में कल सर्व शिक्षा अभियान की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 7:20:45 हुए हैं। लीजिए, अब प्रस्तुत है कहानी। आज हम आपको आज सुनिए सुबोध चतुर्वेदी से उनकी कहानी एक और चिट्ठी।
1: सुभाष रात का खाना खाने बैठा ही था कि नेहा फुसफुसाते हुए बोली, सुनो आज फिर एक चिट्ठी आई है। क्या? सुभाष जैसे चौंक उठा। उसने चोर नज़र से पिताजी की ओर देखा, जो खाना खाकर आराम कुर्सी पर बैठे ऊँग रहे थे। झुर्रियों से भरा चेहरा बड़ा ही निरीह लग रहा था। मन में कुछ संवेदना जागृत होती उससे पहले ही नेहा बोल उठी, उधर क्या देख रहे हो? पिताजी को कुछ पता नहीं है। मैंने डाकिये से पहले ही कह रखा है, कोई भी पत्र आए सीधा मेरे हाथ पर रखो। अब उन्हें कुछ बतलाने की ज़रूरत भी नहीं है, पढ़ लेते तो बवाल खड़ा कर देते। अच्छा, क्या लिखा है, ज़रा देखूं तो? चुपचाप बैठकर खाना खाओ, कुछ नया नहीं लिखा है, वही पुराना राग। आपकी कमला बिल्कुल ठीक हो गई है और बिल्कुल सामान्य है, आकर अपने घर ले जाएं। अब हम पागल खाने में अधिक दिन नहीं रख सकेंगे, नियम विरुद्ध कार्य नहीं कर सकते। तो फिर क्या कहती हो, डरते डरते सुभाष ने पूछा। नेहा तेज स्वर में बोल उठी, अब कहने सुनने को बचा ही क्या है, एक बार हम लोग तय कर ही चुके हैं, फिर नए सिरे से इस चर्चा को करने से क्या लाभ है। वे लोग कह रहे हैं कमला ठीक हो गई है, चलो एक बार को हम मान भी लें, पर फिर दोबारा उस पर पागलपन का दौरा नहीं पड़ेगा, इस बात की क्या गारंटी है। अपनी बहन के सामने तुम्हें अपनी दो जवान बेटियों की चिंता नहीं है? कमला के विषय में जानकर कौन भला आदमी तुम्हारा बेटियों से रिश्ता जोड़ना चाहेगा? क्या कमला की तरह मेरी दोनों बेटियां घर में बैठी रहेंगी? कान खोलकर सुन लो, मेरे जीते जी ऐसा हरगिज नहीं होगा। यदि तुम्हें पिताजी की चिंता है तो उनसे कहने कौन जाएगा, उन्हें इस उम्र में अपना ही कितना होश है जो बेटी की चिंता करेंगे। नेहा तो बात मुखर के चली गई, पर क्या बात सचमुच खत्म हो गई? सुभाष के मन में निरंतर अंतर्द्वंद चलता रहा। वह बड़ा भाई है, अपनी जिम्मेदारी से भला कैसे मुंह मोड़ ले। उससे 6 वर्ष छोटी है कमला, माँ तो असमय ही छोड़कर चली गई थी, नौकरी लगते ही पिताजी ने शीघ्र नेहा से उसका रिश्ता तय कर दिया। कमला भी बड़ी हो रही थी, घर में किसी औरत का होना जरूरी था। वह भी अपनी भाभी को पाकर खूब प्रसन्न थी। 2 वर्ष के अंदर वह भी 2 बेटियों का पिता बन गया। इस बीच कमला को हिस्टीरिया के दौरे पड़ने लगे, बात को बहुत छिपाकर रखा जा रहा था, मालूम पड़ने पर विवाह होना असंभव हो सकता था, इसलिए आनन फानन जो भी रिश्ता जचा कमला के हाथ पीले करने के लिए जोर शोर से तैयारी होने लगी। अपनी हैसियत से बढ़कर विवाह भी किया, परंतु आर्थिक स्थिति दयनीय हो चुकी थी। वह तो गनीमत थी कि सर पर छत पहले ही बना ली थी, परंतु जाने क्या हुआ कि 1 वर्ष के भीतर कमला पर पागलपन के दौरे पड़ने लगे। ससुराल वाला धोखा देने की तोहमत लगाकर उसकी हरकतों से आगे जाकर कमला को खोटे सिक्के की तरह मायके लौट आ गए। उसकी हालत दिनों दिन बदतर होती जा रही थी। वह कभी भी अपने कपड़े फाड़ डालती, बाल नोचने लगती। सबसे ज़्यादा भय तो तब लगता जब वह अपनी भतीजियों के साथ भी आक्रामक हो जाती। घर में आए दिन कमला को लेकर अशांति रहने लगी। रोज़ रोज़ की किचकिच से सुभाष भी परेशान हो उठा। इलाज करवाना उसके बूते से बाहर होता जा रहा था। एक उसकी बहन की वजह से घर का माहौल तनावपूर्ण रहने लगा था। कमला कब घर में क्या उत्पात मचा दे कोई ठीक नहीं था। मजबूरन कमला को पागलखाने में भर्ती करना पड़ा। शुरू शुरू में पिताजी हर माह मिलने जाया करते थे। पहले सुभाष भी साथ जाता था, धीरे धीरे उसका जाना कम होता गया। वहाँ का माहौल दहशत पैदा करता था। कमला किसी को भी पहचानती नहीं थी, जो भी मिलने जाता अपने हृदय पर एक बोझ लेकर लौटता। धीरे धीरे घर वालों ने इसे उसकी नियति को स्वीकार लिया। अब कभी कभी कमला का ख्याल आता, जिस बहन से बिना लड़े झगड़े एक दिन भी रोटी हजम नहीं होती थी, वही बहन स्मृतियों के किसी कोने में दफन हो चुकी थी। परंतु पिछले 6 माह से पागलखाने से चिट्ठियों का सिलसिला शुरू हो चुका था। इधर उसकी दोनों बेटियां भी युवावस्था में कदम रख चुकी थीं। 20 वर्ष का अंतराल इस बीच गुजर चुका था। अब तो यह भी याद नहीं रहा कि पिछली बार वह कब कमला से मिलने गया था। एक तरह से उसकी चर्चा अब इस घर में कोई भी नहीं करता था। अतीत से पीछा छुड़ाकर इनकी अपनी एक दुनिया थी, जिसमें बच्चों के भविष्य को लेकर कुछ सुनहले स्वप्न थे, जिन्हें पूरा करने में पति पत्नी प्रयासरत थे। अचानक इन चिट्ठियों ने सबके मन में उथल पुथल मचा दी। बेटी की दुर्दशा से पिताजी आहत देखते थे, दर्द उनके चेहरे पर साफ झलकता। एक बार मौत ने गले लगा लिया होता तो कलेजे पर पत्थर रखकर सह जाते, पर यहाँ तो कमला होकर भी नहीं थी। शायद उनकी सांसें इसी आस में चल रही थी कि एक दिन कमला ठीक होकर घर लौट आएगी, पर उनकी पीठ पीछे क्या षड्यंत्र चल रहा है इससे वे बिल्कुल अनभिज्ञ थे। रात भर सुभाष करवटें बदलता रहा। जिस दिन वहाँ से चिट्ठी आती है वह विचलित हो जाता है। स्मृतियों के झरोके से पुरानी बातें बेचैन कर देती हैं। आज भी वही हुआ। चुपचाप दरवाजा खोलकर बाहर बरामदे में रखी कुर्सी पर बैठ गया। चांदनी रात खिली हुई थी, देखकर फिर उसे बहन की याद शिद्दत से सताने लगी। उसे याद आया किस तरह छत पर बैठकर दोनों चांदनी रात में देर तक ताश की बाजी लगाए रहते थे। एक अपराध बोध उसे खाए जा रहा था। अपनी बेटियों के भविष्य की खातिर वह बहन के वर्तमान भविष्य को नष्ट किए दे रहा है, वह करे भी तो क्या करे। नेहा की बातों में भी दम है, बेटियां बेल की तरह दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। कुछ जगह रिश्तों की बात भी चल रही है। अब यदि कमला को घर लाया जाए तो उसके विषय में हजार बातें खड़ी होंगी, रिश्ते तय करना मुश्किल हो सकता है। बहुत से लोगों की यह धारणा भी रहती है कि मानसिक रोग पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होने वाला मर्ज है, किस किस को समझाते फिरेंगे। सोचते सोचते दिमाग में आंधियां सी चलने लगी। हताश होकर वह सिर पकड़कर बैठ गया। कितनी रात गुजर गई पता ही नहीं चला। उसकी तंद्रा अचानक तब भंग हुई जब नेहा ने कंधे पर हाथ रखकर पूछा, आप यहाँ कब से बैठे हैं, नींद नहीं आ रही? कारण मुझे भी पता है, चलिए अंदर चलकर बात करते हैं। मुझे पता है आप मुझे बहुत स्वार्थी मान रहे होंगे, पर आप ही बतलाइए अब इन आने वाली चिट्ठियों का मैं क्या करूं? उनके यहाँ तो छपी रखी रहती होंगी, पता लिखा डाकखाने में डाल दिया। अब उन लोगों को क्या पता कि हमारे सामने कितनी समस्याएं हैं। उनके यहाँ तो न जाने कितनी कमला होंगी। सुभाष को उठते न देखकर नेहा भी वहीं बैठ गई। सुभाष कुछ देर चुप बैठा सोचता रहा, फिर एकाएक बोला, नेहा तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ, सही सही जवाब देना, सोचकर बतलाओ। यदि कमला की जगह तुम्हारी अपनी बेटी होती तब भी क्या तुम्हारा यही निर्णय होता? प्रश्न पूछकर वह एकटक नेहा के चेहरे की ओर देखने लगा। उसके चेहरे पर अनेक उतार चढ़ाव दिख रहे थे। नजरें नीचे किए हुए कुछ देर बैठी रही, फिर निशब्द उठकर चली गई। सुभाष का प्रश्न उसके हृदय को मथता रहा। वह भी संवेदनशील थी, परंतु उसका अपना स्वार्थ आड़े आ रहा था। नेहा सुबह रोज की तरह उठी, घर का पूरा काम किया। सुभाष भी चाय नाश्ता करके ऑफिस चला गया। लड़कियां कॉलेज के लिए निकल गईं। ऑफिस में सुभाष दिन भर अनमना सा रहा। उधर नेहा दिन भर परेशान रही, उससे एक कौर रोटी का नहीं खाया गया। दिन भर सुभाष का प्रश्न अनेक रूप लेकर उसकी आंखों के आगे जैसे नाचता रहा। कमला की जगह कभी उसे अपनी बेटी कम्मू दिखती तो अगले ही पल निम्मू। वह घबरा कर आँखें बंद कर लेती, परंतु दृश्य फिर भी नहीं बदलता। जब कैसे भी मन को शांति नहीं मिली तो चुपचाप पूजा के कमरे में भगवान के समक्ष जाकर बैठ गई। कहने लगी, प्रभु अब तुम ही मुझे सही मार्ग दिखलाओ, जिसमें इस घर की भलाई छिपी हो मैं बस वही करूँगी। मैं स्वार्थ में अंधी हो गई थी, यदि आज कमला की माँ जीवित होती तो क्या ठीक होने के बाद बेबी उसे घर लाने के विषय में इतना सोचती? क्या दुनिया के भंवर में डूबने के लिए वो उसे ऐसा निराश्रित छोड़ देती? कभी नहीं। फिर प्रभु मैं स्वार्थ में इतनी अंधी कैसे हो गई? वह वहीं भूमि पर लौटकर विलखने लगी, प्रभु के सम्मुख बार बार अपने अपराध की क्षमा मांगने लगी। अब उसे अपना कर्तव्य पथ साफ दिखने लगा था। अत्यधिक रोने से मन निर्मल हो उठा था, हृदय से जैसे एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। उसने अलमारी खोलकर अपने और सुभाष के दो दो जोड़ी कपड़े बैग में जमा लिए, प्रसन्न चित्त होकर पति का इंतजार करने लगी। उसके आते ही हंसकर बोली, जल्दी से हाथ मुंह धोकर खाना खा लीजिए, फिर हमें रात की गाड़ी से आगरा के लिए निकलना है। सुभाष ने पूछा, आगरा क्यों? अपनी बहन कमला को घर नहीं लाना है? 10 दिन बाद राखी का त्यौहार आने वाला है। सुभाष ने बिना किसी की परवाह किए नेहा को गले से लगा लिया। आज बहुत दिनों बाद उसे पत्नी का चेहरा चांद की तरह निर्मल और उज्ज्वल लगा। उसने पिताजी की ओर देखा तो वह हंसकर बोली, उन्हें आप ही बतलाइए, उनके दमकते चेहरे को देखने का सौभाग्य वह भला आपसे कैसे छीन सकती थी। कहते कहते नेहा का गला भर आया। अपने आंसुओं को छिपाती हुई रसोई की ओर बढ़ गई। उधर कम्मू और निम्मू अपनी बुआ के विषय में जानने को उतावली होती, कभी अपने पापा से प्रश्न करती तो कभी दादाजी से, और उधर दादाजी आवेग की वजह से बोलने में असमर्थ चुपचाप चश्मा उतार कर बार बार पहुँच रहे थे। फिर अटकते से बोले, बिटिया देखो तो पता नहीं यह कांच साफ क्यों नहीं हो रहा। कम्मू और निम्मू खिलखिला पड़ी, बोली, दादाजी कांच नहीं अपनी आंखें साफ करो, सब कुछ साफ दिखने लगेगा।
0: अभी आप सुन रहे थे सुबोध चतुर्वेदी से उनकी कहानी एक और चिट्ठी। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब समय है फिल्म संगीत का। सबसे पहले सुनिए हर्षदीप कौर को ए आर रहमान के संगीत के साथ फिल्म रंग दे बसंती में।

अभी आपने सुना लता मंगेशकर और उदित नारायण के आवाज़ों में, ए आर रहमान का संगीत, जावेद अख्तर का लिखा फिल्म लगान से ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण। इस समय प्रसारित हो रहा है फिल्म संगीत। कार्यक्रम में अगला गीत सुनिए, फिल्म वास्तव से। इस गीत को संगीत दिया है जतिन ललित ने, गायक कलाकार है रविंद्र साठी।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
1: सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: श्रोता इस समय सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। कार्यक्रम में अगला गीत सुनिए, फिल्म किसना से। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत है इस्माइल दरबार का, गायक कलाकार है।

फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 बजे तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।

श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत में आज के फिल्म संगीत का अंतिम गीत सुनिए। फिल्म बत्ती गुल मीटर चालू से इस गीत को लिखा है सिद्धार्थ गरिमा ने, संगीत है सचेत परंपरा का, गायक हैं अरिजीत सिंह।

श्रोताओं, फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8 बजने को है समाचार प्रभात और उसके ठीक बाद प्रातः 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़। दोनों ही न्यूज़ बुलेटिन अब से कुछ ही समय में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगी।

मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। CBSE ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन अफवाहों को खारिज किया जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई थी। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नवलेकर करेंगे।

0: जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
1: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
0: इस समिति के कार्यों के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
2: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा, जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर कार्य हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता पर श्री गोयल ने कहा कि भारत अगले 3 दशकों तक विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में SIR प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थीं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। एक रिपोर्ट।
3: याचिकाओं में SIR प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया था कि SIR प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326, जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्वाचन आयोग को दी गई शक्तियों के दायरे से बाहर थी। याचिकाकर्ताओं की ये भी दलील थी कि SIR प्रक्रिया ने बड़ी संख्या में गरीब और विस्थापित लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR प्रक्रिया से प्रभावित मतदाताओं के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देने और कठिनाई को कम करने के लिए अंतरिम निर्देश जारी किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने 1983 में बिहार में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा बरकरार रखते हुए कहा है कि इस घटना की क्रूरता न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर देती है। न्यायमूर्ति संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कल कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय दोनों ने सही कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह की सहानुभूति या नरमी की गुंजाइश नहीं है। न्यायालय ने कहा कि घटना मार्च 1983 में मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव में हुई थी, जहां कम से कम 58 लोगों की भीड़ ने चंद्रशेखर चौधरी के घर में आग लगा दी, जिसके बाद 5 लोगों की बेरहमी से हत्या की गई और कई लोग घायल हो गए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने सोशल मीडिया पर किए गए इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिका

0: उपभोक्ताओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। बोर्ड ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के वास्तविक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पोर्टल पूरी तरह से एक अलग यूआरएल पर काम करता है। एक रिपोर्ट।
1: सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि cbse.onmarks.co.in केवल एक टेस्टिंग साइट है जिसमें सैंपल डाटा होता है जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से आंतरिक टेस्टिंग और समीक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसमें परीक्षा से संबंधित कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं होती है। बोर्ड ने कहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। मार्च में नासा ने वर्ष 2032 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर परमाणु और सौर ऊर्जा से संचालित एक स्थायी अड्डा बनाने के लिए $20 अरब के कार्यक्रम की घोषणा की थी। जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन को इन मशीनों का निर्माण करने के लिए चुना गया है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: कोलकाता की एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की हिरासत में भेज दिया है। इन आरोपियों को केंद्रीय एजेंसी द्वारा सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। भारतीय वायुसेना ने अधिकारी काडर के तकनीकी शाखा में भर्ती के लिए अभियांत्रिकी स्नातक अभिक्षमता परीक्षा GATE के अंकों के आधार पर चयन करने की योजना बनाई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि GATE के अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को वायुसेना चयन बोर्ड में परीक्षा के लिए सीधे चयनित किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली 10 डब्बों वाली DEMU रेलगाड़ी को चलाने की स्वीकृति दे दी है। ये निर्णय रेलवे क्षेत्र में हरित और टिकाऊ परिवहन को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाइड्रोजन रेलगाड़ी के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कृष्णकांत शर्मा।
3: यह रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। इसमें 2 ड्राइवर पावर कार और 8 पैसेंजर कोच शामिल हैं, जिनकी कुल क्षमता 2500 यात्रियों की है। इसकी कुल विद्युत क्षमता 1200 किलोवाट है। यह ट्रेन शून्य कार्बन उत्सर्जन करती है। इसकी परिचालन गति 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसमें यात्रियों के लिए आधुनिक डिजिटल डिस्प्ले, ऑटोमेटिक दरवाजे और एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम की यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। अमरीकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका और ईरान के बीच मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान की भूमिका की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध के कारण उसे तटस्थ नहीं माना जा सकता। श्री ग्राहम ने दावा किया कि ईरानी सैन्य विमान पाकिस्तानी हवाई अड्डे का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल के बारे में पाकिस्तानी नेताओं की टिप्पणियां चिंताजनक हैं। ये टिप्पणियां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में अब्राहम समझौते में पाकिस्तान के शामिल होने से इनकार के बाद आई हैं। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है और अगले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका व्यक्त की है। वहीं केरलम में मानसून 1 या 2 दिन की देरी से आ सकता है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को

0: बयान रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस 162 रन पर सिमट गई। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल राजस्थान के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और लीजिए अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद मुनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने क्वाड समूह की एकजुटता और सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए सख्ती को सुर्खियों में जगह दी है। साथ ही कई स्थानीय मुद्दे भी मुख्य पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित किए गए हैं। वीर अर्जुन की सुर्खी है, क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ाएगा निगरानी। पत्र ने भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्रियों की तस्वीरों को भी समाचार के साथ प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने घुसपैठ से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन संबंधी अमित शाह के ऐलान को सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, धर्मशाला नहीं है भारत। पत्र लिखता है, जनसांख्यिकी संरचना बदल जाने से स्थानीय समुदायों में ये भावना बढ़ रही है कि घुसपैठिए सरकारी योजनाओं और राजनीतिक संरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, जिससे भाषा और भूमि को लेकर तनाव बढ़ रहा है। जनसत्ता ने दिल्ली में सीएनजी के दाम 2 रुपये प्रति किलोग्राम और बढ़ाए जाने को पहली खबर बनाया है। अमर उजाला ने भी इस खबर को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर जगह दी है, जबकि दैनिक ट्रिब्यून ने दिल्ली रेस क्लब को राहत न मिलने और जिमखाना पर सरकार के कुछ नर्म रुख को पहली खबर बनाया है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। CBSE ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन अफवाहों को खारिज किया है जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया। महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Center forms high-level committee to study demographic change caused by infiltration and other reasons. Supreme Court to deliver its verdict today on petitions challenging special intensive revision of electoral rules. CBSE rejects claims circulating on social media about breach of its on-screen marking system, saying it was only testing site and not actual platform. IMD issues red alert for severe heat wave conditions in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Vidarbha today. NASA releases details of robotic landers, hopping drones and vehicles it aims to send to Moon as part of its plan to build lunar base. And in IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru storm into final beating Gujarat Titans by 92 runs in qualifier 1 at Dharamshala. The centre has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic changes caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar. Census Commissioner along with former IAS Officer Durga Shankar Mishra, former IPS officer Balaji Srivastava and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary, Foreigners 1 in Home Ministry, will serve as the member secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty, but also to national security, law and order, profound changes in social structure, and the preservation of tribal society. a report.
3: The high-level committee will conduct a comprehensive assessment of demographic changes occurring across India due to illegal immigration and other unnatural causes. It will also analyze patterns of abnormal population shift at the levels of religious and social communities and will present a planned and time-bound solution for the same. Prime Minister Narendra Modi, in his Independence Day speech from Redford last year, had announced about the high-level committee on demographic change.
4: I want to be aware of the situation of the country in front of the country. देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
3: द कमिटी विल सबमिट इट्स रिपोर्ट विद इन 1 year. If necessary, the tenure of the committee may be extended by up to 6 months. With Anubhav Mishra, this is Vishnu PS, Akashwani News, Delhi.
2: The Supreme Court will today pronounce its judgment on a batch of petitions challenging the legality of the Special Intensive Revision SIR of the electoral rules done by the Election Commission of India. A bench of Chief Justice of India, CJI Surya Kant, and Justice Joymala Bagchi is scheduled to pronounce its verdict today after reserving judgment in the matter earlier this year following extensive hearings. The petitions challenging the legality of the SIR exercise undertaken by the poll body, contending that the revision process exceeds the powers conferred upon the ECI under Article 326 of the Constitution, the Representation of the People Act 1950, and the rules framed thereunder. Over the course of the proceedings, the Supreme Court issued interim directions designed to promote transparency and mitigate hardship among voters impacted by the SIR exercise across various states and union territories. The poll body had initially identified 11 documents for verification purposes. However, the apex court later directed the inclusion of Aadhaar as an additional document for the SIR process. Most of the petitions were filed in June last year after the ECI decided to conduct an SIR in Bihar. The exercise was subsequently extended to multiple states and UTs, including West Bengal, Kerala and Tamil Nadu. The poll body defended the exercise before the apex court, contending that the revision was aimed at ensuring the purity of electoral rolls and preventing duplication or inclusion of ineligible voters. After hearing the parties, the CJI Surya Kant-led bench reserved its verdict on Jan 29th. Central Board of Secondary Education, CBSE, has clarified that there has been no security breach in its actual on-screen marking system used for evaluation of answer books. The board said that the URL http://cbse.onmarks.co.in is the testing site only with sample data for internal testing and review purposes. More from our correspondent.
5: The Central Board of Secondary Education stated that the URL circulating on social media is different from the portal used for the evaluation of answer books. It noted that the system has been implemented for enhanced transparency in assessments with strong grievance redressal mechanisms. Refuting claims of any security breach on its actual on-screen marking system, CBSE reassured all concerned that safeguards are in place to ensure the integrity and security of the evaluation platform. Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
2: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at the rate AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. President Draupadi Murmu will visit Nathula Pass in Sikkim this morning on the second day of her visit to the state. The president will interact with soldiers stationed at Nathula, where senior army officers will brief her on various activities in the area. She will also visit the Baba Harbhajan Shrine. Later in the day, President Murmu will award degrees and medals to students during convocation ceremony of Sikkim University at Manan Kendra in Gangtok. Nearly 14,000 degrees across 33 departments will be awarded, along with 285 gold and silver medals to meritorious students, which include 199 women. India Meteorological Department, IMD, has issued a red alert predicting heat wave to severe heat wave conditions.

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। कार्यक्रम में आज कलाकार हैं भानुप्रिया राय। हम आपको सुनवा रहे हैं भानुप्रिया राय से उनके गाए कुछ भजन।

आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से श्रोता इस समय सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं भानुप्रिया राय के गाए कुछ भजन।

0: जापान के विदेश मंत्रियों ने मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया एक स्वतंत्र, खुले, सुरक्षित और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। श्री मोदी ने शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में जापान भारत विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कल नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। ये देश की पारंपरिक स्वास्थ्य पद्धति को वैश्विक खेल के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भारत भवन में जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय संगोष्ठी और सांस्कृतिक उत्सव सदा नीरा समागम का शुभारंभ करेंगे। ये आयोजन 2 जून तक चलेगा, जिसमें देश विदेश के विद्वान, पर्यावरण विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, नीति निर्माता और कलाकार सहभागिता करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल उज्जैन में शिप्रा तट पर शिप्रा तीर्थ परिक्रमा के समापन समारोह में अंतर्जल यात्रा, श्री शिप्रा महिमा और ये है मोहन की सरकार पुस्तकों का विमोचन भी किया। मध्य प्रदेश महिला और वित्त विकास निगम की बैठक में कल हुई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया के निर्देश दिए हैं कि निगम को प्रदेश की महिला वर्कफोर्स तैयार करने वाली प्रमुख संस्था के रूप में विकसित किया जाए। और आईपीएल क्रिकेट में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को पहले क्वालिफायर मुकाबले में 92 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर, साथ ही FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 9:25 हुए हैं। प्रस्तुत है सूचना, समाचारों और जानकारी पर केंद्रित आपका पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

श्रोताओं, कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूँ मैं आपका दोस्त अनुराग शर्मा। आज कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले दिन विशेष के बारे में। आज हम भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि है। आपका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था और 27 मई 1964 को आपकी मृत्यु हुई थी। आपके जन्मदिन यानी 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसका कारण यह है कि आपको बच्चों से बड़ा लगाव था। आप अपने आपकी जो पोशाक थी, आप उसमें हमेशा एक गुलाब का फूल भी लगाकर चला करते थे और बच्चों से अत्यधिक प्रेम के कारण आपका नाम चाचा नेहरू के नाम से भी हम सभी के बीच विद्यमान है। श्रोताओं, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के केवल पहले प्रधानमंत्री ही नहीं अपितु स्वतंत्रता सेनानी भी थे। आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा के इलेक्टेड मेंबर भी थे और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट भी संविधान सभा में आप रहे। भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर आपने 15 अगस्त 1947 से 15 अप्रैल 1952 तक कार्य किया। आपके पास विदेश मंत्रालय भी रहा। आप 1952 से 1957 तक पहली बार भारतीय लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। इसके साथ ही आप अभी तक भारत के सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति भी हैं। आपकी पुण्यतिथि पर हम आपको शत शत नमन करते हैं। श्रोताओं, पिछले 7 दिन, हाँ लगभग 7 दिन ही मानिए, पिछले लगभग 7 दिन भारत की दृष्टि से, भारत मतलब हमारे देश की दृष्टि से बेहद ही सकारात्मक और सौभाग्यशाली हमें साबित हुए। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले 7 दिनों में हमें विज्ञान के क्षेत्र में और खेल के क्षेत्र में लगातार कई उपलब्धियाँ हासिल हुई हैं। उन उपलब्धियों में से कुछ उपलब्धियों से हम आपको अवगत कराते हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी के रहने वाले मोहम्मद यासीर ने मात्र 14 वर्ष की उम्र में इतिहास रचते हुए अंडर 15 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में, ये प्रतियोगिता ताशकंद में हुई थी, भारत को पहली बार गोल्ड मेडल हासिल कराया है। इस प्रतियोगिता में अभी तक भारत ने गोल्ड मेडल नहीं जीता था। मोहम्मद यासीर ने ये कारनामा किया और इतिहास रच दिया। ऐसे ही सेकंड एशियन यूथ MMA चैंपियनशिप 2026 में शिया सलम ने सिल्वर मेडल, आर्यन खरे और आरुष्कर फैजल मुश्ताक ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत का परचम लहराया है। भारत की महक चौहान भी पीछे नहीं है। आपने कासा 7S रग्बी में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। रग्बी में हालांकि भारत को कोई पदक हासिल नहीं हुआ, लेकिन भारत की ये जो खिलाड़ी हैं महक चौहान, उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के अवार्ड से नवाजा गया है। अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली रूपा बैमोर ने उलान बातार मंगोलिया में आयोजित एशियन टाइक्वांडो चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। आपने ना सिर्फ मेडल जीता बल्कि आप पहली भारतीय बनी हैं जिसने एशियन टाइक्वांडो रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। अभी तक का सर्वाधिक, ये हाईएस्ट रैंक है, आपने ये हासिल किया है और विश्व रैंकिंग में 6वां स्थान आपने हासिल किया है। ये भी अभी तक किसी भारतीय के लिए सर्वश्रेष्ठ टाइक्वांडो में रैंक है। ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि आपने हासिल की है। श्रोताओं, भारत की बेटियों ने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, भारत की बेटियां, इसीलिए कहा क्योंकि एक ऑल वुमेन टीम थी, ITVP यानी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो तिब्बत और चाइना बॉर्डर की सुरक्षा में लगी रहती है, उसकी ऑल वुमेन टीम यानी कंटिंजेंट कहें, उन्होंने इतिहास को रचते हुए, मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑल वुमेन टीम ने माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतह किया है। इसके साथ ही हमारा जो चंद्रयान मिशन, आपको याद होगा चंद्रयान 3 का जो मिशन था जिसमें हम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले विश्व के पहले देश बने थे, हमारे उस मिशन को अमेरिका में गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड्स से सम्मानित किया गया है। ये भी नासा इसरो के लिए बेहद ही बड़ी उपलब्धि है।
इसके साथ आपको याद होगा फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाने वाले भारत के मिल्खा सिंह, आपका 100 मीटर्स में रिकॉर्ड था 10.10 सेकेंड्स का। ये रिकॉर्ड अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया था, आपने ठीक सुना, अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया था, लेकिन पंजाब के ही रहने वाले गुरविंदर सिंह ने फेडरेशन कप रांची में आज से दो दिन पूर्व 10.09 सेकेंड से इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। यानी आपने जो 100 मीटर की रेस है वो 10.09 सेकेंड्स में पूरी की है और नया नेशनल रिकॉर्ड अपने नाम किया है। आपका अगला दावा ओलंपिक्स 2028 में है, जिसमें आप यूसेन बोल्ट के साथ दौड़ते हुए हमें नज़र आएंगे।

श्रोताओं, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब आपसे चर्चा करते हैं पद्म पुरस्कार से सम्मानित 2026 के कुछ विजेताओं के बारे में। सबसे पहली हैं श्रीमती देवकी अम्मा जी। 91 वर्ष की श्रीमती देवकी अम्मा जी केरलम की रहने वाली हैं। आपका जन्म किसान परिवार में हुआ, आपने प्रकृति को संरक्षित करने का मार्ग चुना। अभी मार्ग क्यों चुना ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। 44 वर्ष पूर्व आपके जो क्षेत्र है वहाँ पे सूखा पड़ा था। आपके बगीचे में पीछे की तरफ एक मंदिर था जिसके आसपास की पूरी ज़मीन सूख चुकी थी और बंजर पड़ी थी। जब आप उस मंदिर में गईं, एकदम से आपने निश्चय किया कि इस ज़मीन को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता और आप उसे हरा भरा बनाने में लग गईं। आपका जो ज़िला लगता है अलप्पुझा, ये बिना जंगल के पूरा का पूरा जिला ही बंजर था। आपने इस जिले की हरियाली को पूर्ण बनाने का जिम्मा लिया और उसे साक्षात किया। भारत सरकार ने आपके इस कार्य की सराहना करते हुए वर्ष 2026 के लिए पद्मश्री पुरस्कार से आपको सम्मानित किया है। आप महान शख्सियत का कोटि कोटि नमस्कार रहा। अगले हैं श्री अंके गौड़ा एम जी। आप मूलतः कर्नाटक के निवासी हैं। 77 वर्षीय श्री अंके गौड़ा जी एक खजाने के संरक्षक हैं।

0: कि एक ऐसी लाइब्रेरी बनाई जाए जहां छात्र खुलकर पढ़ाई कर सकें। छोटी सी कमाई से खरीदी किताबों से शुरू हुई एक छोटी सी लाइब्रेरी आज आपकी लाइब्रेरी में 20 लाख से अधिक किताबें हैं। आपने ठीक सुना है, 20 लाख किताबें। आपका मानना है कि भगवान ने आपको इसी उद्देश्य के लिए चुना है। आपको भारत सरकार ने 2026 के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोताओं, कई बार क्या होता है कि हम उम्र के उस पड़ाव में पहुंच जाते हैं कि हम सोचना बंद कर देते हैं या कुछ नया कर गुजरने की क्षमता हमारे भीतर नहीं बचती। अब ऐसा क्यों होता है? कहीं ना कहीं हम दिमाग में ठान लेते हैं कि ये कार्य हमसे नहीं होगा, या अपने आप को ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं। अब आजकल आप देख रहे हैं कि AI का ज़माना भी आ गया, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस पर हावी होने लगी है। हम लोग को कोई भी काम करना होता है तो हम धड़ल्ले से AI को कोड देते हैं और वो हमारा काम कर देता है। इसने हमें और ज़्यादा अंडर एस्टिमेशन में डाल दिया है। एक कोट है कि संघर्ष ही व्यक्तित्व को गढ़ता है। जापान का एक उदाहरण आपको देते हैं कि जापान में जब चावल व मछली से बनने वाला एक व्यंजन होता है, सुशी कहते हैं जिसे, जब उसको तैयार करने वाले शेफ को परिपक्व किया जाता है तो उस शेफ को सिर्फ और सिर्फ 2 वर्ष तक चावल पकाना ही सिखाया जाता है कि ठीक तरह से चावल को किस प्रकार पकाया जाए। और इस 2 वर्ष के जो टाइम पीरियड है उसमें मछली को छूने तक की अनुमति नहीं होती। इसका उद्देश्य सुशी बनाने की कला के साथ धैर्य, अनुशासन, ध्यान व बारीकी से काम करने की आदत को विकसित करना है। जब हम किसी चीज़ को अनुशासन के साथ करते हैं और कंसिस्टेंसी अपनाते हैं तो वो कार्य में हम खुद ब खुद परिपक्व होने लगते हैं और जो हमारी अंडर एस्टिमेशन है ना, वो कहीं ना कहीं खत्म होने लगती है। हम खुद को जो दूसरों से कम आंकने लगते हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगता है और ये आजकल ज़्यादातर युवाओं में देखा जा रहा है। AI के आ जाने से हमारी जो मानवीय संवेदनाएँ हैं वो भी बेहद ही कम होती जा रही हैं। अब हम लोग अपने मोबाइल चलाने में इतना मशगूल रह गए हैं कि हमें अपने परिवार के साथ बैठकर बात करने का समय ही नहीं रहता, या परिवार के 5 लोग या 4 लोग, 7-8 लोग भी बैठे हैं, या कजिन्स का कई बार मीटअप होता है तो आप लोग बैठते होंगे, फ्रेंड्स का मीटअप होता है कई बार बैठते होंगे, तो वहाँ भी हम लोग बैठकर अपना फ़ोन स्क्रॉल करते रहते हैं। ऐसा मत कीजिए, थोड़ा सामाजिक बनिए, दायरा खोलिए, फ़ोन ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल कीजिए, अन्यथा उसे रहने दीजिए, दूर रहने दीजिए। फ़ोन हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए तो बेहद हानिकारक है ही। ऐसा नहीं है कि हम आपको फ़ोन का इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल मना कर रहे हैं, आवश्यकता पड़ने पर उसका इस्तेमाल कीजिए, लेकिन अत्यधिक इस्तेमाल मत कीजिए। लोगों के साथ घुलिए मिलिए, अपने विचारों का आदान प्रदान करिए, आपको कुछ नई चीज़ सीखने को अवश्य मिलेगी।

श्रोताओं, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं एक प्रयोग और एक नवाचार के बारे में। एक बेहद ही खास स्कूल के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां ना कोई कमरे हैं, यहां का जो क्लासरूम्स है उसमें दीवारें तक नहीं हैं। अब आप सोच रहे होंगे किसी खंडर स्कूल के बारे में बता रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। स्कूल बहुत सुंदर बना हुआ है, बस कॉन्सेप्ट ऐसा है कि वॉल फ्री स्कूल का कॉन्सेप्ट अपनाया है। महाराष्ट्र के नाशिक के सतमाला पहाड़ी

बारें तक नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे किसी खंडर स्कूल के बारे में बता रहे, नहीं ऐसा नहीं है, स्कूल बहुत सुंदर बना हुआ है, बस कॉन्सेप्ट ऐसा है कि वॉल फ्री स्कूल का कॉन्सेप्ट अपनाया है। महाराष्ट्र के नाशिक के सतमाला पहाड़ी

मराठी और अंग्रेज़ी दोनों ही भाषाओं में आप सभी पारंगत हैं। यह एक लिविंग एग्जाम्पल है कि किस प्रकार से चकाचौंध से दूर रहकर भी शिक्षा अध्ययन किया जा सकता है। अब दूसरा है एक नवाचार जिसके बारे में हमें आपको बताना है। श्रोताओं, जब आप अपने बाल कंघे से काटते होंगे तो कुछ बाल टूटते ही होंगे, जाहिर सी बात है, अवश्य टूट जाते होंगे, सबके टूटते हैं। तो आप क्या करते हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा सवाल पूछ रहा है, बाल टूटने के बाद उनको फेंकेंगे ही ना, और क्या करेंगे? तो आगे से उन बालों को मत फेंकिए। आपको बालों से ही जुड़ा एक नवाचार बताते हैं। श्री राहुल गुप्ता जी, आपने क्या किया, आपने बालों से प्रदूषण युक्त नदियों की सफाई की शुरुआत की। आपने ठीक सुना, बालों के जरिए नदियों को साफ किया जा रहा है। सुनने में अटपटा लग रहा है परंतु सत्य है। केश कामली फाउंडेशन के संस्थापक हैं आप। एक ह्यूमन हेयर, जो हमारे एक मानव का बाल होता है ना, वो अपने वजन के 9 गुना तक तेल को और अन्य प्रदूषक जो है उनको एब्जॉर्व कर सकता है। यानी 1 किलो बाल का एक मैट आप लोग बनाते हैं, उसको नदी में जगह जगह आप लोग स्थापित करते हैं, फिर वो जो बालों से बना मैट होता है वो नदियों के सारे ऑयल का जो उसमें पॉल्यूशन है उसको एब्जॉर्व कर लेता है, ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ाता है, इसके साथ ही और भी जो अन्य प्रदूषक उस नदी में मौजूद होते हैं उन सभी को अपने अंदर सोख लेता है। ऐसा करने के बाद जब रिजल्ट्स देखे गए तो हैरान चौंकाने वाले रिजल्ट थे, क्योंकि BOD और COD यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड 40% तक घट गया। यानी जो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा थी उसमें वृद्धि हुई और जो केमिकल ऑक्सीजन था वो घट गया, उसमें केमिकल की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगी। आपने यमुना नदी को अपने इस नवाचार से धीरे धीरे साफ किया है। कई हिस्सों में यमुना नदी धीरे धीरे साफ हो रही है। और ख़ास बात इसकी एक और है कि जो 1 kg का बाल से बना मैट है ना, इसको नदियों में यूज़ होने के बाद एग्रीकल्चरल मल्च के रूप में भी रिसाइकल किया जा सकता है। यानी एक चीज़ से हम 2 निशाने लगा सकते हैं, 1 तीर से 2 निशान। अगली बार यदि आपके बाल टूटें तो उन्हें फेंकिएगा मत। यदि स्वर्णरेखा की सफाई भविष्य में हुई तो उसमें आपका भी तो कुछ योगदान होना चाहिए।

श्रोताओं, अब समय हमें अनुमति नहीं दे रहा कि आपके साथ चर्चा को आगे जारी रखा जाए। कार्यक्रम में आपके साथ मैं था आपका दोस्त अनुराग शर्मा। कल आपसे पुनः मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे सूचना समाचारों और जानकारी पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज हम आपको सुनवा रहे हैं नासिर अहमद से राग अहीर भैरव में मैंडोलिन वादन।

0: अभी आप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुन रहे थे नासिर अहमद से राग अहीर भैरव में मैंडोलिन वादन। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है, प्रातः के 10 बजने को है। जिले की चिट्ठी आकाशवाणी भोपाल से कुछ ही समय में रिले होगी।
1: अरे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। सुबह के 10 बजे हैं, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
2: भोपाल से प्रस्तुत है डिंडौरी जिले की चिट्ठी। आलेख लक्ष्मी नारायण अवधिया, वाचन स्वर दीपा सिंह। डिंडौरी जिले में इस समय अन्य शहरों की तरह ही अत्यधिक गर्मी पड़ रही है। अधिकतम तापमान 41 डिग्री तक पहुंच गया है, जो अभी तक का सर्वाधिक तापमान है। भीषण गर्मी का असर आम जनजीवन पर पड़ रहा है। दिन में बाजार में सन्नाटा पसरा है। लू के प्रभाव से बचने के लिए जरूरी सलाह भी चिकित्सक दे रहे हैं। गर्मी के चलते कई गाँवों में पेयजल की भी समस्या बन गई है। जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना के व्यापक प्रचार प्रसार और जन जागरूकता के उद्देश्य से जनगणना कार्य निदेशालय मध्य प्रदेश द्वारा एलईडी प्रचार रथ रवाना किया गया है। यह प्रचार रथ मंडला पालाघाट होते हुए डिंडौरी जिले पहुंचा, जहां सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। एलईडी प्रचार रथ जिले के सातों विकास खंडों में भ्रमण कर गांव-गांव पहुंचकर आमजन को जनगणना 2027 के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों की जानकारी देगा और जनमानस में जनगणना के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास करेगा। प्रचार रथ के माध्यम से प्रथम चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदर्शित की जाएगी, जिससे नागरिकों को जनगणना प्रक्रिया को समझने और उसमें सहभागिता सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी। जिला प्रशासन डिंडौरी के सहयोग से जिले की 23 ग्रामीण नल जल योजनाओं का जीर्णोद्धार किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को 90,39,000 रुपए की राशि हस्तांतरित कर महत्वपूर्ण पहल की है। मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग द्वारा कृषक कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत किसानों तक नवीन और वैज्ञानिक कृषि तकनीकों की जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से जिले के विभिन्न विकास खंडों में किसान रथ का 10 दिवसीय संचालन प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के माध्यम से किसानों को कृषि विभाग की योजनाओं, उन्नत खेती तकनीकों, फसल विविधीकरण, प्राकृतिक खेती, कृषि यंत्रीकरण संबंधी जानकारी प्रदान की जाएगी। किसान रथ के माध्यम से किसानों को ई विकास से उर्वरक वितरण व्यवस्था, खरीफ

फसल हेतु बीज उपचार, मृदा परीक्षण, फसल विविधीकरण, प्राकृतिक खेती, फसल सुरक्षा पराली प्रबंधन, कृषि अभियांत्रिकी द्वारा खरीफ पूर्व खेतों के समतलीकरण आदि विषयों पर जानकारी दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल बचाने, सोना नहीं खरीदने सहित अन्य अपील को आमजन ने सकारात्मक तौर पर लिया है। अब लोग वाहनों का उपयोग कम कर रहे हैं, साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी भी साइकिल, स्कूटी सहित अन्य दो पहिया वाहनों का उपयोग कर रहे हैं। कार्यालयों में वाहनों की कतार नहीं लगती है, साथ ही अधिकांश बैठकें भी वर्चुअल माध्यम से की जा रही हैं। इसी तरह बाजार में भी ज्वेलर्स की दुकानों में भीड़ कम हो गई है। व्यापारी भी प्रधानमंत्री की अपील में सहयोग कर रहे हैं। कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी अंजू पवन भदुरिया द्वारा पेट्रोल और डीजल की बचत, ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिले के सभी विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों और शासकीय वाहन चालकों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि ऊर्जा संरक्षण और वैश्विक परिदृश्य के दृष्टिगत शासकीय वाहनों का उपयोग केवल शासकीय कार्यों के लिए किया जाए। अनावश्यक वाहन संचालन और बिना अनुमति वाहन उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा जिले में 5 मई से 5 जून तक ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण आरोह 2026 के अंतर्गत मां नर्मदा नदी तट पर विशेष संडे एक्टिविटी में डांस एरोबिक्स का आयोजन किया गया। इस मौके पर एरोबिक्स, योग, सामूहिक फिटनेस गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के साथ साथ उनके परिजनों, स्थानीय नागरिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सभी विकासखंड मुख्यालयों में भी ग्रीष्मकालीन खेल प्रतियोगिताएं संचालित की जा रही है। डिंडौरी में पिछले दिनों मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के तहत विभिन्न विकासखंडों में समारोह पूर्वक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें 750 से अधिक जोड़ों का विवाह रीति रिवाज से संपन्न कराया गया। जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों ने विवाह समारोह में शामिल होकर वर वधुओं को शुभकामनाएं दी। जल संचय जनभागीदारी अभियान के अंतर्गत जिले में कुल 5,52,638 जल संरचनाओं का निर्माण किया गया है। कृषि विभाग, वन विभाग, उद्यानिकी, स्वास्थ्य विभाग, एनजीओ प्रदान, महिला और बाल विकास, पीएचई, जल संसाधन विभाग, इन सभी विभागों के समन्वय से वर्षा के पानी को सहेजने के लिए लाखों रिचार्ज पिट, सोखता पिट बनाए जा रहे हैं। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आपने सुनी डिंडोरी जिले की चिट्ठी, आलेख लक्ष्मी नारायण अवधिया, वाचिका दीपा सिंह। ये प्रसारण आकाशवाणी भोपाल से किया जा रहा था। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10:05 हुए हैं।
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर, साथ ही FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 10:05:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। यदि आप भी हमें अपनी फरमाइशें व्हाट्सएप के जरिए भेजना चाहते हैं तो हमारा नंबर नोट कीजिए। हमारा नंबर है 9425702768। एक बार फिर से सुनिए, 9425702768। इस नंबर पर आप हमें अपना नाम, अपना पता, फिल्म और गीत का नाम लिख भेजिए। कार्यक्रम की पहली फरमाइश है आप सभी की। आप हैं कोलपोल उदयपुर से गोपाल नैनवाया, कांता, विवेक, मनीष, शिवांश, प्रांजल, आरोही, खुशी। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु, तासु, अर्णव आनंद और सत्यमानंद। बोहड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत। गुमला झारखंड से SM जावेद, शगुफ्ता अंजुम और नजमुल हौदा। साथ ही साथ संदेश आया है डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, अनिष्का और तन्मय गजभिये। मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु, सागर और सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक। नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डाबल, खुश नसीब,

सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक। नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डाबल खुश नसीब। अब रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डाबल खुश नसीब।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। श्रोताओं, यदि आप भी हमें अपनी फरमाइशें भेजना चाहते हैं तो हमारा नंबर नोट कीजिए। हमारा नंबर है 9425702768। एक बार फिर से सुनिए, 9425702768। इस नंबर पर आप हमें गीत, फिल्म, अपना नाम और अपना पता लिख भेजिए। कार्यक्रम में अगला गीत हमने शामिल किया है फिल्म रॉक स्टार से। इस गीत को लिखा है इरशाद कामिल ने, संगीत है एआर रहमान का, गायक है मोहित चौहान, जावेद अली और एआर रहमान। फरमाइश करता है आप सभी, आप हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मिका, बलविंदर विर्क, जयतेक विर्क, मिका विर्क, कवर कॉलोनी बड़वाहा, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से प्रवीण शिमाली, मीना शिमाली, भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुंवर, प्रमीला, आसमा, दीपक और अनुश्री, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंगेल और नंदिनी जंगेल, धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंगेल, शकुन जंगेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि, लुम्बिनी नगर अकोला महाराष्ट्र से राहुल वंसोड, सम्यक, शरण और मीरा वंसोड, मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर येमकर, प्रमोद येमेकर, प्रमीत येमेकर, डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद कुमार, गौरव, आरव और अर्पिता, सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार वोडाना, बीडनगर बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता, साक्षी, जयश्री, बाला प्रसाद, गीतांजलि, रामनिवास, धनंजय और पीवी कुल थे। तो आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म रॉक स्टार से इस गीत को।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म मुल्क से ये गीत। इस गीत को लिखा था शकील आज़मी ने, संगीत था अनुराग साइकिया का, गायक थे शफक। पसंद करता थे आप सभी, आप हैं बरवट बकाल बुलढाणा से, नारायण हागे, कमल, दिव्या और जय हागे, गांव कलाना, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश और योधव कड़वासरा, ग्राम पंजौनिया, जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक चंसौलिया, पटियाली रोड, गंज डुंडवारा, उत्तर प्रदेश से एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, एजाद कुरैशी, आकिल कुरैशी और अरीबा हबीबा, ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन अब्बासी, शाहनवास, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान, ग्राम मुंगी, पैठण महाराष्ट्र से बाबा साहेब कंगनकर, साखरबाई कंगनकर, परमेश्वर रोहिणी, श्रावणी ईश्वरी, नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसौल सीतामणि से अकरम हुसैन प्रिंस, इशरत अकरम, वसीम अकरम, रूबीना, आरिज, नदीम, शमीम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, कुवात बिहार से शेख जफर हसन और नरगिस जफर।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण। इस समय प्रसारित हो रहा है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। यदि आप भी हमें अपनी फरमाइशें व्हाट्सएप के जरिए भेजना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9425702768। दोबारा सुनिए, 9425702768। इस नंबर पर आप हमें अपना नाम, अपना पता, फिल्म और गीत का नाम लिख भेजिए। कार्यक्रम की अगली फरमाइश है आपकी, आप हैं गोराडीह भागलपुर से हेमंत कुमार, धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद, आलिया और अयान, ग्राम संदलपुर आतरी से कालीचरण यादव, चांदनी यादव, दीपक यादव और उर्मिला देवी यादव, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, मुक्कम पोस्ट फुल चिंचौली तालुका पंढरपुर से जाकिर मुलाणी, सुमैया, सुबान, समीर, सलमा, मुमताज, दिलशाद, नसीर, न्यू बजरंग कॉलोनी गोल पहाड़िया लश्कर ग्वालियर से नेत्राम गोडिया, सरोज गोडिया, शशि कुमार, भावना, नीरज, अर्चना, आद्या, आध्या, श्रेयांश और देवांशु, मुजफ्फरपुर विहार से आर्यन राज, रोहित राज, हैप्पी आनंद और पीयूष कुमार। आप सभी सुनना चाहते हैं अपनी पसंद पर जावेद अख्तर का संगीत, माफ कीजिएगा, जावेद अख्तर का

0: अभी आपने सुना फिल्म वीर से इस गीत को। इस गीत को लिखा था गुलजार ने, संगीत था साजिद वाजिद का, गायक कलाकार थे रूप कुमार राठौड़, श्रेया घोषाल और सुजैन डी मेलो। पसंद करता थे आप सभी मथुरा उत्तर प्रदेश से लुबना अंसारी, सबा अंसारी, बुशरा अंसारी, हिना, गुलिस्ता, नंदिनी और अंजलि, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारनी, सूरज, ज्योति और रेयांश ठाकुर, दत्तरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा। साथ ही साथ हमें संदेश आया था दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा हसन, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज और चाहत सादिया। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सीटी दीवाना। मेन बाजार कुंडलवाली महाराष्ट्र से गंगाधर ये में करे, प्रमोद और प्रदीप। उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु, आशी, शिवन्या और अनुराधा गोस्वामी। नागजुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डाबर खुशनसीब, अब्दुल हक डाबर, जियाउल हक डाबर, मोहम्मद उमर डाबर, राजेंद्र कटारे। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, पायल जोशी। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से वीना मस्कीन, तुलसी मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन। चंडीगढ़ से राहुल खुराना और रचिता खुराना।
1: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 बजे तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए

फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 बजे तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए

बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छनूला शिवास, अनीता पुष्पा शिवास, अंजू योगिता, रजन साहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास बाधवानी, कबीर रेडियो रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालौद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, पूजा, राधिका और प्रभा देवी, तरन तार गाँव कैरो जिला तरन तारण पंजाब से गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और पोतरा गुरशबद, जिला ग्राम खारिया ठाणी जिला सिरसा हरियाणा से सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र, राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, आरजू और नव्या बिजारनिया। आप सभी सुनना चाहते हैं अपनी पसंद पर फिल्म वीर जारा से इस गीत को। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत है मदन मोहन कोहली का, गायक है अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन।

बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छनूला शिवास, अनीता पुष्पा शिवास, अंजू योगिता, रजन साहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास बाधवानी, कबीर रेडियो रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालौद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, पूजा, राधिका और प्रभा देवी, तरन तार गाँव कैरो जिला तरन तारण पंजाब से गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता शम

0: और यांग पोहान से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत किया है छाया पाठक ने।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं मैं छाया पाठक। सभी को मेरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम आरंभ करने से पूर्व हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे से। हमारा फोन नंबर है 2660902, भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। हमें प्रतिदिन आपके फोन कॉल्स का इंतजार रहता है, तो चलिए

0: यहाँ मथुरा में यही हाल है, जबरदस्त गर्मी हो रही है,
1: सभी जगह यही हाल हो रहे हैं,
0: गर्म गर्म हवाएं चलती हैं,
1: सब बेहाल है उससे।
0: जी जी लू के प्रकोप में है इस वक्त मथुरा वृंदावन पूरा ब्रज क्षेत्र।
1: जी जी बताएं आज क्या फरमाइश आपकी है।
0: आरुणी दीदी, आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है बाबरची।
1: बाबरची फिल्म।
0: भोर आई गया अंधियारा, बहुत ही सुंदर प्यारा सा गीत है।
1: तो इस समय तो दोपहर है
0: जी, जब ये प्रसारित होता है तो भोर ही रहता है, 11 बजे तो हम
1: तो
0: भोर
1: आप,
0: ही मानते हैं,
1: नहीं तो हमारा
0: गुड मॉर्निंग
1: हमारा
0: बोलते
1: रेडियो
0: हैं,
1: का
0: सवेरे
1: प्रसारण
0: बोलते
1: तो
0: हैं।
1: सुबह 6 बजे से आरंभ हो जाता है, आप देर से आरंभ करते होंगे,
0: जी,
1: है ना।
0: जी
1: हाँ सुबह से सुना करिए, सुबह से ही कार्यक्रम हमारे, सुबह 6 बजे से हमारा रेडियो आरंभ होता है जो रात के 11 बजे तक लगातार चलता है।
0: जी निसंदेह आप
1: सुनिए।
0: मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश या समस्त भारत के आकाशवाणी केंद्र सुबह 6 बजे से प्रारंभ हो जाते हैं। जी
1: चलिए, फोन करने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।

आ दैया दाय उठाय लियो गिर नक पर बंस बजावत देन चलैया जग के मोहन मन में भाए नित्य करत राधा राधा राधा राधा।

0: na na na de de tom na na na de de tom na na na de de tom na na na de de tom de de tom de de tom de de tom de de tom de de tom de de tom de de tom de de tom de de tom de de tom de de tom de de tom de de. कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्ते,
1: मध्य प्रदेश से देवीदास वड़ेले बोल रहा हूँ मैडम जी।
0: देवीदास जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: हाँ जी मैडम जी, आज मुझे गाना सुना है। ये फिल्म का नाम है जैसी करनी वैसी भरनी।
0: जैसी करनी वैसी भरनी, इसका कौन सा
1: गायककार है? नितिन मुकेश
0: जी।
1: और गीत के बोले जैसी करनी वैसी भरनी, जो जो बोएगा वही पाएगा।
0: ये बात तो बिल्कुल सच है कि जो हम बोते हैं वही पाते हैं, कर्मों का फल हमको यही मिल जाता है ना।
1: हाँ मैडम, जो करने की वो तो जो जैसी करने वैसी भरने होती है मैडम जी।
0: हाँ ये बात सही है। आप अपने जीवन में लागू करते हैं?
1: बिल्कुल मैडम जी, मैं तो बिल्कुल अमल करता हूँ।
0: करते हैं?
1: हाँ बिल्कुल मैडम जी। और वो छोटा सुनते उनको भी मैं बस यही कहना चाहता हूँ, वो भी अपनी बात को अमल करे। कोई भी काम अपने से गलत ना हो,
0: गलत ना हो, किसी के लिए बुरा ना करे,
1: किसी का बुरा ना करे, ना बुरा होए,
0: ना बुरा होए के लिए तो ईश्वर देखिए अच्छा बुरा दोनों करता है, लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारी तरफ से किसी को कोई नुकसान ना पहुंचाए हम।
1: जी कहते ना मैडम जी, बुरा जो देखण में गया बुरा ना मुझसे होए।
0: जी
1: जो दिल खोजा अपना बुरा ना मुझसे होए।
0: बिल्कुल, मुझसे बुरा ना कोई।
1: जी
0: चलें, फोन करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।

0: कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने। हेलो,
1: हेलो, मैं बोल रहा हूँ कश्मीर से। जी,
0: थोड़ी आवाज ऊंची रखिए, आवाज नहीं आ रही आपकी बिल्कुल।
1: मैं सुनील गर्ग बोल रहा हूँ
0: सुन,
1: कटनी से।
0: कटनी से।
1: जी,
0: कटनी के हालचाल सुनाए कुछ।
1: हाँ।

0: हेलो,
1: हेलो,
0: नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार
0: फोन करेगी सुने? हाँ
1: जी। हाँ, फोन करें, गीत सुने।
0: मैडम, मैं जसराम जाटव बोल रहा हूँ, जोराई से। हाँ
1: जसराम जाटव, जौराई से। जौराई कहाँ पड़ता है?
0: जिला सीपी में।
1: जिला सीपरी में।
0: हाँ मैडम,
1: अच्छा, वहाँ पर आपका क्या कारोबार है?
0: बात कुछ नहीं मैडम, खेती किसानी करती हैं।
1: खेती किसानी। खेती किसानी से अभी फुर्सत है या कुछ वहाँ पर अभी बोया हुआ है या कुछ काम लगा है आपका?
0: नहीं मैडम, क्या है, अब तो गर्मी का टाइम है तो अब तो कुछ काम नहीं है। अपना काम जो जून से चालू हो जाएगा।
1: जून से चालू हो जाएगा। पानी की कैसी व्यवस्था है आपके यहाँ?
0: पानी की व्यवस्था मैडम, हमारे यहाँ कुआ की व्यवस्था है, कुआ है।
1: कुआँ है तो कुएं में
0: नहीं
1: अभी पानी पूरी गर्मी में रहता है?
0: नहीं मैडम, गर्मी में नहीं रहता है वो। क्या
1: अच्छा,
0: मैडम, गेहूं गेहूं की खेती करा देता है, गर्मी में नहीं रहता पानी उसमें।
1: तो आप लोगों ने सबका मिल करके कुआं है या आपका अकेला कुआं है? वो
0: तीन तीन भाई हैं।
1: तीन भाई हैं।
0: हाँ

0: हेलो, कार्यक्रम फोन करे गीत सुने।
1: जी सर नमस्कार।
0: नमस्कार, आपका क्या रेडियो चल रहा है?
1: जी हाँ।
0: रेडियो का वॉल्यूम कम कर दीजिए या आप उससे दूर हो जाइए। नाम बताएं, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: कोदूलाल जायसवाल, पोस्ट मुकाम भैंसवाही, तहसील बिजरावगढ़, जिला कटनी।
0: जी आप बताएं क्या सुनना चाहेंगे।
1: जी मैं,
0: हाँ
1: आप कौन मैडम बोल रही हैं सर?
0: मैं छाया पाठक बोल रही हूँ। आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: मैं अभी इसी वक्त से,
0: इसी वक्त नहीं, कल।
1: कल धड़कन का दिल में ये कहा है, दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे।
0: चलिए सुनिए अब आप गीत। नमस्कार।

0: आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी नए गीतों, नए श्रोताओं और नए साथी के साथ। आज्ञा दीजिए छाया पाठक को कार्यक्रम से नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर संस्कृत सुभाषितम को साझा करते हुए कहा कि सबसे बड़े लक्ष्य को भी सतत प्रयास, धैर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। देश के लोग इसी भावना से प्रेरित होकर भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं सांस्कृतिक उत्सव सदानीरा समागम भोपाल स्थित भारत भवन में आयोजित किया जा रहा है। आज से 2 जून तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश विदेश के विद्वान, पर्यावरण विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, नीति निर्माता और कलाकार सहभागिता करेंगे। खजुराहो में मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और आयुष मंत्रालय के सहयोग से 25वें काउंटडाउन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यहां आज केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने योग कार्यक्रम का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 21 जून को योग का प्रमुख कार्यक्रम कोलकाता में कराया जाएगा। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक आयोजित की जाएगी। ये देश की पारंपरिक स्वास्थ्य पद्धति को वैश्विक खेल के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इस दिन के बारे में आयुष मंत्रालय द्वारा जारी बहुभाषी पुस्तिका अंग्रेजी, हिंदी और 21 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। ये पुस्तिका एक व्यवहारिक डिजिटल टूल किट के रूप में भी कार्य करती है। और राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप में भारतीय ग्रैंड मास्टर इनियान पनीर सेल्वम ने श्रीलंका में रैपिड और ब्लिट्स दोनों खिताब जीतकर 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। सभी सुनने वालों को साधना जैन का नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? आपने हमें चिट्ठियां भेजी हैं और आपके गाने हमने तैयार कर लिए हैं। पहला गीत हम ले रहे हैं दो बदन फिल्म से। आशा भोसले की आवाज़ है, शकील बदायूनी ने गीत को लिखा है और रवि ने संगीत दिया है। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रेयांश ठाकुर, गुड़िया ठाकुर। छत्तीसगढ़ भाटापारा से दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झाविंद्र कुमार वर्मा। आप सभी की पसंद पर भेज रहे हैं हम ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आपकी फरमाइश। अगला गीत हमने लिया है आप सभी की पसंद पर और जिसे हम सुनवा रहे हैं। आपने चिट्ठियां भेजी हैं गौतम नगर भोपाल से केएल पंजाबी, कमलेश पंजाबी, आशा राय जादा ने, अनिल श्वेता पंजाबी ने, उज्जैन से सुनील पंजाबी और शिल्पा पंजाबी ने, राजेश पंजाबी भोपाल से, डॉक्टर किरण ग्रोवर, डॉक्टर नरेश ग्रोवर ने। तो आप सभी की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं लव स्टोरी फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर के साथ अमित कुमार ने। आनंद बख्शी साहब ने ये गीत लिखा है और राहुल देव बर्मन ने इसका संगीत तैयार किया है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आपकी फरमाइश। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12:11 हुए हैं। लीजिए अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं दो कलियां फिल्म से। लता मंगेशकर के साथ मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है। साहिर लुधियानवी जी ने इस गीत को लिखा है और रवि ने संगीत दिया है। आप सभी ने ये पत्र लिखे हैं मुझे और ये गीत सुनने की फरमाइश की है। भोपाल से विनोद आर्य, शांता आर्य, सीमा विनय अग्रवाल, मृदुल मीनू आर्य, अतुल विनीता अग्रवाल, नेहल, ऋत्विक, सात्विक, अवि, अनु अग्रवाल ने। तो आप सभी की पसंद पर ये गाना हम आपको भेज रहे हैं।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आपकी फरमाइश और मैं हूं आपके साथ साधना। लीजिए अगला गीत हमने पसंद किया है आपकी पसंद पर, दो बूंद पानी से ये फिल्म का गीत है। परवीन सुल्ताना और मीनू पुरुषोत्तम ने इस गीत को गाया है और साथी भी हैं। कैफी आजमी ने इस गीत को लिखा है और जयदेव ने इसका संगीत तैयार किया है। इस गीत को पसंद किया है ममतेश शर्मा, दीपू शर्मा, विनायक शर्मा, अक्षरा, अनुष्का शर्मा ने भोपाल से। इसी गीत को पसंद किया है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पांचोलिया, प्रियंका पांचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पांचोलिया ने।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आपकी फरमाइश। मैं हूं आपके साथ साधना और कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं दिल अपना और प्रीत पराई। इस फिल्म में लता मंगेशकर को गीत लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत है शंकर जयकिशन का। आप सभी श्रोताओं ने हमें चिट्ठियां भेजी हैं। भोपाल सुभाष नगर से सुनील जैन, सुधीर, सारिका जैन, साहिल, अंकिता जैन, समीर, कृतिका जैन, सौम्या, शुभ्रा सम्यक और वेवी शार्बिल ने। तो लीजिए, आप सभी की पसंद पर ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं।

अभी आप सुन रहे थे आपकी फरमाइश, मैं थी आपके साथ साधना जैन। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, अगला प्रसारण अंतराल के बाद।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इसमें सुनिएगा सिसकियों का भाग एक।
1: वैभवी पिक्चर्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक सिसकियां। ये धारावाहिक खेमलता वकलू के उपन्यास खिला फूल मुरझाया पर आधारित है।

0: अजी सुनते हो?
1: क्या है?
0: ये ट्रंक तो जरा खिसकवा दो, रात को सोने के लिए एक तरफ कर दिया था।
1: अरे अरे, ये क्या सुबह सुबह ट्रंक लेकर बैठ गई? अरे अभी अभी तो बहू घर में आई है, सुबह सुबह का वक्त है, सब सो रहे हैं, अभी इसे ट्रंक को कुछ मत कहो।
0: अजी, बहू आई है घर में तो कोई गैर नहीं है, तुम्हारी सगी भांजी है, और वैसे भी तो वो यहाँ एक महीना रह कर गई है। इस घर के मिजाज के बारे में बाखूबी जानती है।
1: अरे अरे मुश्ताक की अम्मा, मैं कह रहा हूँ अभी अभी वो लोग सो रहे हैं, सुबह ही सुबह उनकी आँख खुल जाएगी।
0: अजी कहाँ की बात कर रहे हो,
1: अब
0: हमारी बहू तो सुबह ही उठ गई।
1: हा?
0: वो देखो गाय को चारा डाल रही है।
1: अरे अरे भाई, ये तो गलत बात है, अरे उसे मना करो। अरे अभी भी रात ही तो ब्याह कर लाए हैं, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि बहू के आने में देर नहीं हुई और आते ही बैल की तरह खेत में जोत दिया।
0: अजी मैंने कुछ नहीं कहा उससे, वो खुद उठी है।
1: आ?
0: और शादी से पहले भी जब वो आया करती थी तो घर में सबसे पहले वो ही तो उठती थी। अरे अपने घर में भी तो ऐसे ही उठती थी सारे, उसकी माँ वाता कौन सा काम करती थी, बस सारा बोझ इसी बेचारी पर था।
1: हाँ बात तो तुम ठीक कहती हो, सारे की बचपन से ही ऐसे ही काम करने की आदत है, अपने छोटे भाइयों को भी तो यही संभालती थी।
0: सही कहते हो, तुम्हारी बहन को तो फुर्सत ही नहीं थी घर की तरफ देखने की, वो तो पता नहीं किन किन कामों में अपनी अकल लड़ाती रहती थी।
1: अरे उस पाता के बारे में तो बस क्या कहूँ, अरे गांव का शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिससे उसका झगड़ा ना हुआ हो।
0: हाँ।
1: बाप रे फाता की क्या लंबी जबान है। अरे अरे वो तो मेरी बहन है, इसलिए डर से ज्यादा नहीं बोलती, वरना वरना नाकों चने चबवा दे। अरे तुम तो उसके आगे बहुत सीधी हो, ये फाता बचपन से ही ऐसी थी, घर में सबसे ज्यादा बोलने वाली और लड़ने वाली ये फाता ही थी।
0: लाहौल विलाकुत, क्या कर रहे हो जी, आहिस्ता बोलो, अब उसकी बेटी हमारी बहू है, ये बातें अब हमें जेबा नहीं देती।
1: हाँ जी चुप रहो, अपनी बहन के बारे में ही तो कह रहा हूँ, सारे तो बच्ची है, अरे अपने मामा की बात का क्या बुरा थोड़ी मानेगी वो।
0: खैर छोड़ो भी ये सब बातें, वो अब हमारी समधन है, उनके बारे में हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वैसे कुछ कहो, दोनों की जोड़ी माशाल्लाह अच्छी रही, हमारे मुश्ताक के साथ खूब जचेगी सारे।
1: अरे जचेगी क्यों नहीं, जैसे हमारा मुश्ताक खूबसूरत है वैसे ही सारे में भी देखो कितनी कोशिश है, अरे कोई देखे तो देखता ही रह जाए।
0: हाँ जी।
1: अरे खुदा ने बड़े सोच समझ के जोड़ी बनाई है।
0: हाँ, चलो निकाह तो हो गया। हाँ। अल्लाह ताला अब कर्जा चुकवा दे, निकाह के लिए हम लोगों ने बहुत कर्जा ले लिया, अभी हमारे दो बेटे और हैं, उनके बारे में भी तो सोचना है।
1: अरे तुम फिक्र क्यों करती हो बेगम, तुम देखना देखना, तुम अल्लाह ताला सब कर्जा चुकवा देगा। अरे मुझे मुश्ताक पर पूरा भरोसा है, उसका मालिक कह रहा था मुश्ताक जैसा दर्जी पूरे कश्मीर में ढूंढने से नहीं मिलेगा। और कहता है जितनी मेहनत से काम यहाँ मुश्ताक करता है उतना और कोई भी नहीं करता। अरे देखना देखना, एक दिन तुम बहुत नाम पैदा करेगा हमारा मुश्ताक। और पैसे का क्या है, अरे जब अच्छा कारीगर है तो पैसा कमाना कौन बड़ी बात है। हाँ, चुक जाएगा सब पैसा धीरे धीरे।
0: हाँ हाँ, अब तो सब कुछ पहले से ही सोच कर बैठे हो। अरे ये तो मेरी ही तजवीज थी कि मुश्ताक को दर्जी बनाना है, वरना वो भी आज रसूल की तरह ड्राइवर ही बना होता।
1: उसका तुम नाम मत लो उसका मेरे सामने।
0: अरे क्या हो गया? अब तो उसने रिश्तेदार की बेटी से निकाह भी कर लिया है।
1: अरे नूरी से शादी करके कोई बहुत बड़ा काम अंजाम नहीं दिया उसने। अरे नूरी की शादी उससे नहीं होती तो किसी और से हो जाती, लेकिन ऐसी नौबत तो ना आती कि वो अब वो।
0: क्यों, अब क्या हो गया? मैं तो उसके घर भी नहीं गई, तुम तो गए थे ना परसों वहाँ।
1: हाँ।
0: क्या हुआ? खैरियत तो है ना? तुमने आकर कुछ बताया ही नहीं था।
1: अरे क्या खैरियत है, उस कमबख्त रसूल ने नूरी की नाक में दम कर रखा है, न जीने देता है न मरने देता है, उसको मारता है इतना कि बस पूछो मत। यहाँ आई थी अपने महके में, मैंने उसे देखा, अरे जिस्म पर जगह जगह नील पड़े हुए थे।
0: अरे देखो जी, वैसे ये नूरी भी कम नहीं है, बहुत बड़ी जबान है इसकी। औरत की तो जबान ही जूते खिलवाती है और जबान ही सिर पर बिठवाती है। यहाँ जब नूरी आती थी तो कितना बोलती थी और कितने नखरे करती थी।
1: देखो ये, अरे रसूल की तुम तरफदारी मत करो। अरे तुम्हें पता नहीं, अरे कितना याश आदमी है, तुम्हें पता है? हाँ, पता नहीं तुम्हें? अरे गांव के बाहर कितनी औरतों से, और तो और दो नंबर की कमाई खूब करता है। अरे तभी तो उसके पास इतना पैसा है।
0: अरे रे रे, ये तो बड़ा ही खराब आदमी है। मैं तो इसे इतना बुरा नहीं समझती थी, लेकिन आज तुमने ये सब बताकर।
1: अरे तुम तो औरतें घर में रहती हो, तुम्हें किसी बात की खबर भी रहती है।
0: हाँ हाँ ठीक है, चलो अब ये ट्रंक खिंचवा दो, बहुत हो गई बातें।
1: ठीक है, आओ लो लो। अरे पकड़ पकड़ मुझे।
0: लाइए अम्मी, मैं आपकी मदद करवा देती हूँ। नहीं सारे, तुम अभी किसी भी काम को हाथ ना लगाओ, तुम्हारे मामू नाराज हो रहे थे।
1: अरे
0: अब तुम्हें जिंदगी भर यहाँ काम ही तो करना है, अगर थोड़ा वक्त मिला है तो उसे आराम से काट लो। अभी तुम जाओ, मैं ये काम कर लूंगी। कैसी बातें करती हैं अम्मी, मैं आपकी कोई बहू थोड़े ही हूँ, आपकी बेटी हूँ, और जो काम कल करना है वो आज से ही क्यों ना शुरू कर दूँ।
1: अरे नहीं सारे बेटी, ये सब ठीक नहीं है। देखो आखिर जिम्मेदारी तुम्हें ही निभानी है, अभी अब तुम्हारी अम्मी काम कर रही है तो तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है।
0: हाँ सारे, अभी तुम जाओ, देखो तो शायद मुश्ताक तुम्हें बुला रहा है।
1: देखो बेटी देख लो।
0: ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, अब मैं आप लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। मैं अभी आती हूँ, सबके लिए चाय बनाने जा रही हूँ। अरे भाई ये नहीं माने की, देखना अब तुम ये मुझे किसी काम से हाथ नहीं लगाने देगी।
1: वाह वाह, खुदा ऐसी बहू सबको दे।

0: साराय?
1: हाँ?
0: ओ प्यारी साराय, अरे अपने हाथों से एक प्याली चाय तो पिला दो भाई, अब हमारे काम पर जाने का वक्त हो गया है।
1: अजी, हमारी आंखों के सामने बैठोगे तभी तो चाय पिलाएंगे ना।
0: अरे लो लो लो, ये पानी पियो। इतनी बार कहा है कि चूल्हे में ये गीली लकड़ी मत डाला करो।
1: लो चाय पियो।
0: वाह सारे, तुम्हारे हाथ की चाय पीना भी नसीब वालों को नसीब होता है। क्या चाय बनाई है।
1: अजी, पहले एक घूंट पी तो लो। चाय अभी तुमने पी भी नहीं और तारीफ करनी पहले ही शुरू कर दी।
0: अरे साराय, तुमने जो कुछ बना दिया वो मेरे लिए अमृत है, चाहे वो जैसा भी बना हो।
1: बस बस, अब जल्दी से चाय पियो, आपके जाने का वक्त हो गया है। और वैसे देख रही हूँ आप आजकल यहीं पर देर कर देते हैं।
0: सोच रहा हूँ कि आज जाऊं ही नहीं।
1: क्या?
0: हाँ, कुछ मन नहीं कर रहा है। सारे चलो, आज हम दोनों बैठकर पूरे दिन बात करेंगे।
1: शादी को अब तो काफी दिन गुजर चुके हैं, ये सब बातें अब तो ना किया करो।
0: अरे भाई, हम तो ऐसे ही जिंदगी तुम्हारे आगे बैठकर गुजार दें। सोचता हूँ आज की छुट्टी कर ही लूँ।
1: बस बस, आप छुट्टी का नाम ना लिया करें, पहले ही बहुत छुट्टी कर चुके हैं, ज्यादा छुट्टियां की तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा।
0: अरे बाप रे,
1: क्या हुआ?
0: आज तो बहुत देर हो गई सारा। अच्छा मैं चलता हूँ, हो सकता है मैं दोपहर में चक्कर लगाऊं, जब सब सोते हुए होंगे मैं तभी आऊंगा।
1: हाय अल्लाह, नहीं नहीं, उस वक्त अम्मी जाग रही होती हैं।
0: अच्छा, ये सब बातें दोपहर को करेंगे। खुदा हाफिज।
1: हाफिज खुदा।

0: अरे क्या बात है फाता, आज बड़े गुस्से में घर साफ कर रही हो।
1: अरे घर तो साफ कर रही हूं ना, चाहे गुस्से में ही सही। और यहाँ है भी कौन मेरे साथ काम करने वाला? सारे की शादी ऐसी हुई कि उसने आने की खबर तक नहीं ली। 8 महीने हो गए हैं उसे अपनी ससुराल गए हुए और

0: उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाते रहते हो। अरे अब वो समधी है हमारे, समझे?
1: अरे बेगम, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है तू। अरे तुझे तो खुशी होनी चाहिए कि मैके की उसे याद नहीं आती। उसको ससुराल में इतना प्यार मिला है।
0: क्या क्या कहा? मैं क्या उसे यहाँ मारा पीटा करती थी जो मुझे याद नहीं करती?
1: अरे मुझे पता नहीं क्या, फालतू में अपना दिमाग खराब करती हो और मेरा भी। अरे अब तो उसकी खुशी में ही खुश रहा करो।
0: क्यों, क्या हुआ? मुझे कौन सी जलन हो रही है उसके खुश रहने से?
1: वैसे कुछ भी कहो, सारे की किस्मत खुल गई है वहां जाकर। अब तो उसके पास दो दो गायें हो गई हैं। मुश्ताक की सब जगह धूम है। बहुत अच्छे कपड़े सीता है और पैसा भी बहुत अच्छा कमा रहा है। अरे उसने फजी और सारे को बहुत सारी किरण ला कर दी है। तुम्हारी बेटी वहां खूब ऐश कर रही है।
0: ऐश कर रही है? अरे ये तो मेरी बेटी का नसीब था जो उसे मिल रहा है। कहीं और भी जाती तो ऐसी ही महारानी की तरह रहती। बल्कि किस्मत वाली तो फजी है जिसे सारे जैसी बहू मिली। अरे उसके भाग्य से ही तो ऐश कर रही है, इसलिए तो सारे को यहाँ नहीं आने देती। खुद तो वहाँ महारानी बनकर बैठ जाती होगी और मेरी बेटी पर हुकुम चलाती होगी।
1: अरे अरे बेगम कैसी बातें करती है। अरे अपनी भाभी के बारे में भी तुझे शर्म नहीं आती?
0: शर्म कैसी जी, जो बात सही है वो सही है, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? देखा नहीं है गांव की और लड़कियां कैसे अपने शौहरों और सास ससुर को अपने कब्जे में किए रहती हैं? हमारी सारे तो इतनी सीधी है कि फंस गई होगी उनके चंगुल में।
1: अरे तू पगला गई है क्या? तेरे भेजे में इतनी सी बात क्यों नहीं आती कि वो वहां खुश है?
0: या खुदा, अजी अब वो अपने मुंह से थोड़े ही कहेगी कि मैं परेशान हूँ। वो जो उसकी सास है ना फजी, बहुत ही चुप भुन्नी औरत है। बड़े प्यार प्यार से सारे काम करवा लेती है। और वो जो है हमारी सीधी लड़की सारे, उसको तो बिल्कुल अक्ल ही नहीं है। अरे अपने आप को उस घर में जाकर झोंक दिया। अरे अगर ऐसे ही चलता रहा तो जिंदगी भर उन लोगों की गुलाम बनकर रहेगी, महारानी बनकर नहीं।
1: ओहो, वहां पर करीम और फजी अपने बच्चे की तरह उससे प्यार करते हैं, उसे किसी बात की कमी नहीं होने देते।
0: अरे मेरे भोलू राम, कितने भोलू हो तुम। अरे तुम लड़की के बाप हो, जब तुम वहां पर जाओगे तो तुम्हारे सामने तो काम नहीं कराएंगी ना, बल्कि झूठा प्यार ही करेंगे, समझे?
1: फाता फाता, वो तेरे भाई का घर है, उसके लिए ऐसी गंदी सोच रखती हो।
0: अजी चुप रहो जी, मैंने अच्छे अच्छे घर देखे हैं। करीम अगर मेरा भाई है तो मेरा खून है, पर फजी तो मेरा खून नहीं है। पता नहीं मेरी बच्ची सारे के ऊपर उस फजी ने क्या जादू कर दिया है कि वो हमें याद ही नहीं करती। एक दिन के लिए कभी मिलने भी नहीं आई। अब मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा।
1: ओह,

0: ओ बेगम, तुम कुछ भी ऐसा मत कर देना कि हंसते खेलते परिवार में आग लग जाए।
1: वक्त आने पर बताऊंगी।

0: అమ్మా
1: అమ్మా హా బహు అమ్మా మే ఆప్సే కహ రహీ హూ కి ఆప్ భీ దర్గాహ్ షరీఫ్ చల్తీ తో అచ్చా హోతా నహీ బహు తుమ్ లోగ్ జాఓ దర్గాహ్ పర్ ఔర్ దీప్ చలా కర్ ఆఓ జాఓ లేకిన్ అమ్మా ఆప్ ఘర్ కా సారా కామ్ కరేంగీ అబ్ యే తో అచ్చా నహీ లగేగా నా తుమ్ ఇస్కీ ఫిక్ర్ మత్ కరో బహు మే ఘర్ కా సారా కామ్ కర్ లూంగీ జాఓ आज तुम मुश्ताक के साथ घूम कर आओ जाओ
2: अब चलो भी सारा बहुत देर हो चुकी है निकलो यहाँ से
1: हाँ हाँ चलते हैं जी इतनी जल्दी किस बात की है
2: अगर मैंने तुम्हें आगे की बात बता दी तो तुम सिर के बल भागती हुई चलोगी
1: अच्छा बताओ तो जरा क्या बात है
2: अभी नहीं वक्त आने पर बताऊंगा
1: ओफो मुश्ताक आप बहुत खराब हैं
2: अच्छा बाबा अब चलो यहाँ से चलो
1: चलिए मुश्ताक देखो कितना अच्छा लगता है ना इस डल झील के किनारे बैठकर वादियों को देखना कितनी खूबसूरत दरगाह है कैसा अच्छा लग रहा है यहाँ
2: साराय
1: हाँ
2: तुम तो शायद यहाँ पहली बार आई हो
1: हाँ मुश्ताक मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पर मुझे अगर इसकी खूबसूरती का ज़रा भी अंदाज़ा होता ना तो मैं यहाँ तुम्हारे साथ रोज़ आती
2: अच्छा चलो अब दरगाह में अंदर आओ रत्नदीप और रोट वहीं चढ़ाया जाएगा
1: हाँ, चलिए
2: लो साराय मैंने तुम्हारा दीप जला दिया इसे वहां ले जाओ अरे जाहिल औरत इसने तो दीप बुझा दिया
1: मुश्ताक ये तो अपशगुन है ये ठीक नहीं हुआ
2: अरे नहीं तुम फिक्र मत करो ऐसा कुछ नहीं हुआ हवा से तो दीप बुझ ही जाते हैं फिर जल जाएगा
1: नहीं मुश्ताक ये अच्छा नहीं होता मेरी एक सहेली का दीप भी इसी तरह बुझ गया था उस बेचारी का एक महीने के अंदर ही तलाक हो गया था मुश्ताक
2: अरे मेरी प्यारी गुड़िया जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी अरे जब तक हम नहीं चाहेंगे तो हमें कौन अलग कर सकता है बस तुम नमाज पढ़कर खुदा से दुआ करती रहो चलो तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ आओ इधर आओ वो देखो तेज हवा में कैसे पानी में बहते हुए दिए बुझते जा रहे हैं और पीर साहब उन्हें बार बार जलाते जा रहे हैं
1: हाँ सही कहा आपने वो देखो पीर साहब फिर से जला रहे हैं दीप
2: अरे जब पीर साहब दोबारा जला सकते हैं तो हम क्यों नहीं जला सकते ये देखो ये मैंने माचिस निकाली और ये लगाई
1: लाओ मुझे दो मैं इसे पानी में बहाऊंगी और अब की बार ये नहीं बुझेगा मुश्ताक अब तो बता दो ना कि मुझे कहाँ लिए जा रहे हो मैं चल तो रही हूँ आपके साथ
2: चलो अब तुम पूछ ही रही हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ हम लोग अब निशात बाग जा रहे हैं
1: क्या निशात बाग जा रहे हैं
2: हाँ।
1: ये तो हमें पता ही नहीं था ओ मुश्ताक आप कितने अच्छे हैं कितने प्यारे हैं आप
2: बस बस बस इतना मक्खन मत लगाओ मुझे मालूम है कि तुम आज तक निशात बाग नहीं गई हो और तुम्हारा वहां जाने का बहुत मन था और इसीलिए मैं तुम्हें वहां लेकर जा रहा हूँ
1: मुझे पता है हम कब तक पहुंच जाएंगे वहां

0: बस समझो कि पहुंच ही गए।
1: हाँ?
0: वो देखो सामने बाग की रौनक नजर आई।
1: हाँ? क्या क्या यही निषाद बाग है?
0: हाँ।
1: ये दूर से तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है?
0: अरे सारे सवाल यहीं बैठे बैठे पूछ लोगे क्या? किनारा आ जाए तो खुद ही सब देख लेना। अब देखो सारा नजारा कैसा लगा?
1: नजारा तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुश्ताक यहाँ लड़कियाँ देखो ना कैसे लड़कों के गले में हाथ डालकर घूम रही हैं। इन्हें शर्म नहीं आती? कैसी गंदी लग रही हैं।
0: अरे सारा ये तो आजकल का फैशन है।
1: और देखो तो कैसे बेहुदा कपड़े पहने हैं इन्होंने, सारा जिस्म नजर आ रहा है।
0: अरे मैं ऐसे ही तो कपड़े सिलता हूँ।
1: क्या?
0: हाँ मेरे पास ऐसे ही लोग आते हैं, देखो कितने अच्छे लगते हैं। और ये सब कपड़े मैं तुम्हें भी ला कर दूंगा।
1: मुझे नहीं पहनने। क्या तुम इतने बेहुदा कपड़े सिलते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती?
0: अरे शर्म किस बात की, ये काम है मेरा। अगर ये कपड़े ऐसे नहीं सी कर दूंगा तो मुझे कौन पूछेगा? अब तुम जरा यहाँ पेड़ के नीचे बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ।
1: ठीक है, मैं तुम्हारा यहीं इंतजार कर रही हूँ, पर जल्दी आना।
0: अरे बस यूं गया और यूं आया। देख गुरु देख, क्या लड़की बैठी है। अरे इसका आशिक इसके लिए कुछ लेने गया होगा।
2: अरे गुलाब लेने गया होगा। वैसे यार
3: कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक सिसकियां का पहला भाग। लीजिए अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर संस्कृत सुभाषितम को साझा करते हुए कहा कि सबसे बड़े लक्ष्य को भी सतत प्रयास, धैर्य और दृढ़ इच्छा शक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। देश के लोग इसी भावना से प्रेरित होकर भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं सांस्कृतिक उत्सव सदा नीरा समागम भोपाल स्थित भारत भवन परिसर में आयोजित किया जा रहा है। आज से 2 जून तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश विदेश के विद्वान, पर्यावरण विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, नीति निर्माता और कलाकार सहभागिता करेंगे। खजुराहो में मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान एवं आयुष मंत्रालय के सहयोग से 25वें काउंटडाउन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यहां आज केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राज जाधव ने योग कार्यक्रम का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 21 जून को योग का प्रमुख कार्यक्रम कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक आयोजित की जाएगी। यह देश की पारंपरिक स्वास्थ्य पद्धति को वैश्विक खेल के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। इस दिवस के बारे में आयुष मंत्रालय द्वारा जारी बहुभाषी पत्रिका अंग्रेजी, हिंदी और 21 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। और आईपीएल क्रिकेट में आज चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच होगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से भिड़ेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद में खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की।
5: महिला सभा कार्यक्रम सुन रही सभी बहनों को सुनीता पाठक का प्यार भरा नमस्कार। सखियों हम जानते हैं कि आप समय और पैसे की बचत में माहिर हैं और ऐसी ही सीख आप अपने नौनिहालों को भी दे रही हैं। जाहिर सी बात है, हमारे बुजुर्गों की यह सीख हमेशा उपयोगी है, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाएं। खर्चे जब आय से अधिक हों और गैर जरूरी हों तो वो फिजूल खर्ची ही तो मानी जाती है ना। हमारी जरूरतों की और ख्वाहिशों की कहीं कोई सीमा नहीं होती, हमें उनकी सीमा तय करनी पड़ती है। अपनी आय के मुताबिक व्यय और बचत की आदत तो डालनी ही चाहिए। जरा विचार तो करें कि पैसा तो आया पर गया कहाँ। वेतन मिलते ही एक बजट बनाना जरूरी है सखियों। आपातकालीन बजट हमारा भविष्य सुरक्षित करता है। सुविधाजनक खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है, ये बचत बढ़ाने में मदद कर सकता है। हर 15 दिन में खर्चों का हिसाब जरूर देखें। और हाँ, सिर्फ पैसा बचाना ही काफी नहीं है, उसे सही दिशा देना भी जरूरी है। इसलिए धीरे धीरे निवेश की आदत को भी अपनाएं। वित्तीय अनुशासन हमें आत्मविश्वासी बनाता है। अपने भविष्य, अपने सुखद सपनों के जिम्मेदार हम खुद हैं। हमारी बचत ही हमारे आड़े वक्त की सबसे बड़ी साथी है। जरूरत पर हमें किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाना पड़ेगा ना। अब यही सोच रही है ना आप कि अब तो सुविधाओं के ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन पेमेंट के आदि हो गए हम, क्या करें, ये आदत तो अब दूर ही नहीं होती। तो हमारा ये कहना है, अच्छी आदत की शुरुआत कभी भी शुरू की जा सकती है, आज से ही और अभी से ही। बजट बनाते समय 50-30-20 का फार्मूला अपनाएं। 50% जरूरी कामों में, 30% घूमने, शौक वगैरह में और 20% बचत के लिए सबसे पहले निकाल कर अलग रख दें। अब कुछ खर्चे तो हमारे हाथ में हैं, जिन्हें सीमित रख सकते हैं। जैसे बिजली के खर्च को सीमित रखना तो हमारे हाथ में ही है। 5-स्टार रेटिंग के उपकरण ही इस्तेमाल करें, एसी का कम इस्तेमाल करें। ईएमआई की सुलभता तनाव को लाती है सखियों। विचार विमर्श के बाद ही ईएमआई पर कोई सामान लेने का निर्णय लें। अपने परिवार के साथ बैठकर बात करें कि पिछले महीने कौन सा खर्च फिजूल ही हुआ, जिसके खर्चे से बचा जा सकता था। ऐसी बातों पर संकोच नहीं करें, अपनी नासमझी पर हंस भी सकते हैं आप, और अगले महीने की बैठकर परिवार के साथ प्लानिंग बनाएं। सच तो ये है सखियों कि हम अपनी मुस्कुराहट को जी भर कर खर्च करने में कतई संकोच न करें। इसे जी भर कर लुटाइए, क्योंकि हमारी मुस्कुराहट जो है ना, वो खुशबू की तरह बिखर कर औरों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट ले आती है।

0: और सखियों, हम जानते हैं कि गीत सुनने की तरह ही आपको कहानी सुनना भी बहुत पसंद है। अच्छा कथानक हो, एक सुखद अंत हो और दृश्य इस तरह से रचे गए हों कि ऐसा लगे हम तो इस कहानी के साथ ही चल रहे हैं। ऐसी ही एक प्यारी सी कहानी लेकर आज हम आपके लिए आए हैं, वो सांवली लड़की। ये शीर्षक है इस कहानी का। कहानीकार हैं सुप्रतिष्ठित कहानीकार सुश्री नीरजा वर्मा।
1: रोज शाम को अपने कमरे की बालकनी में बैठे हुए आते जाते लोगों को देखना मेरा प्रिय शगल था। बुजुर्ग सजी धजी महिलाएं, हंसते खेलते हुए बच्चे, सभी तो गुजरते थे घर के सामने से। इन्हीं सब के बीच एक सांवली लड़की भी थी जिसे मैं रोज देखती थी। उम्र होगी यही कोई 20-22 साल। उसकी सादगी में ऐसा आकर्षण था कि जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो जाती तब तक नजरें उसका पीछा करती थीं। एक दिन उसने नजरें ऊपर उठाई और मुझे अपनी ओर देखते हुए पाया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी चोरी पकड़ी गई हो। उस दिन के बाद से कई बार हम लोगों की नज़रें आपस में टकराती और इस प्रकार हम लोगों के बीच एक मौन रिश्ता बन गया था। किसी दिन उसे रास्ते से जाते हुए नहीं देखती तो दिन खाली खाली लगता। वो कहाँ जाती है, क्या करती है, मैं कुछ नहीं जानती थी, पर रोज़ उसका इंतज़ार ज़रूर रहता था। कई दिनों से अब उसके साथ उसी की उम्र का एक नौजवान भी कभी कभी उसके साथ दिखने लगा था, शायद उसका दोस्त था। उन दोनों का जोड़ा बहुत अच्छा लगता था। दोनों हंसते मुस्कुराते हुए बातें करते हुए जाते दिखते थे। उन दोनों को देखकर मुझे अतीत की यादें सताने लगती थीं। मुझे भी अपने वे दिन याद आ जाते थे जब मैं अजय के साथ होती थी। आज याद आ रहा था वो दिन जब मैं अजय के साथ एक प्रदर्शनी देखकर वापस आ रही थी और रास्ते में एक बारात देखकर अजय बोल पड़ा था, भाई हम तो शादी करेंगे तो बड़ी सादगी से, कोई शोर शराबा नहीं, सिर्फ अपने कुछ लोग और तुम्हारे जैसी कोई लड़की जो अपनी सादगी से सबका मन मोह ले। उस समय अजय की आंखों में अपने लिए चाहत देखकर मैं भी उसकी ओर आकर्षित हो गई थी। धीरे धीरे हम एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे कि जिंदगी का सफर साथ तय करना चाहते थे, पर हम दोनों ही इतनी हिम्मत नहीं कर पाए कि अपने घर वालों को समझा पाते या उनके विरोध की परवाह न करते हुए कोई कदम उठा पाते। और फिर वही हुआ जैसा कि आमतौर पर मध्यम वर्गीय परिवारों में होता है। मेरी शादी तय कर दी गई और फिर मैं अपनी घर गृहस्थी में ऐसी फंसी कि पीछे मुड़कर देखने का कभी मौका ही नहीं मिला। लेकिन आज भी एक कसक है मन में अपना मनचाहा जीवन साथी ना पाने की। कुछ दिनों से लड़की फिर अकेली दिखाई दे रही थी। जिज्ञासा हो रही थी कि क्या हुआ, उसका साथी दोस्त वो लड़का कहाँ गया, अब वो इसके साथ क्यों नहीं दिखता। कई सारे सवाल दिमाग में घूमने लगे थे, पर पूछूं तो कैसे, आज तक तो उससे कभी बात की नहीं थी। फिर सोचती मुझे क्या करना, क्यों मैं उसके विषय में इतना सोचती हूँ, क्यों उसके बारे में जानना चाहती हूँ, लेकिन मन था कि मानता ही नहीं था, शायद उसमें मैं अपना अतीत देखती थी। एक दिन मुझसे रहा नहीं गया, जब वो शाम को दिखाई दी तो मैंने उसे इशारे से अपने पास बुलाया। पहले तो वो लड़की कुछ हिचकिचाई, फिर मेरी बालकनी के नीचे आकर खड़ी हो गई। मैंने बालकनी से ही उससे जीने की ओर इशारा करते हुए ऊपर आने को कहा। जैसे ही वो ऊपर आई मैंने उसका स्वागत करते हुए कहा, आओ बेटी, अगर ऐतराज ना हो तो कुछ देर मेरे पास बैठोगी, तुम तो मेरी बेटी जैसी हो,

0: सखियों, गर्मियों के तपते मौसम में हमें अपनी हरी भरी बगिया सबसे अधिक सुकून देती है। अब ये प्यारी सी बगिया आपकी बालकनी, गैलरी, छत, बरामदा कहीं भी सजी हो सकती है। आप क्रोटन्स पसंद करते हैं या रंग बिरंगे फूलों वाले पौधे, सब कुछ आपकी पसंद पर निर्भर करता है। बगिया के पौधे बस आपका दुलार चाहते हैं और बदले में अपनी ताजगी, खुशबू और प्यार बिखेरते हैं। गर्मी आते ही धूप की तेजी से पौधे मुरझाने लगते हैं, लेकिन थोड़े से प्रयास से लू के मौसम में भी ठंडी और हरी दिख सकती है ये बगिया। सखियों, गर्मियों में पौधों को पानी देने का समय सुबह 6 बजे से 8 बजे और शाम 6 बजे से 7 बजे तक का सही माना जाता है। और हाँ, पानी जड़ में ही दें, सुबह के समय पत्तों पर नहीं, क्योंकि पत्तों पर पानी धूप में लेंस का काम करता है, जिससे कि किरणें पत्तियों को झुलसा भी सकती हैं। पौधों की जड़ों के आसपास सूखी पत्तियां, नारियल के छिलके, लकड़ी का बुरादा या घास बिछा दें। पेड़ों के ऊपर ग्रीन नेट लगाएं। छोटे पौधों को बड़े पौधों की छांव में रखें। गर्मी में सदाबहार, गेंदा, बोगेनविलिया, कनेर, स्नेक प्लांट, एरिका पाम, एलोवेरा, मनी प्लांट जैसे पौधों को लगाना चाहिए। ये लू की गर्मी में भी हरे भरे रहते हैं। सखियों, पौधे भी इंसानों जैसे होते हैं, उन्हें भी गर्मी और सर्दी का एहसास होता है। इन्हें भी लू लगती है, प्यास लगती है। अगर पत्ते मुरझाते हुए, कुम्हलाते हुए दिखें तो समझ जाएं कि इन्हें पानी का अमृत और छांव की दरकार है। पंछियों के लिए सकोरे में दाना और पानी रखना भी जरूरी है। इनका घर तो हमारी ये बगिया ही है ना। हमारी बगिया हमसे बहुत अधिक कुछ भी नहीं चाहती, थोड़ी सी देखभाल, प्यार और तेज धूप से बचाओ। घर की सबसे प्यारी जीवंत जगह आपको बार बार अपने पहलू में बुलाएगी। अब महिला सभा कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो अपनी सखी सुनीता पाठक को कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम, प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की थी।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। कलाकार है विजयलता पराशर, प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की है। इनके गाए कुछ लोकगीत आज आप सुनेंगे। आरंभ में ये दादरा

0: इस देवी गीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आज आप सुन रहे थे विजयलता पाराशर के गाए कुछ लोकगीत, प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है सुगम संगीत के कार्यक्रम में वैशाली मोघे के गाए कुछ भजन, प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की है।

0: इस भजन के साथ ही सुगम संगीत का एक कार्यक्रम समाप्त होता है। आज आप सुन रहे थे वैशाली मोघे के गाए कुछ भजन, प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है एक अंतराल का।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भोले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।
5: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन 3 पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
4: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत दिल धड़कने दो। इस फिल्म का ये गीत है। यशिता शर्मा, मनीष कुमार टीपू और साथियों ने इसे गाया है। जावेद अख्तर ने इसे लिखा है, शंकर हसन लॉय ने धुन बनाई है।

0: कुमार सानू के गाए फिल्म दिल का क्या कसूर के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। देश भर में बढ़ती गर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद को हाइड्रेटेड रखने, दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचने और घर से निकलते वक्त पानी साथ रखने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जो प्यासा हो उसे पानी पिलाएं और जानवरों व पक्षियों के लिए भी बाहर पानी रखें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि परिवार और प्रियजनों का हालचाल पूछते रहें और इन मुश्किल दिनों में संवेदनशीलता के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। इस समारोह में 33 विभागों के करीब 14,000 छात्रों को उपाधि दी जाएगी। 285 मेधावी छात्रों को स्वर्ण और रजत पदक से नवाजा जाएगा, जिनमें 199 छात्राएं शामिल हैं। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। इससे पहले खराब मौसम के चलते राष्ट्रपति का नाथुला दौरा रद्द करना पड़ा था। खजुराहो के पश्चिमी मंदिर परिसर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के तहत योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने 100 दिवसीय काउंटडाउन सीरीज के 25वें कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसमें करीब 2,000 लोगों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि

0: योग और खजुराहो दोनों ही हमारी महान भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं।
1: योग आज केवल व्यायाम नहीं बल्कि वन अर्थ वन हेल्थ की भावना को साकार करने वाला समग्र जीवन दर्शन बन चुका है। मध्य प्रदेश सरकार घर घर योग हर व्यक्ति निरोग इस संकल्प के साथ योग और आयुष को जन जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। काउंट डाउन इवेंट के माध्यम से देश भर में लाखों लोग योग से जुड़ रहे हैं और युवा पीढ़ी भी उत्साह से इसको अपना रही है।
0: इस बार 21 जून का मुख्य योग कार्यक्रम कोलकाता में होगा, जिसकी थीम स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग रखी गई है। भोपाल के भारत भवन में आज सदा नीरा समागम का शुभारंभ हुआ। जल संरक्षण, पर्यावरण और भारतीय संस्कृति पर केंद्रित यह 7 दिवसीय कार्यक्रम 2 जून तक चलेगा। इसमें इसरो और काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं के विशेषज्ञ विमर्श करेंगे। शाम को नृत्य नाटिका, लोक गायन और नौसेना बैंड की सिम्फनी जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज माता रमाबाई अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि माता रमाबाई ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर वंचितों के उत्थान और शिक्षा के प्रसार में अहम भूमिका निभाई। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लातूर के डॉक्टर मनोज शिरूरे पर आरोप है कि उन्होंने 3 छात्रों को रसायन विज्ञान के लीक प्रश्न दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। वहीं दूसरे आरोपी पुणे के कोचिंग फैकल्टी तेजस शाह को भौतिक विज्ञान के लीक प्रश्न मिले थे। इस मामले में अब तक 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 49 जगहों पर छापेमारी की जा चुकी है। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में इन दिनों गर्मी का कहर जारी है। कल 16 शहरों में पारा 44 डिग्री के पार चला गया। खजुराहो में तो पारा 46.4 डिग्री तक पहुंच गया, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा रहा। आज भी निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर समेत कई जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। राहत की बात यह है कि 29 मई से आंधी और बारिश का दौर शुरू हो सकता है और जून के दूसरे हफ्ते तक मानसून भी दस्तक दे सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा जिले में ग्रीष्मकालीन सर्वे में पूर्व और पश्चिम वनमंडल में कुल 148 गिद्ध दर्ज किए गए हैं। प्रदेश की पुलिस में कंप्यूटर संवर्ग के 89 पदों पर भर्ती के लिए सफल उम्मीदवारों की शारीरिक दक्षता परीक्षा 7 से 9 जून तक भोपाल के लाल परेड ग्राउंड और जबलपुर के रांझी स्थित परेड ग्राउंड पर होगी। पन्ना में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 27 मई से 2 जून तक जिले के 191 तीर्थयात्री श्री द्वारका सोमनाथ जी की यात्रा करेंगे। और आगरमालवा जिला चिकित्सालय में आयोजित बैठक में आगामी सिंहस्थ के दौरान जिला चिकित्सालय में 300 अतिरिक्त बेड की मांग शासन को भेजे जाने पर चर्चा की गई। इस बुलेटिन पे इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। अब दोपहर समाचार दिल्ली केंद्र से होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के चुनाव आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा, यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। उन्होंने इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध का हवाला दिया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत SIR करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को हासिल करना है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूचियों में पहले से मौजूद व्यक्तियों की नागरिकता की अनुमानित मान्यता समाप्त हो जाती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने SIR को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी BLO 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे।
3: कमीशन की तरफ से दिल्ली में SIR टाइम शेड्यूल लॉन्च हो चुका है जो कि 20 जून से शुरू होगा और 7 अक्टूबर को हमारा फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा। तो इसमें जो हाउस टू हाउस विजिट है BLOs की वो हमारी 30 जून से शुरू होगी और 29 जुलाई तक चलेगी। इस हाउस टू हाउस शेड्यूल में BLO हर इलेक्टर के यहाँ जाएंगे जो भी उनका एड्रेस इलेक्टोरल रोल में है और 2 फॉर्म लेके जाएंगे इनुमरेशन फॉर्म। एक फॉर्म में इलेक्टर ने अपनी डिटेल भरनी है और अपने पास रखना है, दूसरा फॉर्म भर के BLO को दे देना है और दोनों फॉर्म पे BLO काउंटर साइन करेंगे एक्नॉलेजमेंट के लिए।
1: दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि मतदाताओं को भरे हुए जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी मिलेगी। श्री कुमार ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच पड़ताल की व्यवस्था है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: SIR का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। मतदाताओं की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए जागरूकता अभियान और विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि मतदाताओं को जनगणना प्रपत्र जमा करने में सहायता मिल सके। आम जनता की सुविधा के लिए दिल्ली में वर्ष 2002 में हुए अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इस प्रक्रिया में 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच की व्यवस्था रहेगी और राजनीतिक दलों को बूथ स्तर के एजेंटों के माध्यम से इसमें शामिल किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है, जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। उन्होंने सुझाव दिया कि जो भी प्यासा हो उसे एक गिलास पानी जरूर पिलाएं। प्रधानमंत्री ने सभी से ये भी कहा कि वे अपने परिवार और प्रियजनों के संपर्क में रहें और उनका हालचाल पूछते रहें। दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से इन मुश्किल दिनों में पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखने का अनुरोध किया। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कुछ स्थानों और दिल्ली में भीषण लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कोंकण और गोवा, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कारेकाल में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच आज राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। एक रिपोर्ट।
5: झुलसाने वाली गर्मी से प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा प्रभावित है। जयपुर, कोटा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और दौसा सहित कई शहरों में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा गया। करीब 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कोटा की रात सबसे गर्म रही। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए प्रशासन की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव करने, आश्रय स्थल बनाने और पीने के पानी की व्यवस्था लगातार की जा रही है। चिकित्सा संस्थानों में भी लू और तापघात के मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने के साथ आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगतोक में होने वाले सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी इस समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नीट प्रश्न लीक मामले में लातूर के रहने वाले डॉक्टर मनोज शिरोडे को भी गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के अनुसार उन्होंने एक कोचिंग केंद्र के मालिक के बेटे सहित तीन छात्रों को आरोपी पीवी कुलकर्णी से रसायन विज्ञान के प्रश्न दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। गिरफ्तार किया गया दूसरा आरोपी तेजस हर्षद कुमार शाह है, जो पुणे स्थित एक कोचिंग सेंटर डॉक्टर अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी में फिजिक्स का फैकल्टी है। उसे नीट परीक्षा के लीक हुए भौतिक विज्ञान के प्रश्न के आरोपी मनीषा हवलदार से मिले थे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने केरला में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर जांच शुरू कर दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज सुबह से तिरुवनंतपुरम में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर निरीक्षण शुरू कर दिया है। केरलम में 10 से अधिक जगहों पर तलाशी और निरीक्षण की कार्रवाई चल रही है। हालांकि ईडी की ओर से अब तक इन कार्रवाइयों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। इस बीच केरलम हाईकोर्ट ने कल प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। यह याचिका केरलम के कोच्चि स्थित एक निजी कंपनी के अधिकारियों द्वारा दायर की गई थी। ईडी की जांच उस निजी कंपनी के परिसरों में भी जारी है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पुलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यान्वित क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक $50 अरब तक बढ़ा

0: बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत कनाडा व्यापार को मजबूत करने में कनाडा में रह रहे भारतीय प्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।
1: भारत और कनाडा के बीच साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत उनकी मजबूत लोकतांत्रिक नींव है। दोनों देश इस बात पर विश्वास करते हैं कि जब सशक्त संस्थाएं कानून के शासन को मजबूती से कायम रखती है, तब दुनिया के सामने यह एक उदाहरण बनता है कि अच्छे मित्र और भरोसेमंद साझेदार किस तरह साथ मिलकर काम करते हैं। दोनों देशों की सरकारों, संस्थाओं, व्यवसायों और आम लोगों के बीच जो आपसी विश्वास और सहयोग है, वही इस रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाता है।
0: संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नैनी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। श्री हरीश ने कहा कि पाकिस्तान को यह स्वीकार करना होगा कि सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने के परिणाम उसे भुगतने होंगे।
2: पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध, बिना उकसावे की आक्रामक कार्रवाइयों और लगातार सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देकर संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। हजार घाव देकर भारत को कमजोर करने की उसकी नीति आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता और भारत विरोधी गतिविधियों को लगातार बढ़ावा देने की उसकी सोच को दर्शाती है।
3: Anti-India rhetoric has continued unabated since its creation.
0: पाकिस्तान का अब्राहम समझौते में शामिल होने से इनकार करने की रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कड़ी आलोचना की है। रिपब्लिकन सेनेटर ग्राहम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान से संबंधित किसी भी कूटनीति में पाकिस्तान की भूमिका अनुचित है। आईपीएल क्रिकेट में आज मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटरी मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से खेलेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमेरिका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, आपके पत्रों द्वारा भेजी पसंद हम शामिल कर रहे हैं। पहला पत्र शामिल किया है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय की। दुबिया नेवदा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय की। यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार और मुस्कान की। सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े और आकाश कुमार की। सुनना चाहा है दिल है तुम्हारा फिल्म का टाइटल ट्रैक, अलका याग्निक और कुमार सानू और साथ उदित नारायण की आवाज़ है। समीर ने लिखा है, नदीम श्रवण ने स्वरबद्ध किया।

अगला अनुरोध है सलामी फिल्म के लिए। कुमार सानू और अलका याग्निक ने इसे गाया है, समीर का लिखा, नदीम श्रवण ने स्वरबद्ध किया है। सुनना पसंद किया है देवरी भाटापारा से गन्नू लाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री ने। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन राणा ने। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार के मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता।

अगली पसंद शामिल कर रहे हैं छबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानू की। घंटा घर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया और संप्रीत पंचोलिया की। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा सालिया, शुएब खान, पोतरा मुजतबा खान, रऊफ भाई, शाहिद भाई। गाधीबाग अकोला से महेश कटनकर और वैशाली कटनकर। शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसी लाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लबी श्रीवास्तव। पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिया। डर फिल्म का गीत लता मंगेशकर और ए हरिहरन ने इसे गाया है। गीतकार आनंद बशे, संगीतकार शिवहरी।

कार्यक्रम में अगला गीत सुनने की पसंद अपने भेजी है मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित, चितरंजन, कमलेश, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ राजावत और उनके परिवार के सदस्य महसवाड़ी मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीक धाड़े, नीनाजी धाड़े, स्वप्निल धाड़े और अजय खिरोड़कर, गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या करिश्मा कामले। सुनना पसंद किया है सलाम नमस्ते का टाइटल ट्रैक कुणाल गानरजा वाला और वसुंधरा दास ने इसे गाया है।

सलाम नमस्ते फिल्म का ये गीत था, कुणाल गांजावाला और वसुंधरा दास ने इसे गाया था। हमारे नए श्रोताओं के लिए हम बता दें हमारा पता, कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक श्यामला हिल्स आकाशवाणी भोपाल, पिन कोड है 462002। पता एक बार फिर, कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक श्यामला हिल्स आकाशवाणी भोपाल, पिन कोड है 462002। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज ऑन AIR ऐप और साथ ही वेव्स OTT ऐप पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: देश भर में बढ़ती गर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद को हाइड्रेटेड रखने, दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचने और घर से निकलते वक्त पानी साथ रखने की अपील की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। इस समारोह में 33 विभागों के करीब 14,000 छात्रों को उपाधि दी जाएगी। 285 मेधावी छात्रों को स्वर्ण और रजत पदक से नवाजा जाएगा, जिसमें 199 छात्राएं शामिल हैं। खजुराहो के पश्चिमी मंदिर परिसर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के तहत योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने 100 दिवसीय काउंटडाउन सीरीज के 25वें कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भोपाल के भारत भवन में आज सदा नीरा समागम का शुभारंभ हुआ। जल संरक्षण, पर्यावरण और भारतीय संस्कृति पर केंद्रित यह 7 दिवसीय कार्यक्रम 2 जून तक चलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज माता रमाबाई अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि माता रमाबाई ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर वंचितों के उत्थान और शिक्षा के प्रसार में अहम भूमिका निभाई। नीट UG 2026 पेपर लीक मामले में CBI ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लातूर के डॉक्टर मनोज शिरूरे पर आरोप है कि उन्होंने 3 छात्रों को रसायन विज्ञान के लीक प्रश्न दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। एक अन्य आरोपी को पुणे से गिरफ्तार किया गया है। और प्रदेश में इन दिनों गर्मी का कहर जारी है। कल 16 शहरों में पारा 44 डिग्री के पार चला गया। खजुराहो में 46.4 डिग्री सेल्सियस तक पारा दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा रहा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। मीडियम वेव पर सभा समापन के पूर्व बता दें आपको सांध्यकालीन सभा के मुख्य आकर्षण। शाम 5 बजे युवाओं का कार्यक्रम युववाणी होगा। प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की होगी। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6 बजे। सुर्खियों में, ये कार्यक्रम रात्रि 8 बजे प्रसारित करेंगे। चर्चा का विषय है, रात 9:30 पर दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात 10 बजे नाटक सुनिएगा उपेक्षित, लेखक घनश्याम सिंह तोमर, प्रस्तुतकर्ता होंगे चित्रेंद्र स्वरूप राजन। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागरजनी में पंडित विश्व मोहन भट्ट का गिटार पर बजाया रागेश्वरी राग आप सुनेंगे। ये थे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। और आकाशवाणी भोपाल से शाम 7:21 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम सभा। आज का आकर्षण होगा फरमाइशी लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग। ये थी जानकारी आकाशवाणी भोपाल और आकाशवाणी मध्य प्रदेश से संध्याकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, DTH के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप और साथ ही वेव्स OTT ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। इस समय दोपहर के 3:02 होने वाले हैं। हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे अपने कार्यक्रमों के साथ मीडियम वेव पर हम पुनः उपस्थित होंगे। अब अनुमति दीजिए, इस बीच हमारा प्रसारण DTH पर जारी है। DTH के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।

प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। आज आप सुनेंगे विजयलता पाराशर के गाए कुछ लोकगीत। आरंभ कर रहे हैं इस दादरा के साथ।

विजयलता पाराशर के गाए आप लोकगीत सुन रहे हैं, और लीजिए अब सुनिए ये चेतावनी।

इस देवी गीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आज आप सुन रहे थे विजय लता पाराशर के गाए कुछ लोक गीत। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत के कार्यक्रम में वैशाली मोघे के गाए कुछ भजन।

इस भजन के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आज आप सुन रहे थे वैशाली मोघे के गाए कुछ भजन। DTH के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत।

दिल से फिल्म का ये गीत सुनिए, गुलजार का लिखा है, AR रहमान ने धुन बनाई है, सपना अवस्थी और सुखविंदर सिंह ने गाया है।

सलाम है इश्क फिल्म की ये कव्वाली सुनिए। सोनू निगम, श्रेया घोषाल, कुणाल गांजावाला और साधना सरगम ने गाए हैं। शंकर महादेवन ने इसकी धुन बनाई है और समीर का लिखा गीत है। शंकर हसन लॉय की धुन है।

0: जतिन ललित के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा यह गीत था, उदित नारायण और अलका याग्निक ने गाया था। फिल्म थी दिल क्या करे। इसके साथ ही चितपट संगीत समाप्त हुआ। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: मंत्रिमंडल ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। देश भर में बढ़ती गर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि खुद को हाइड्रेटेड रखने, दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचने और घर से निकलते वक्त पानी साथ रखना जरूरी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। इस समारोह में 33 विभागों के करीब 14,000 छात्रों को उपाधियां दी जाएंगी। 285 मेधावी छात्रों को स्वर्ण पदक और रजत पदक से नवाजा जाएगा, जिसमें 199 छात्राएं शामिल हैं। खजुराहो के पश्चिमी मंदिर परिसर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के तहत योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने 100 दिवसीय काउंटडाउन सीरीज के 25वें कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भोपाल के भारत भवन में आज सदा नीरा समागम का शुभारंभ हुआ। जल संरक्षण, पर्यावरण और भारतीय संस्कृति पर केंद्रित यह 7 दिवसीय कार्यक्रम 2 जून तक चलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज माता रमाबाई अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि माता रमाबाई ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर वंचितों के उत्थान और शिक्षा के प्रसार में अहम भूमिका निभाई। और सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पहले दौर में भारत के शीर्ष खिलाड़ी HS प्रणय ने इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: DTH के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। पेश है उर्दू प्रोग्राम कहकशां।

दोस्तों, अभी आप रजिया बानो की आवाज में कव्वाली समाअत फरमा रहे थे और कलाम था ताबिश कानपुरी का। हम बात कर रहे थे रूहानी सफर और सब्र के बारे में। रूहानी मसाफात का अवलीन जीना खुलूस नियत है और इस अज़्म को पाए तकमील तक पहुंचाने वाली कुव्वत सब्र है। रूहानियत का मफहूम तर्क दुनिया नहीं, बल्कि हुजूमे दुनिया में रहते हुए खालिख़े हकीकी से लो लगाए रखना है। इस ताल्लुक की बुनियाद सब्र पर खड़ी है। जिंदगी में जब हालात हमारी मर्जी के खिलाफ होते हैं, तो वही लम्हा हमारे सब्र का इम्तिहान होता है। सब्र दरअसल वो खामोश तवानाई है जो इंसान की शख्सियत को बिखेरने से बचाती है। ये हमें सिखाता है कि हर तारीख रात के बाद एक रोशन सुबह मुकद्दर है। जब हम दामने सब्र थामते हैं, तो गोया हम खालिखे कायनात की हिकमत पर इस यकीन का इजहार करते हैं कि तेरी रजा मेरी तमन्ना से फायक है। जब तक कल्ब में सब्र की कंदील रोशन न हो, रास्ते की धूल मंजिल का गुबार बन जाती है। इस शेर में कैफियत सब्र को किस महारत से बयान किया है कि आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होने तक। समय हमारे इस प्रोग्राम की अगली पेशकश के जानिब रुख करते हैं, जहां हम सुनेंगे महमूद निजामी और साथी की आवाज में ये कव्वाली। समाप्त कीजिए।

दोस्तों भी आप महमूद निजामी और साथी की आवाज में कव्वाली समाअत फरमा रहे थे। हम बात कर रहे थे सब्र की। सब्र के कठिन रास्ते पर जब इंसान थकने लगता है तो उसे जिस सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है यकीन, जो इस कहकशा का सबसे रोशन सितारा है। यकीन वो ताकत है जो तपते हुए सहराओं में भी ठंडक का एहसास दिलाती है। जब बंदाए मोमिन लब्बैक की सदा बुलंद करता है तो उसे कामिल भरोसा होता है कि उसकी पुकार अर्शे मौला तक रसाई पा चुकी है। ये यकीन ही है जो उसे हुजूम में तन्हा नहीं होने देता और तन्हाई में अल्लाह के करीब कर देता है। यकीन वो नूर है जो अंधेरों में भी रास्ता दिखाता है। जब हम मकामे इब्राहिम पर खड़े होते हैं या सफा मरवा के दरमियान दौड़ते हैं तो दरअसल हम उस यकीन की तारीख को दोहरा रहे होते हैं जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम का शेवा था। रूहानी सफर हमें दर्स देता है कि अगर यकीन कामिल मयसर हो तो बेआबो गया वादियों से भी चश्माए जमजम फूट सकता है। जब इंसान यकीन की मेराज पर होता है तो नामुमकिनात भी मुमकिन होने लगती हैं। यकीन हमें तूफानों में साहिल की उम्मीद और मौजों में साबित कदमी अता करता है। रूहानी सफर का मुसाफिर तभी बामुराद होता है जब उसका यकीन संगे गिरा की तरह मजबूत हो। अल्लामा इकबाल ने इस यकीन को हयात इंसान की शमशीर करार दिया है। यकीन महकम अमल पाहम, मोहब्बत फातेह आलम, जिहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। सामीन, इस प्रोग्राम की अगली पेशकश मुनव्वर मासूम कव्वाल की आवाज में और कलाम है हनीफ भोपाली का, समाप्त कीजिए।

0: अभी आप सुन रहे थे उर्दू प्रोग्राम कहकशां। DTH के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
1: जब भी हम सड़क पर निकालें वाहन तो रखें इन बातों का ध्यान।
2: स्कूटर मोटरसाइकिल जैसे दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहनें।
1: और चार पहिया वाले वाहन चलाते समय सीट बेल्ट जरूर बांधें।
2: चौराहे पर हमेशा वाहन को जेब्रा क्रॉसिंग से पहले रोकें और ट्रैफिक सिग्नल का पालन अवश्य करें।
1: वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात न करें।
2: वाहन हमेशा निर्धारित गति सीमा के अंदर ही चलाएं।
1: नशे की हालत में कभी वाहन न चलाएं।
2: 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और किशोरों को वाहन चलाने के लिए प्रोत्साहित ना करें।
1: दो पहिया वाहन में दो से अधिक व्यक्ति ना बैठें।
2: चार पहिया वाहन में भी सीट की संख्या के अनुरूप ही लोग बैठें।
1: वाहन के इंडिकेटर, हेडलाइट, ब्रेक, पहिए इत्यादि को हमेशा दुरुस्त हालत में रखें।
2: वाहन के सभी कागजात अपने साथ जरूर रखें।
1: थोड़ी सी सावधानी
2: दूर करे सभी परेशानी।
3: बाजू।

0: कहते हैं प्यारे पम पम पम।
1: डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक सिसकियां का पहला भाग।
2: वैभवी पिक्चर्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक सिसकियां। ये धारावाहिक खेमलता वकलू के उपन्यास खिला फूल मुरझाया पर आधारित है।

0: अजी सुनते हो,
1: क्या है?
0: ये ट्रंक तो जरा खिसकवा दो, रात को सोने के लिए एक तरफ कर दिया था।
1: अरे अरे, ये क्या सुबह सुबह ट्रंक लेकर बैठ गई? अरे अभी अभी तो बहू घर में आई है, सुबह सुबह का वक्त है, सब सो रहे हैं। अभी इसे ट्रंक को कुछ मत कहो।
0: अजी

0: बहू आई है घर में तो कोई गैर नहीं है, तुम्हारी सगी भांजी है। और वैसे भी तो वो यहाँ एक महीना रह कर गई है। इस घर के मिजाज के बारे में बाखूबी जानती है।
1: अरे अरे मुश्ताक की अम्मा, मैं कह रहा हूँ अभी अभी वो लोग सो रहे हैं, सुबह ही सुबह उनकी आँख खुल जाएगी।
0: जी कहाँ की बात कर रहे हो,
1: अब
0: हमारी बहू तो सुबह ही उठ गई।
1: हा?
0: वो देखो गाय को चारा डाल रही है।
1: अरे अरे फजी भाई, ये तो गलत बात है, अरे उसे मना करो। अरे अभी अभी रात ही तो ब्याह कर लाए हैं, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि बहू के आने में देर नहीं हुई और आते ही बैल की तरह खेत में जोत दिया।
0: अजी मैंने कुछ नहीं कहा उससे, वो खुद उठी है। और शादी से पहले भी जब वो आया करती थी तो घर में सबसे पहले वो ही तो उठती थी। अरे अपने घर में भी तो ऐसे ही उठती थी सारे, उसकी माँ फाता कौन सा काम करती थी, बस सारा बोझ इसी बेचारी पर था।
1: हाँ बात तो तुम ठीक कहती हो, सारे की बचपन से ही ऐसे ही काम करने की आदत है, अपने छोटे भाइयों को भी तो यही संभालती थी।
0: सही कहते हो, तुम्हारी बहन को तो फुर्सत ही नहीं थी घर की तरफ देखने की, वो तो पता नहीं किन किन कामों में अपनी अकल लड़ाती रहती थी।
1: अरे उस पाता के बारे में तो बस क्या कहूँ, अरे गांव का शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिससे उसका झगड़ा ना हुआ हो।
0: हाँ।
1: बाप रे फाता की क्या लंबी जबान है। अरे अरे वो तो मेरी बहन है इसलिए डर से ज्यादा नहीं बोलती, वरना नाकों चने चबवा दे। अरे तुम तो उसके आगे बहुत सीधी हो, ये फाता बचपन से ही ऐसी थी, घर में सबसे ज्यादा बोलने वाली और लड़ने वाली ये फाता ही थी।
0: लाहौल बिलाकुत, क्या कर रहे हो जी, आहिस्ता बोलो, अब उसकी बेटी हमारी बहू है, ये बातें अब हमें जेबा नहीं देती।
1: हाँ जी चुप रहो, अपनी बहन के बारे में ही तो कह रहा हूँ, सारे तो बच्ची है, अरे अपने मामा की बात का क्या बुरा थोड़ी मानेगी वो।
0: खैर छोड़ो भी ये सब बातें, वो अब हमारी समधन है, उनके बारे में हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वैसे कुछ कहो, दोनों की जोड़ी माशाल्लाह अच्छी रही, हमारे मुश्ताक के साथ खूब जचेगी सारे।
1: अरे जचेगी क्यों नहीं, जैसे हमारा मुश्ताक खूबसूरत है वैसे ही सारे में भी देखो कितनी कोशिश है, अरे कोई देखे तो देखता ही रह जाए।
0: हाँ जी,
1: अरे खुदा ने बड़े सोच समझ के जोड़ी बनाई है।
0: हाँ चलो निकाह तो हो गया, अल्लाह ताला अब कर्जा चुकवा दे। निकाह के लिए हम लोगों ने बहुत कर्जा ले लिया, अभी हमारे दो बेटे और हैं, उनके बारे में भी तो सोचना है।
1: अरे तुम फिक्र क्यों करती हो बेगम, तुम देखना तुम, अल्लाह ताला सब कर्जा चुकवा देगा। अरे मुझे मुश्ताक पर पूरा भरोसा है, उसका मालिक कह रहा था मुश्ताक जैसा दर्जी पूरे कश्मीर में ढूंढने से नहीं मिलेगा। और कहता है जितनी मेहनत से काम यहाँ मुश्ताक करता है उतना और कोई भी नहीं करता। अरे देखना देखना एक दिन तुम, बहुत नाम पैदा करेगा हमारा मुश्ताक। और पैसे का क्या है, अरे जब अच्छा कारीगर है तो पैसा कमाना कौन बड़ी बात है। हाँ चुक जाएगा सब पैसा धीरे धीरे।
0: हाँ हाँ अब तो सब कुछ पहले से ही सोच कर बैठे हो। अरे ये तो मेरी ही तजवीज थी कि मुश्ताक को दर्जी बनाना है, वरना वो भी आज रसूल की तरह ड्राइवर ही बना होता।
1: उसका तुम नाम मत लो उसका मेरे सामने।
0: अरे क्या हो गया,

0: उसने रिश्तेदार की बेटी से निकाह भी कर लिया है।
1: अरे नूरी से शादी करके कोई कोई बहुत बड़ा काम अंजाम नहीं दिया उसने। अरे नूरी की शादी उससे नहीं होती तो किसी और से हो जाती, लेकिन ऐसी नौबत तो ना आती कि वो अब वो।
0: क्यों, अब क्या हो गया? मैं तो उसके घर भी नहीं गई, तुम तो गए थे ना परसों वहाँ। क्या हुआ, खैरियत तो है ना? तुमने आकर कुछ बताया ही नहीं था।
1: अरे क्या खैरियत है, उस कमबख्त रसूल ने नूरी की नाक में दम कर रखा है, न जीने देता है न मरने देता है, उसको मारता है इतना कि बस पूछो मत। यहाँ आई थी अपने महके में, मैंने उसे देखा, अरे जिस्म पर जगह जगह नील पड़े हुए थे।
0: अरे देखो जी, वैसे ये नूरी भी कम नहीं है, बहुत बड़ी जबान है इसकी, औरत की तो जबान ही जूते खिलवाती है और जबान ही सिर पर बिठवाती है। यहाँ जब नूरी आती थी तो कितना बोलती थी और कितने नखरे करती थी।
1: देखो देखो देखो ये, अरे रसूल की तुम तरफदारी मत करो। अरे तुम्हें पता नहीं, अरे कितना याश आदमी है, तुम्हें पता है? हाँ पता नहीं तुम्हें? अरे गांव के बाहर कितनी औरतों से, और तो और दो नंबर की कमाई खूब करता है, अरे तभी तो उसके पास इतना पैसा है।
0: अरे रे रे, ये तो बड़ा ही खराब आदमी है, मैं तो इसे इतना बुरा नहीं समझती थी, लेकिन आज तुमने ये सब बताकर।
1: अरे तुम तो औरतें घर में रहती हो, तुम्हें किसी बात की खबर भी रहती है।
0: हाँ हाँ ठीक है, चलो अब ये ट्रंक खिंचवा दो, बहुत हो गई बातें।
1: ठीक है आओ लो। लो।
0: लाइए अम्मी, मैं आपकी मदद करवा देती हूँ। नहीं सारे, तुम अभी किसी भी काम को हाथ ना लगाओ, तुम्हारे मामू नाराज हो रहे थे।
1: अरे
0: अब तुम्हें जिंदगी भर यहाँ काम ही तो करना है, अगर थोड़ा वक्त मिला है तो उसे आराम से काट लो। अभी तुम जाओ जाओ, मैं ये काम कर लूंगी। कैसी बातें करती हैं अम्मी, मैं आपकी कोई बहू थोड़े ही हूँ, आपकी बेटी हूँ, और जो काम कल करना है वो आज से ही क्यों ना शुरू कर दूँ?
1: अरे नहीं सारे बेटी, ये सब ठीक नहीं है। देखो आखिर जिम्मेदारी तुम्हें ही निभानी है, अभी अब तुम्हारी अम्मी काम कर रही है तो तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है।
0: हाँ सारे अभी तुम जाओ, देखो तो शायद मुश्ताक तुम्हें बुला रहा है।
1: देखो बेटी देख लो।
0: ठीक है जैसी आपकी मर्जी, अब मैं आप लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। मैं अभी आती हूँ, सबके लिए चाय बनाने जा रही हूँ। अरे भाई ये नहीं मानेगी, देखना अब तुम, ये मुझे किसी काम से हाथ नहीं लगाने देगी।
1: वाह वाह, खुदा ऐसी बहू सबको दे।

0: साराय?
1: हाँ?
0: ओ प्यारी साराय, अरे अपने हाथों से एक प्याली चाय तो पिला दो भाई, अब हमारे काम पर जाने का वक्त हो गया है।
1: अजी, हमारी आंखों के सामने बैठोगे तभी तो चाय पिलाएंगे ना।
0: अरे लो लो लो, ये पानी पियो। इतनी बार कहा है कि चूल्हे में ये गीली लकड़ियां मत डाला करो।
1: लो चाय पियो।
0: वाह सारे, तुम्हारे हाथ की चाय पीना भी नसीब वालों को नसीब होता है। क्या चाय बनाई है।
1: अजी, पहले एक घूंट पी तो लो। चाय अभी तुमने पी भी नहीं और तारीफ करनी पहले ही शुरू कर दी।
0: अरे साराए, तुमने जो कुछ बना दिया वो मेरे लिए अमृत है, चाहे वो जैसा भी बना हो।
1: बस बस, अब जल्दी से चाय पियो, आपके जाने का वक्त हो गया है। और वैसे देख रही हूँ आप आजकल यहीं पर देर कर देते हैं।
0: सोच रहा हूँ कि आज जाऊं ही नहीं।
1: क्या?
0: हाँ, कुछ मन नहीं कर रहा है। सारे चलो, आज हम दोनों बैठकर पूरे दिन बात करेंगे।
1: शादी को अब तो काफी दिन गुजर चुके हैं, ये सब बातें अब तो ना किया करो।
0: अरे भाई, हम तो ऐसे ही जिंदगी तुम्हारे आगे बैठकर गुजार दें। सोचता हूँ आज की छुट्टी कर ही लूँ।
1: बस बस, आप छुट्टी का नाम ना लिया करें, पहले ही बहुत छुट्टी कर चुके हैं, ज्यादा छुट्टियां की तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा।
0: अरे बाप रे,
1: क्या हुआ?
0: आज तो बहुत देर हो गई सारा। अच्छा मैं चलता हूँ, हो सकता है मैं दोपहर में चक्कर लगाऊं, जब सब सोते हुए होंगे मैं तभी आऊंगा।
1: हाय अल्लाह, नहीं नहीं, उस वक्त अम्मी जाग रही होती हैं।
0: अच्छा, ये सब बातें दोपहर को करेंगे। खुदा हाफिज।
1: हाफिज खुदा।

0: अरे क्या बात है फाता, आज बड़े गुस्से में घर साफ कर रही हो।
1: अरे घर तो साफ कर रही हूँ ना, चाहे गुस्से में ही सही। और यहाँ है भी कौन मेरे साथ काम करने वाला? सारे की शादी ऐसी हुई कि उसने आने की खबर तक नहीं ली। 8 महीने हो गए हैं उसे अपनी ससुराल गए हुए, और एक दिन के लिए भी नहीं आई अपनी माँ से मिलने।
0: अरे अगर वो नहीं आई है तो तुम जाकर क्यों नहीं मिल लेती? आखिर वो भी तो तुम्हारे भाई का घर है।
1: हाय अल्लाह, तुमसे मैंने कोई मशवरा नहीं मांगा। जब देखो उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाते रहते हो। अरे अब वो समधी है हमारे, समझे?
0: अरे बेगम, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है तू। अरे तुझे तो खुशी होनी चाहिए कि मैके की उसे याद नहीं आती। उसको ससुराल में इतना प्यार मिला है।
1: क्या क्या कहा? मैं क्या उसे यहाँ मारा पीटा करती थी जो मुझे याद नहीं करती?
0: अरे मुझे पता नहीं क्या, फालतू में अपना दिमाग खराब करती हो और मेरा भी। अरे अब तो उसकी खुशी में ही खुश रहा करो।
1: क्यों क्या हुआ? मुझे कौन सी जलन हो रही है उसके खुश रहने से?
0: वैसे कुछ भी कहो, सारे की किस्मत खुल गई है वहां जाकर। अब तो उसके पास 2-2 गायें हो गई हैं। मुश्ताक की सब जगह धूम है। बहुत अच्छे कपड़े सीता है और पैसा भी बहुत अच्छा कमा रहा है। अरे उसने फजी और सारे को बहुत सारी किरण ला कर दी है। तुम्हारी बेटी वहां खूब ऐश कर रही है।
1: ऐश कर रही है? अरे ये तो मेरी बेटी का नसीब था जो उसे मिल रहा है। कहीं और भी जाती तो ऐसी ही महारानी की तरह रहती। बल्कि किस्मत वाली तो फजी है जिसे सारे जैसी बहू मिली। अरे उसके भाग्य से ही तो ऐश कर रही है, इसलिए तो सारे को यहाँ नहीं आने देती। खुद तो वहाँ महारानी बनकर बैठ जाती होगी और मेरी बेटी पर हुकुम चलाती होगी।
0: अरे अरे बेगम कैसी बातें करती है। अरे अपनी भाभी के बारे में भी तुझे शर्म नहीं आती?
1: शर्म कैसी जी, जो

0: अजी अब वो अपने मुंह से थोड़े ही कहेगी कि मैं परेशान हूँ। वो जो उसकी सास है ना फजी, बहुत ही चुभुन्नी औरत है, बड़े प्यार प्यार से सारे काम करवा लेती है। और वो जो है हमारी सीधी लड़की सारे, उसको तो बिल्कुल अक्ल ही नहीं है। अरे अपने आप को उस घर में जाकर झोंक दिया। अरे अगर ऐसे ही चलता रहा तो जिंदगी भर उन लोगों की गुलाम बनकर रहेगी, महारानी बनकर नहीं।
1: आफ़ो, वहां पर करीम और फजी अपने बच्चे की तरह उससे प्यार करते हैं, उसे किसी बात की कमी नहीं होने देते।
0: अरे मेरे भोलू राम, कितने भोलू हो तुम। अरे तुम लड़की के बाप हो, जब तुम वहां पर जाओगे तो तुम्हारे सामने तो काम नहीं कराएंगी ना, बल्कि झूठा प्यार ही करेंगे, समझे?
1: फाता फाता, वो तेरे भाई का घर है, उसके लिए ऐसी गंदी सोच रखती हो।
0: अजी चुप रहो जी, मैंने अच्छे अच्छे घर देखे हैं। करीम अगर मेरा भाई है तो मेरा खून है, पर फजी तो मेरा खून नहीं है। पता नहीं मेरी बच्ची सारे के ऊपर उस फजी ने क्या जादू कर दिया है कि वो हमें याद ही नहीं करती। एक दिन के लिए कभी मिलने भी नहीं आई। अब मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा।
1: ओहो, देखो बेगम, तुम कुछ भी ऐसा मत कर देना कि हंसते खेलते परिवार में आग लग जाए।
0: वक्त आने पर बताऊंगी।

0: अम्मा।
1: हाँ बहू। अम्मा मैं आपसे कह रही हूँ कि आप भी दरगाह शरीफ चलती तो अच्छा होता।
2: नहीं बहू, तुम लोग जाओ दरगाह पर और दीप जला कर आओ, जाओ।
1: लेकिन अम्मा आप घर का सारा काम करेंगी, अब ये तो अच्छा नहीं लगेगा ना।
2: तुम इसकी फिक्र मत करो बहू, मैं घर का सारा काम कर लूँगी। जाओ, आज तुम मुश्ताक के साथ घूम कर आओ, जाओ।
3: अब चलो भी साराय, बहुत देर हो चुकी है, निकलो यहाँ से।
1: हाँ हाँ चलते हैं जी, इतनी जल्दी किस बात की है।
3: अगर मैंने तुम्हें आगे की बात बता दी तो तुम सिर के बल भागती हुई चलोगी।
1: अच्छा बताओ तो जरा क्या बात है।
3: अभी नहीं, वक्त आने पर बताऊंगा।
1: ओफो मुश्ताक, आप बहुत खराब हैं।
3: अच्छा बाबा, अब चलो यहाँ से, चलो।
1: चलिए। मुश्ताक देखो कितना अच्छा लगता है ना, इस डल झील के किनारे बैठकर वादियों को देखना। कितनी खूबसूरत दरगाह है, कैसा अच्छा लग रहा है यहाँ।
3: साराय।
1: हाँ।
3: तुम तो शायद यहाँ पहली बार आई हो।
1: हाँ मुश्ताक, मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पर। मुझे अगर इसकी खूबसूरती का ज़रा भी अंदाज़ा होता ना तो मैं यहाँ तुम्हारे साथ रोज आती।
3: अच्छा चलो अब दरगाह में अंदर आओ, रत्नदीप और रोट वहीं चढ़ाया जाएगा।
1: हाँ, चलिए।
3: लो साराय, मैंने तुम्हारा दीप जला दिया, इसे वहां ले जाओ। अरे जाहिल औरत, इसने तो दीप बुझा दिया।
1: मुश्ताक ये तो अपशगुन है, ये ठीक नहीं हुआ।
3: अरे नहीं तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं हुआ, हवा से तो दीप बुझ ही जाते हैं, फिर जल जाएगा।
1: नहीं मुश्ताक ये अच्छा नहीं होता, मेरी एक सहेली का दीप भी

0: इसी तरह बुझ गया था। उस बेचारी का एक महीने के अंदर ही तलाक हो गया था मुश्ताक।
1: अरे मेरी प्यारी गुड़िया, जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अरे जब तक हम नहीं चाहेंगे तो हमें कौन अलग कर सकता है। बस तुम नमाज पढ़कर खुदा से दुआ करती रहो। चलो तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। आओ इधर आओ, वो देखो तेज हवा में कैसे पानी में बहते हुए दिए बुझते जा रहे हैं और पीर साहब उन्हें बार बार जलाते जा रहे हैं।
0: हाँ सही कहा आपने, वो देखो पीर साहब फिर से जला रहे हैं दीप।
1: अरे जब पीर साहब दोबारा जला सकते हैं तो हम क्यों नहीं जला सकते। ये देखो, ये मैंने माचिस निकाली और ये लगाई।
0: लाओ मुझे दो, मैं इसे पानी में बहाऊंगी और अब की बार ये नहीं बुझेगा। मुश्ताक अब तो बता दो ना कि मुझे कहाँ लिए जा रहे हो, मैं चल तो रही हूँ आपके साथ।
1: चलो अब तुम पूछ ही रही हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, हम लोग अब निशात बाग जा रहे हैं।
0: क्या निशात बाग जा रहे हैं? ये तो हमें पता ही नहीं था। ओ मुश्ताक आप कितने अच्छे हैं, कितने प्यारे हैं आप।
1: बस बस बस इतना मक्खन मत लगाओ। मुझे मालूम है कि तुम आज तक निशात बाग नहीं गई हो और तुम्हारा वहां जाने का बहुत मन था। और इसीलिए मैं तुम्हें वहां लेकर जा रहा हूँ।
0: मुझे पता है, हम कब तक पहुंच जाएंगे वहां पर?
1: बस समझो कि पहुंच ही गए।
0: हाँ?
1: वो देखो सामने बाग की रौनक नजर आई।
0: हाँ? क्या यही निशात बाग है?
1: हाँ।
0: ये दूर से तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है?
1: अरे सारे सवाल यहीं बैठे बैठे पूछ लोगी क्या, किनारा आ जाए तो खुद ही सब देख लेना। अब देखो सारा नजारा कैसा लगा।
0: नजारा तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुश्ताक यहाँ लड़कियाँ देखो ना कैसे लड़कों के गले में हाथ डालकर घूम रही हैं, इन्हें शर्म नहीं आती, कैसी गंदी लग रही हैं।
1: अरे सारे ये तो आजकल का फैशन है।
0: और देखो तो कैसे बेहुदा कपड़े पहने हैं इन्होंने, सारा जिस्म नजर आ रहा है।
1: अरे मैं ऐसे ही तो कपड़े सिलता हूँ।
0: क्या?
1: हाँ मेरे पास ऐसे ही लोग आते हैं, देखो कितने अच्छे लगते हैं, और ये सब कपड़े मैं तुम्हें भी लाकर दूंगा।
0: मुझे नहीं पहनने। क्या तुम इतने बेहुदा कपड़े सिलते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती?
1: अरे शर्म किस बात की, ये काम है मेरा, अगर ये कपड़े ऐसे नहीं सी कर दूंगा तो मुझे कौन पूछेगा। अब तुम जरा यहाँ पेड़ के नीचे बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ।
0: ठीक है, मैं तुम्हारा यहीं इंतजार कर रही हूँ, पर जल्दी आना।
1: अरे बस यूं गया और यूं आया। देख गुरु देख क्या लड़की बैठी है, अरे इसका आशिक इसके लिए कुछ लेने गया होगा।
2: अरे गुलाब लेने गया होगा, वैसे यार लड़की है बहुत अच्छी।
3: चुप चुप, वो देख वो आ गया है उसका।
1: लो सर आए पकौड़िया खाओ।
0: अरे आप ये पकौड़िया लेकर क्यों आए, आपने मुझसे कहा होता तो मैं आपको ऐसी ही पकौड़ियाँ घर पर बनाकर खिला देती।
1: तुम मुझे ऐसी पकौड़ियाँ खिलाती, तुम्हें मालूम है कैसे बनती हैं ये?
0: हाँ हाँ मुझे मालूम है ये कैसे बनती हैं, खाना बनाना मुझे आपने तो नहीं सिखाया ना।
1: अरे भाई हमने कब कहा कि हम खाना बना सकते हैं, हमें तो खुद खाना नहीं बनाना आता। हाँ बस ऐसी पकौड़ियाँ कभी खाई नहीं घर में, बस इसलिए कहा।
0: अच्छा तो देखिए आपको मैं इतनी पकौड़ियाँ खिलाऊंगी, इतनी पकौड़ियाँ खिलाऊंगी कि आपका जी भर जाएगा।
1: अच्छा सारे अब ये बताओ कि अब चलने का इरादा है कि नहीं?
0: जब आप कहें तभी चल दें।
1: तो चलिए मेम साहब, बहुत वक्त गुजर गया है यहाँ।
0: चलिए, आज बहुत मजा आया मुश्ताक।
4: अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक सिसकियां की पहली कड़ी। गीतकार अशोक वर्मा, संगीतकार मोहनलाल, गायिका सुप्रिया श्रीवास्तव, ध्वनि मुद्रण और संपादन जितेंद्र, लेखक अक्रम खान, निर्माता निर्देशक अंशु आनंद। भाग लेने वाले कलाकार थे नीलम, सतीश कक्कड़, लोकेश, सुप्रिया, हरीश, ललित और आनंद। अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पहली कड़ी। कुछ ही देर में हमारा अगला प्रसारण होगा।

वेव न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन साथ ही DTH के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में संध्या के 5 बजे हैं। अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।

0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि भारतीय योग परंपरा को सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़कर स्वस्थ, जागरूक एवं आध्यात्मिक रूप से समृद्ध समाज के निर्माण की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी क्षेत्रांतर्गत आने वाले 16 जिलों में पीएम सूर्यघर योजना के तहत अब तक कुल 39,975 उपभोक्ता पंजीकृत हुए हैं, जिनके खातों में 311,64,00,000 से अधिक की राशि सब्सिडी के रूप में जमा कराई जा चुकी है। प्रदेश न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक 13,36,000 किसानों से गेहूं का उपार्जन कर देश में अव्वल है। अब तक 103,48,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया जा चुका है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित ई प्रवेश प्रक्रिया 2026-27 के अंतर्गत प्रथम चरण में विद्यार्थियों द्वारा पंजीयन एवं प्रवेश प्रक्रिया में सहभागिता की जा रही है। अभी तक स्नातक, स्नातकोत्तर एवं एनसीटीई पाठ्यक्रमों में कुल 2,10,460 आवेदनों का सत्यापन पूर्ण किया जा चुका है। प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों के लिए राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल द्वारा 3 से 5 जून 2026 तक भारतीय ज्ञान परंपरा विषय पर 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और विद्युत वितरण कंपनियों ने विद्युत दुर्घटनाओं से बचाव के लिए आमजनों और उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे विद्युत लाइनों, वितरण ट्रांसफार्मरों और अन्य विद्युतीय उपकरणों से किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करें। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है।

कुछ लोग चले जाते हैं मगर विचार अमर हो जाते हैं। जो देश के लिए जिए हों वो दिलों में घर कर जाते हैं। सपनों से जिसने भारत को नई पहचान दिलाई, ऐसे महान नेता को आज हम श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। युववाणी कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों को सौम्या शिंदे का प्यार भरा नमस्कार। हर शाम की तरह आज भी हम लेकर आए हैं आपके लिए ढेर सारी बातें, नई जानकारियाँ और ऐसे विषय जो हमें अपने देश, समाज और अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाते हैं। आज का दिन बहुत विशेष है। 27 मई का दिन हमारे देश के इतिहास में एक भावुक स्मृति के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, महान स्वतंत्रता सेनानी और आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू केवल एक राजनेता नहीं थे, बल्कि वे एक दूरदर्शी विचारक, लेखक और ऐसे नेता थे जिन्होंने स्वतंत्र भारत के सपनों को दिशा देने का काम किया। उन्होंने उस भारत की कल्पना की थी जो शिक्षा, विज्ञान, लोकतंत्र और एकता के आधार पर दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाए। नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक प्रसिद्ध वकील थे और उनकी माता स्वरूप रानी नेहरू एक सरल और संस्कारी महिला थीं। बचपन से ही नेहरू जी की पढ़ाई में बहुत ही रुचि थी और उन्हें प्रकृति, इतिहास और विज्ञान में भी विशेष रुचि थी। आगे की पढ़ाई के लिए वे इंग्लैंड गए, जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से शिक्षा प्राप्त की। लेकिन विदेश में रहकर भी उनका दिल भारत के लिए धड़कता रहा। उन्होंने देखा कि किस तरह अंग्रेज भारत के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर वे स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। आज़ादी की लड़ाई के दौरान उन्होंने कई बार जेल यात्राएं की, कठिनाइयां झेली, लेकिन कभी अपने कदम पीछे नहीं हटाए। कहा जाता है कि सच्चा नेता वही होता है जो अपने देश के लोगों के लिए सपने देखे और उन्हें पूरा करने का साहस भी रखे। नेहरू जी ऐसे ही नेता थे। जब भारत आज़ाद हुआ तब देश गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और कई समस्याओं से जूझ रहा था। ऐसे समय में उन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण की नींव रखी। उन्होंने बड़े बड़े बांधों, फैक्ट्रियों और वैज्ञानिक संस्थानों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा। उनके प्रयासों से IIT, वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र और कई विश्वविद्यालय स्थापित हुए। उनका विश्वास था कि यदि देश को मजबूत बनाना है तो युवाओं को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाना होगा। नेहरू जी बच्चों से बेहद प्रेम करते थे। बच्चे भी उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे। वे मानते थे कि बच्चे देश का भविष्य हैं और यदि बच्चों को सही शिक्षा और संस्कार दिए जाएं तो देश का भविष्य उज्जवल होगा। यही कारण है कि उनके जन्मदिन को चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है। नेहरू जी ने एक बार कहा था, नागरिकता देश की सेवा में निहित है। यह बात हमें सिखाती है कि केवल अधिकारों की बात करना पर्याप्त नहीं, बल्कि हमें अपने कर्तव्यों को भी समझना चाहिए। आज उनकी पुण्यतिथि पर हमें उनके विचारों को याद करना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने अपने विचारों और कार्यों से देश को नई दिशा दी। देशभक्ति, एकता और अपने वतन के प्रेम के लिए भावना हमेशा उनके व्यक्तित्व में दिखाई देती थी। अब इसी खूबसूरत भावना को और करीब से महसूस करते हैं एक प्रेरणादायक देशभक्ति गीत के साथ। गीत के बाद आगे चर्चा करेंगे भारतीय लोकतंत्र और युवाओं की भूमिका के बारे में।

जब भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात होती है तो लोकतंत्र और भारतीय राजनीति की चर्चा अपने आप ही शुरू हो जाती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इसकी सबसे बड़ी ताकत यहाँ की जनता है। आज़ादी के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी देश को एकजुट रखना। अलग अलग भाषा, धर्म, संस्कृति और परंपराओं वाले इस विशाल देश को एक सूत्र में बांधना आसान नहीं था, लेकिन नेहरू जी ने लोकतंत्र और संविधान के में विश्वास रखते हुए देश को आगे बढ़ाया। लोकतंत्र केवल चुनाव तक सीमित नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है हर नागरिक को अपनी बात कहने का अधिकार, समानता का अधिकार और सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार। लेकिन इसके साथ साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। आज के समय में सोशल मीडिया और इंटरनेट के कारण जानकारी बहुत तेजी से फैलती है। हर दिन हमें हजारों खबरें देखने और सुनने को मिलती हैं, लेकिन हर जानकारी सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए हमें जागरूक नागरिक बनना होगा और किसी भी खबर पर विश्वास करने से पहले उसकी सच्चाई जांचनी होगी। युवा शक्ति किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है। आज भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में गिना जाता है। यदि हमारे युवा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें तो देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। नेहरू जी भी युवाओं पर बहुत भरोसा करते थे। उनका मानना था कि युवा केवल देश का भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान की सबसे ऊंची ऊर्जा है। इसलिए युवाओं को राजनीति, समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण में भाग लेना चाहिए। राजनीति का मतलब केवल नेताओं की बहस नहीं होती। राजनीति का संबंध हमारे जीवन की हर सुविधा से जुड़ा होता है, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल और रोजगार तक। इसलिए देश के हर नागरिक को जागरूक रहना चाहिए। आज कई युवा स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, नई तकनीकों पर काम कर रहे हैं और दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। यह वही भारत है जिसका सपना नेहरू जी ने देखा था, आत्मनिर्भर, प्रगतिशील और मजबूत भारत। लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि विकास तभी संभव है जब समाज में एकता बनी रहे। धर्म, भाषा और जाति के नाम पर नफरत फैलाना देश को कमजोर करता है। नेहरू जी हमेशा एकता में शक्ति की बात करते थे। आज जरूरत है कि हम एक दूसरे का सम्मान करें और देश हित को सबसे ऊपर रखें। लोकतंत्र की ताकत केवल सरकार से नहीं बल्कि देश के जागरूक नागरिकों और युवाओं से मिलती है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और नेताओं ने जिस भारत का सपना देखा था उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आज हम सभी की है। तो आइए देश के प्रति सम्मान और समर्पण की भावना को महसूस करते हैं और इस भावुक गीत के साथ उन्हें याद करते हैं। गीत के बाद बात करेंगे शिक्षा, विज्ञान और युवाओं के सपनों की।

शक्ति है जो किसी भी समाज को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। आज शिक्षा का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। आज का समय प्रतियोगिता का समय है। हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए ज्ञान और कौशल दोनों जरूरी हैं। लेकिन केवल किताबों की पढ़ाई ही काफी नहीं है, हमें व्यवहारिक ज्ञान भी सीखना चाहिए। नेहरू जी वैज्ञानिक सोच को बहुत महत्व देते थे। वे चाहते थे कि भारत अंधविश्वास से ऊपर उठकर विज्ञान और तर्क की राह पर चले। यही कारण है कि उन्होंने वैज्ञानिक संसाधनों और रिसर्च सेंटर की स्थापना पर विशेष ध्यान दिया। आज भारत के वैज्ञानिक अंतरिक्ष में नए कीर्तिमान बना रहे हैं। हमारे देश ने चंद्रयान और मार्स ऑर्बिटर मिशन जैसे मिशनों के जरिए पूरी दुनिया में अपनी क्षमता साबित की है। यह सब शिक्षा और विज्ञान की ताकत का ही परिणाम है। लेकिन शिक्षा का उद्देश्य केवल अच्छी नौकरी पाना ही नहीं होना चाहिए। शिक्षा हमें एक अच्छा इंसान भी बनाती है। हमें अपने जीवन में ईमानदारी, अनुशासन, दया और संवेदनशीलता जैसे गुणों को भी अपनाना चाहिए। आज डिजिटल युग में पढ़ाई के तरीके बदल गए हैं। मोबाइल और इंटरनेट के जरिए घर बैठे नई चीज़ें सीखी जा सकती हैं। ऑनलाइन क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी और एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ने शिक्षा को आसान बनाया है। लेकिन तकनीक का सही उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पूरा समय केवल सोशल मीडिया और मनोरंजन में बिताएंगे तो यह हमारे समय और क्षमता दोनों का नुकसान करेगा। इसलिए हमें इंटरनेट का इस्तेमाल सीखने और खुद को बेहतर बनाने के लिए भी करना चाहिए। किताबें आज भी हमारी सबसे अच्छी मित्र हैं। एक अच्छी किताब इंसान की सोच बदल सकती है। नेहरू जी स्वयं भी पढ़ने और लिखने के बहुत शौकीन थे। उन्होंने कई पुस्तकें लिखीं जिनमें द डिस्कवरी ऑफ इंडिया विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इस पुस्तक में उन्होंने भारत के इतिहास, संस्कृति और सभ्यता का सुंदर वर्णन किया है। आज ज़रूरत है कि हम शिक्षा को केवल परीक्षा पास करने का माध्यम ना समझें बल्कि खुद को बेहतर बनाने का साधन माने। शिक्षा और सकारात्मक सोच ही वह शक्ति है जो इंसान को जीवन में आगे बढ़ने का हौसला देती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी हमेशा युवाओं को बड़े सपने देखने और मेहनत करने के लिए प्रेरित करते थे। आज जब हम विकास और आधुनिकता की बात करते हैं तो एक और महत्वपूर्ण विषय हमारे सामने आता है, पर्यावरण संरक्षण। प्रकृति केवल हमारी जरूरत नहीं बल्कि हमारे जीवन का आधार है। स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी, पेड़ पौधे और प्राकृतिक संसाधन ही हमें स्वस्थ जीवन देते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी प्रकृति से बेहद प्रेम करते थे। वे मानते थे कि इंसान और प्रकृति का रिश्ता संतुलन और संवेदनशीलता पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने बड़े विकास कार्यों के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर भी जोर दिया था। लेकिन आज तेजी से बढ़ते प्रदूषण, पेड़ों की कटाई और प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग ने पर्यावरण के सामने कई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। गर्मी लगातार बढ़ रही है, मौसम बदल रहे हैं और प्राकृतिक संतुलन प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हम सभी की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें अपने जीवन में छोटी छोटी आदतें अपनानी होंगी, जैसे पानी की बचत करना, बिजली का सही उपयोग करना, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करना और अधिक से अधिक पेड़ लगाना। आज के युवा इस बदलाव में सबसे बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। यदि हर व्यक्ति साल में केवल एक पौधा भी लगाए और उसकी देखभाल करे तो हमारा वातावरण काफ़ी बेहतर हो सकता है। हमें यह समझना होगा कि प्रकृति की रक्षा करना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है, क्योंकि सुरक्षित पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों को बेहतर भविष्य दे सकता है। इसी सकारात्मक सोच और प्रकृति के प्रति सम्मान की भावना के साथ सुनते हैं एक खूबसूरत प्रेरणादायक गीत जो हमें जीवन और उम्मीद का संदेश देता है।

आज के समय में एक और महत्वपूर्ण विषय है युवाओं का मानसिक और सामाजिक विकास। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई युवा तनाव, चिंता और अकेलेपन जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। कई बार प्रतियोगिता और असफलता का डर युवाओं को निराश कर देता है, लेकिन यह समझना होगा कि जीवन में सफलता और असफलता दोनों ही जरूरी हैं। कई बार प्रतियोगिता और असफलता का डर युवाओं को निराश कर देता है, लेकिन यह समझना होगा कि जीवन में सफलता और असफलता दोनों ही जरूरी हैं। असफलता हमें मजबूत बनाती हैं और आगे बढ़ने की सीख देती हैं। नेहरू जी हमेशा सकारात्मक सोच रखने की बात करते थे। उनका मानना था कि कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हमें अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना चाहिए, खेलकूद और योग को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए और अपने मन की बात अपनों से साझा करनी चाहिए। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन ही सफलता की असली कुंजी है। इसके साथ साथ हमें समाज के प्रति भी संवेदनशील बनना चाहिए। ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना, पर्यावरण की रक्षा करना और समाज में सकारात्मकता फैलाना हम सभी की जिम्मेदारी है। अगर हर युवा अपने जीवन में एक छोटा सा सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करे तो पूरा समाज बदल सकता। आपसे बात करते करते समय का पता ही नहीं चलता। घड़ी अब इशारा कर रही है कि विदा लेने का समय हो गया है। आशा है कि आज का यह विशेष कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, पर्यावरण और युवाओं से जुड़े विचारों ने आपको जरूर प्रेरित किया होगा। अपने देश से प्रेम करें, अपने कर्तव्यों को समझें और हमेशा सीखते रहने की आदत बनाए रखें। इसी शुभकामना के साथ मैं सौम्या शिंदे आपसे लेती हूं विदा। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने सपनों को पूरा करते रहें। नमस्कार।

0: अभी आप आकाशवाणी ग्वालियर के योगदान से सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर। सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।
0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में थोड़ी ही देर में लेते हैं एक अंतराल।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर, तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात, जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके साथ।
4: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गुमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। सुनते हैं अग्निपथ फिल्म से ये गीत अजय की आवाज में, जिसके बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत से सजाया है अजय अतुल ने।

और अब सुनिए अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म से। ये गीत आतिफ असलम ने गाया है, अरशाद कामिल के बोल है और इसे संगीत से सजाया है प्रीतम ने।

और इस गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश, और अब लेते हैं एक अंतराल।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में संध्या के 5:58 हुए हैं और अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। समारोह में 33 विभागों के करीब 14,000 छात्रों को उपाधि प्रदान की गई। 285 मेधावी छात्रों को स्वर्ण और रजत पदक से नवाजा गया, जिसमें 199 छात्राएं शामिल रहीं। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में सार्थक पीडीएस योजना को अम्ब्रेला योजना के रूप में जारी रखने की मंजूरी दी है। 16वें वित्त आयोग चक्र के दौरान लागू इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक भी शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सत्यापन पुष्टि पर्ची से संबंधित दिशा निर्देशों में बदलाव की मांग वाली याचिका पर कहा है कि इस बारे में निर्णय लेने का अधिकार निर्वाचन आयोग का है। न्यायालय ने कहा कि यह तकनीकी मामला है और निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। खजुराहो के पश्चिमी मंदिर परिसर में केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 100 दिवसीय काउंटडाउन सीरीज के 25वें कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में करीब 2,000 लोगों ने भाग लिया। और आईपीएल में आज शाम 7:30 मोहाली में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: पतंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कर लीजिए, और जो स्वीकार ना किया जा सके उससे दूर हो जाइए, लेकिन हर हाल में खुद को खुश रखिए, क्योंकि खुश रहना आपकी जिम्मेदारी है।
3: बहुत ही सुंदर विचार, आपको धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कलां दुर्ग से संजय कुमार साहू जी का।
2: ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
3: और पगबंधी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे।
2: भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी।
3: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, आज एक बार फिर से हम रोचक जानकारी लेकर आए हैं दुनिया के एक और बेहद प्रसिद्ध फूल की। तो विमलेश जी, कल हमने बात की थी चेरी के फूलों की।
2: जी, तो अब ये बताइए हमारे श्रोताओं को आज हम किस फूल की बात करेंगे।
3: विमलेश जी, आज हम बात करेंगे ट्यूलिप फूल की। ये भी दुनिया के प्रसिद्ध फूलों में से एक है।
2: वाह जी जी, भला ट्यूलिप फूलों की सुंदरता को कौन नहीं जानता।
3: बिल्कुल।
2: तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से मेरा ये है, ट्यूलिप फूल मूल रूप से किस देश का है, यानी इसकी उत्पत्ति का स्थान कहाँ माना जाता है।
3: विमलेश जी, वैसे दुनिया भर में ये माना जाता है कि ट्यूलिप फूल मूल रूप से नेदरलैंड्स या हॉलैंड का है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है
2: जी।
3: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि सच्चाई क्या है।
2: जी, श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि दरअसल ट्यूलिप फूल मूल रूप से मध्य एशिया के कजाकिस्तान देश का माना जाता है। यहाँ से ट्यूलिप तुर्की पहुंचा और फिर सारे यूरोप में फैल गया। तो अजीत जी, अब बात करते हैं ट्यूलिप नाम कैसे पड़ा, अब आपकी बारी।
3: जी, अब मेरी बारी। तो बता दूं कि ट्यूलिप शब्द आया है तुर्की और फारसी शब्द दुलबंद से, जिसका अर्थ होता है लंबी पगड़ी। यदि इस फूल की खुली पंखुड़ियों के मोड़ को देखें तो ये सच में मोड़दार लंबी पतली तुर्की पगड़ी जैसा ही दिखता है। 16वीं शताब्दी में जब ये फूल तुर्किस्तान के ओटोमन साम्राज्य में पहुंचा तो राजनयिक और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित लोगों ने इसके समान दिखने वाली टोपियां बनवाई, जिसे तुलिपा कहा जाता था। बाद में ये शब्द फ्रेंच, डच और अंग्रेजी भाषा में मिलकर ट्यूलिप बन गया।
2: जी, रंग, आकार और पंखुड़ियों के आधार पर इस फूल की 3000 से भी अधिक प्रजातियां दुनिया में पाई जाती हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि ट्यूलिप फूल कई रंगों के होते हैं, जैसे लाल, सफेद, गुलाबी, बैंगनी और नारंगी। लेकिन सबसे प्रसिद्ध और महंगा है काले रंग का ट्यूलिप।
3: जी,
2: ये रात में ही खिलता है, इसलिए इसे क्वीन ऑफ द नाइट कहा जाता है। हर रंग का अर्थ है।
3: जैसे
2: लाल रंग ट्यूलिप प्रेम का, पीला ट्यूलिप मित्रता का, सफेद ट्यूलिप क्षमा और शांति का, और बैंगनी ट्यूलिप राजसी गरिमा का।
3: जी, इसीलिए अक्सर अवसर और भावना के अनुसार ये ट्यूलिप फूल किसी को दिए या भेजे जाते हैं।
2: जी,
3: अब विमलेश जी, एक और प्रश्न है मेरे पास जिसका उत्तर हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे, विशेषकर वे जो बागवानी में रुचि रखते हैं। और मेरा प्रश्न ये है कि ट्यूलिप फूल कैसे उगाया जाता है।
2: अजीत जी, सबसे रोचक बात तो ये है कि ट्यूलिप फूल बीज से नहीं उगता था, लेकिन कंद या बल्ब से उगाया जाता है। एक स्वस्थ कंद कई वर्षों तक फूल उगा सकता है। जहाँ तक इन फूलों के खिलने का प्रश्न है, ये फूल मार्च से मई तक खिलते हैं।
3: जी श्रोताओं, इन फूलों की दुनिया भर में भारी मांग है। ये व्यावसायिक या कमर्शियल फूल माने जाते हैं और इनका व्यापार करोड़ों डॉलर का है।
2: अजीत जी, जब आपने कमर्शियल फूल की बात की तो मुझे एक बहुत ही रोचक घटना याद आ गई।
3: हाँ, वो क्या?
2: 17वीं सदी में नेदरलैंड्स में एक अनोखी आर्थिक घटना हुई जिसे ट्यूलिप मेनिया कहा जाता है।
3: ये घटना क्या थी?
2: उन दिनों यूरोप में ट्यूलिप फूलों की भारी मांग थी। मांग इतनी अधिक थी कि कहते हैं कि ट्यूलिप फूल के मात्र एक कंद की कीमत लगभग एक घर की कीमत के बराबर हो गई थी।
3: ये तो बड़ी रोचक जानकारी विमलेश जी। श्रोताओं, नेदरलैंड्स के रंग बिरंगे फूलों के खेत दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध हैं। मीलों तक लहराते हुए ट्यूलिप फूलों के खेतों को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। जहां तक भारत की बात है, भारत का सबसे प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन।
2: तो अजीत जी, समाप्त करने से पहले एक और बड़ी रोचक बात श्रोताओं से साझा कर लेते हैं। ट्यूलिप के फूल आमतौर पर गंधहीन होते हैं। कुछ प्रजातियां ही हैं जिनमें बहुत हल्की सुगंध आती है। तापमान और रोशनी के अनुसार अपनी पंखुड़ियां खोल या बंद कर सकते हैं। ये अक्सर रात को लगभग बंद हो जाते हैं
3: और सुबह होते ही अपनी पंखुड़ियां खोलकर सूर्य का स्वागत करते हैं, मानो कह रहे हो गुड मॉर्निंग सन।
2: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी ट्यूलिप के सुंदर फूलों की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
3: तो हमारा प्रश्न है श्रोताओं कि मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा?
3: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800-44-0559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
3: और अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है समझदारी।
2: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि आपस में प्रेम और सहयोग की भावना के साथ रहने में ही समझदारी और सबकी भलाई है।
3: जी।
4: वकार पढ़ने में बहुत होशियार था। एक दिन उसने अपने वालिद से 50 रुपए मांगे। उसके वालिद ने पूछा,
5: बेटा तुम 50 रुपयों का क्या करोगे?
6: अब्बा, मुझे इन रुपयों की जरूरत है। मुझे एक पेंसिल, एक रबर और एक पेंसिल तराश खरीदना है।
5: अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हें ये सब चीजें खरीद कर दे दूंगा।
6: अब्बा, मुझे इन चीजों की अभी जरूरत है, मुझे स्कूल का काम करना है।
5: लेकिन बेटा, क्या तुम ये सब चीजें खुद खरीद लोगे? क्या तुम्हें रुपयों को जोड़ना और घटाना आता है?
6: जी हाँ, मुझे रुपयों को जोड़ना और घटाना अच्छी तरह से आता है।
5: अच्छा, जरा ये तो बताओ कि इन रुपयों से तुम ये चीजें किस किस तरह खरीदोगे?
6: इन 50 रुपयों से मैं 20 रुपए की एक कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, 5 रुपए की रबर और 5 रुपए की पेंसिल तराश खरीदूंगा।
5: बेटा, अब जोड़ कर बताओ कि कुल कितने रुपए हुए?
6: 20 रुपए की कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, ये हुए 25 रुपए। अब इन 25 रुपयों में 5 रुपए रबर के जोड़ दिए तो हो गए 30 रुपए। इन 30 रुपयों में 5 रुपए पेंसिल तराश के जोड़े तो कुल हुए 35 रुपए।
5: शाबाश बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक हिसाब लगाया है। अच्छा तो ये बताओ कि 50 रुपए में से तुमने 35 रुपए का सामान खरीद लिया, अब तुम्हारे पास कितने रुपए बाकी बचे?
6: 50 रुपयों में से 35 रुपए घटाए तो बचे 15 रुपए।
5: तुम्हें तो जोड़ना और घटाना खूब आता है। ये लो 50 रुपए और ये सभी चीजें खरीद कर ले आओ।
3: प्रिय मित्र, अब कुछ हमारे सोचने और करने के लिए। जब हम छोटे बच्चों के हाथ में कुछ पैसे देते हैं तो क्या बाद में उस पैसे का हिसाब उनसे पूछते हैं? यदि हमारा जवाब हाँ है तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे में समझदारी, जिम्मेदारी और ईमानदारी का जज्बा बढ़ता है। और हाँ बच्चों, जब घर के बड़े आपको पैसे देते हैं तो क्या आप उन्हें खुद जाकर पैसे का हिसाब देते हैं? यदि हाँ तो फिर भाई इसके लिए तो आपको शाबाशी देनी चाहिए। बड़े पूछें या ना पूछें, आप हिसाब जरूर दीजिए। आई ना बात समझ में?
5: मश्क।
4: होशियार,
5: समझदार,
4: पेंसिल तराश,
5: पेंसिल को छीलने वाला शार्पनर। सोचिए और बताइए, वकार ने अपने वालिद से 50 रुपए क्यों मांगे?
4: वकार को क्या क्या चीजें खरीदनी थी?
5: सब चीजें खरीदने के बाद वकार के पास कितने रुपए बाकी बचे?
4: बेटे से सही हिसाब सुनकर वालिद ने क्या कहा?
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम समझदारी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वनि अंकन मयंक कुमार, निर्देशन विमलेश चौधरी, निर्माण जगबंधु जाना तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। अभी आपने सुना कार्यक्रम समझदारी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है कैप्टन विक्रम बत्रा।
2: इस कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के दौरान अपार वीरता का प्रदर्शन करने वाले परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के शौर्य का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार रणनीतिक और भौगोलिक रूप से कमजोर स्थिति में भी उन्होंने सियाचिन के टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया और अपने प्राणों की आहुति दे दी।
7: साथियों, सन 1999 में हुआ कारगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें सेना के युवा अधिकारी अग्रणी रहे। इन रणबांकुरों के साहस और शौर्य भरे कारनामों को जन जन ने पहचाना, और इन रणबांकुरों की भारत की जनता से पहचान करवाई मीडिया ने। सन 1999 में मीडिया ने पूरे देश को सेना के साथ एक आत्मीय बंधन में बांध दिया। लोगों ने घर बैठे सैनिकों को मोर्चे पर लड़ते देखा।
8: साथियों, मैं हूं मेघना उपाध्याय और इस समय कारगिल की युद्ध भूमि से मैं आपसे मुखातिब हूं। जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं, चारों ओर हमारी सेना का भारी जमावड़ा है। तो आइए बात करते हैं हमारे एक सैनिक से। तो आपने बताया कि आप छुट्टी पर जा रहे थे।
9: जी, पर हमारे लिए देश और पलटन पहले हैं, घर बाद में।
8: आप तो काफी समय से घर से दूर हैं, क्या घर की याद नहीं आती?
9: हाँ, याद तो आती है, परंतु देश की रक्षा हमारे लिए सब कुछ है। समाचारों से पता चल रहा है कि पूरा देश हमारे साथ है। जिस माँ के हम बेटे हैं, उससे भी बड़ी माँ है हमारी भारत माँ। उसकी सुरक्षा को छोड़कर घर चले जाए हो नहीं सकता।
8: तो देखा साथियों, ऐसे हैं हमारे सैनिक, हमें इन पर नाज है।
10: वाह, अरे वाह, क्या बात कही है।
9: क्या बात है,
10: सुनकर ही जोश आ गया।
9: हाँ
10: भाई विक्रम, तुम तो अभी अभी छुट्टी पर आए हो, और अब ये लड़ाई, शायद तुम्हें भी युद्ध में जाना पड़े। संभल कर रहना भाई।
11: युद्ध में तो जाने ही है दोस्त, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा, या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
7: ये शब्द थे कैप्टन विक्रम बत्रा के, जो कारगिल युद्ध के दौरान शेरशाह के नाम से भी मशहूर हुए। युद्ध के समय उनकी बहादुरी के किस्से सुन सुनकर लोग दंग रह गए। वे एक के बाद एक खतरनाक मिशन पर जाते रहे, और देश एकजुट होकर उनकी सलामती की दुआ करता रहा। ऐसे थे 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा। विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के छोटे से नगर पालमपुर में हुआ। हिमाचल एक ऐसा राज्य जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, ये मनोरम राज्य जांबाजी के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां के रणबांकुरों ने संकट की घड़ी में कुर्बानियां देकर इतिहास रचा है, दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। कारगिल युद्ध में इस राज्य के लगभग 30 जांबाजों ने शहादत देकर कुर्बानियों की परंपरा को आगे बढ़ाया है, और इसी पावन भूमि पर जन्म लिया हमारे इस परम वीर विक्रम बत्रा ने। विक्रम बचपन से ही निडर और साहसी थे। सन 1994 में विक्रम ने एनसीसी के सदस्य के रूप में गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया और जब वहां से लौट कर आए तो वे अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुके थे और वो था भारतीय सेना में भर्ती। जुलाई 1996 में विक्रम ने भारतीय सेना अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया। आईएमए में ट्रेनिंग के दौरान बहुत सी चीजों ने उन्हें प्रभावित किया, जैसे वहां का अनुशासन, सैनिक प्रशिक्षण और उन पंक्तियों ने जो अकादमी की बरसों से चली आ रही परंपरा है। अपने देश की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण हमेशा और हर बार सर्वप्रथम है। फिर है आपके सैनिकों का सम्मान, कल्याण और सुविधा। आपकी अपनी सुविधा, आराम और सुरक्षा हमेशा और हर बार आखिर में आते हैं। ये पंक्तियां विक्रम की भावनाओं, विचारों और कार्यों में रच बस गई थीं। 6 दिसंबर 1997 को उन्हें 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स टुकड़ी में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया। युद्ध आरंभ हो गया था। एक जून 1999 को उनकी टुकड़ी कारगिल चली गई। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने कई सैनिक अभियानों में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया और हर मिशन में सफलता ने उनके कदम चूमे। कारगिल युद्ध के समय उन्होंने कई मिशन में भाग लिया। कई पर्वत चोटियों यानी पॉइंट्स पर अपूर्व शौर्य दिखाते हुए उन पर कब्जा किया। मिशन 1, दिन 12 जून 1999। कारगिल में तोलोलिंग नामक स्थान पर भीषण युद्ध चल रहा था। 25,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये चोटी सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण थी। इस चोटी से दुश्मन श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को लगातार निशाना बना रहा था। कैप्टन विक्रम बत्रा की यूनिट को वहां लड़ रहे सैन्य दल की सहायता के लिए भेजा गया। 2 रात भयानक युद्ध चला और हमारी सेना ने कैप्टन विक्रम बत्रा के नेतृत्व में हम्प पर कब्जा कर लिया। वहीं से विक्रम ने अपने भाई विशाल को, जिसे वे प्यार से कुशु कहते थे, एक पत्र लिखा।
12: प्यारे कुशु, तुम रोज सुन रहे होगे कि यहां घमासान युद्ध चल रहा है। मैं 15,500 फीट की ऊंचाई पर दुश्मनों से लड़ रहा हूं। जान को पूरा खतरा है, कुछ भी हो सकता है। आज हम जीत तो गए हैं, लेकिन आज का दिन हमारी बटालियन के लिए दुख से भरा है, क्योंकि आज हमने एक अफसर को लड़ाई में खो दिया है। प्यारे कुशु, मां पिताजी को संभालना, क्योंकि यहां कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा भाई विक्रम।
7: ऐसा था इस युवा सैनिक अधिकारी का हृदय विजय के उल्लास में भी अपने साथियों को खोने की कसक उनके मन में थी। मिशन टू, दिन 19 जून 1999, स्थान 0.5140। 15,000 फीट ऊंची ये वो चोटी थी जहां से दुश्मन हमारे दो हेलीकॉप्टर गिरा चुका था। इसे जीतना बेहद जरूरी था क्योंकि ऊंचाई पर होने के कारण इस पॉइंट से दुश्मन हमारी सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहा था। हमारी सेना के लिए केवल एक रात का समय था। विक्रम ने अपने सैनिकों को उस पर्वत की खड़ी ढलान पर चढ़ने का आदेश दिया। सैनिक चुपचाप पहाड़ी पर चढ़ते रहे। सुबह के 3:15 का समय था। हमारे सैनिक शत्रुओं के बंकरों के समीप थे। तभी दुश्मन की ओर से रेडियो सिग्नल आया।
13: शेरशाह तुम क्यों आ गए बीच में? अरे तुम में से एक भी जिंदा नहीं लौटेगा।
14: 1 घंटे में ही तुम्हें मालूम चल जाएगा कि ऊपर कौन रहेगा।
13: अरे देख लेंगे।
7: कैप्टन विक्रम बत्रा का दुश्मनों के बीच भी इतना नाम था कि वे इन्हें उनके कूट नाम से भी जानते थे। दुश्मन को ये तो खबर थी कि भारतीय सैनिक उनकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं, पर शायद इस बात से वो

0: बेखबर था कि हमारे सैनिक उनके इतने करीब हैं। विक्रम ने अपनी घड़ी की ओर देखा, 3:24 हो गए थे, 4:30 सूर्योदय हो जाएगा। उनके पास केवल 1 घंटे का समय था, बस फिर क्या था। उन्होंने दुश्मनों के बंकर पर धावा बोल दिया। और कुछ ही देर में विक्रम और उनके साथियों ने दुश्मन को वहां से खदेड़ दिया। 5140 पर अब हमारा कब्जा था। इस विजय के बाद एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा,
1: कैप्टन विक्रम, 5140 की विजय के बाद कैसा एहसास हो रहा है?
2: मैं और अधिक चोटियों पर कब्जा करना चाहता हूँ, ये दिल मांगे मोर।
3: क्या बात कही है?
1: ये दिल मांगे मोर। हाउ नाइस। विक्रम जी, आप पर सारे देश को नाज है और हमारी कामना है कि इसी तरह आपका विजय अभियान चलता रहे और चलता रहे।
2: धन्यवाद।
0: इस प्रसारण को पूरा देश देख रहा था, लाखों दर्शकों ने उनका उत्साह भरा उत्तर सुना। ऐसे समय में जब लोगों की आंखें आंसुओं से नम थी और दिल डर से सहमे हुए थे, विक्रम बत्रा के इस एक जवाब ने सबके चेहरों पर एक मुस्कान छोड़ दी। देश का बच्चा बच्चा अब उन्हें जानने लगा था।

0: अब आई बारी उस मिशन की जिसने विक्रम बत्रा को अमर बना दिया। मिशन 3 टाइगर हिल्स पिंपल पोस्ट 6 जुलाई 1999 की शाम। 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स की कमान एक बार फिर कैप्टन विक्रम बत्रा के हाथों में थी।
1: हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार एक बात पक्की है कि हमें दुश्मन पर पीछे से हमला करना होगा।
2: जी
3: चलो
1: अब मंजिल पर पहुंच गए हैं। इशारा मिलते ही टूट पड़ना।
2: जी सर।
1: देखो तुम यही पोजीशन संभालो।
2: जी सर।
1: और तुम दाहिनी तरफ जाओ।
2: जी सर।
4: हमला करो दुर्गा माता की। जय भारत माता की। जय
0: दुश्मन उनके खूंखार हमले से घबराकर पीछे हटने लगा था। तभी विक्रम ने देखा कि उनका एक सहयोगी अफसर दुश्मनों से घिरा हुआ है। जब वो उन्हें बचाने के लिए बंकर से बाहर दौड़े, उनके एक सूबेदार ने उन्हें रोकना चाहा।
5: साहब जी आप मत जाइए, मैं जाता हूं।
1: नारायण तू भी बचवा रहा है, पीछे हट।
5: नहीं लेकिन साहब जी,
1: मैंने कहा ना पीछे हट जा, मैं जा रहा हूं।
5: साहब जी
0: अभी विक्रम लेफ्टिनेंट नवीन को घसीटते हुए बंकर की ओर ले ही जा रहे थे कि दुश्मन की एक गोली उनकी छाती में आ लगी।
1: क्या हुआ तुम्हें? नहीं।
0: और तभी उन्होंने वीर गति पाई। उस दिन भारत ने पिंपल पोस्ट पर तो विजय पा ली, परंतु भारत मां का एक शेर सपूत शहीद हो गया। उनका पार्थिव शरीर पूरे सैनिक सम्मान के साथ जब उनके जन्म स्थान पालमपुर में लाया गया तो इस अमर शहीद के दर्शनों के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी।

0: आज उस शिखर का नाम कैप्टन विक्रम बत्रा शिखर है। उनके असाधारण शौर्य के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया। याद आती है एक बार फिर वही बात जो कैप्टन विक्रम बत्रा ने युद्ध में जाने से पहले अपने मित्र को कही थी।
1: मैं या तो विजयी तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने दोनों वचन निभाए। उन्होंने दुश्मन को पराजित कर भारत के झंडे को 0.5140 पर फहराया और 0.4875 नंबर शिखर पर युद्ध में प्राण देकर बड़ी शान से तिरंगे में लिपट कर घर आए।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैप्टन विक्रम बत्रा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार। उमंग, उमंग, उमंग,
2: उमंग। अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश, और अब आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। हेड स्टोरी 3 से ये गीत सुनिए। अरमान मलिक, नीति मोहन की आवाज़ है, रश्मि विराग ने लिखे हैं बोल, और संगीत भी है अमाल मलिक का।

और अब अगली आवाज़ सुनिए अलका याग्निक और अरिजीत सिंह की फिल्म तमाशा से। ये गीत लिखा है इरशाद कामल ने और संगीत है ए आर रहमान का।

और अब अगली आवाज सुनिए अरिजीत सिंह की खामोशियां फिल्म से सईद कादरी का लिखा हुआ गीत है और इसे संगीत से सजाया है जीत गांगुली ने।

और अब अगली आवाज़ सुनिए अरिजीत सिंह और पलक मुछाल की फिल्म गब्बर इज बैक से। मनोज यादव के लिखे हुए बोल हैं और संगीत में पिरोया है चिरंतन भट्ट ने।

और अब कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए कनिका कपूर की आवाज में। फिल्म का नाम है एक पहेली लीला। इसके बोल लिखे हैं कुमार ने और इसमें संगीत दिया है डॉक्टर ज्यूस ने।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में अब लेते हैं एक अंतराल।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

आकाशवाणी का साकार हुआ सपना। जन जन सब गाएं मिल मधुर

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे हिंदी में समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी

0: वैष्णव ने कहा कि ये योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों को मदद करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जिस सरकारों के एजेंसीज राज्य में FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक PDS योजना के दूसरे चरण की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अमित शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की खंडपीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया है। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upscionline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल हैं। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। श्री गोयल ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। कई प्रमुख मानवाधिकार संगठनों और छात्र संस्थाओं ने पाकिस्तान में बलूच नागरिकों के जबरन गायब किए जाने की बढ़ती घटनाओं की कड़ी निंदा की है। आरोप है कि इन घटनाओं को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। इन संगठनों ने कहा कि कई प्रभावित परिवारों के लिए ईद का त्यौहार शोक, अनिश्चितता और अपनों से बिछड़ने के दर्द में बदल गया है। जापानी संसद ने आज विदेशी संकट से निपटने के लिए सूचना जुटाने की प्रक्रिया को केंद्रीकृत करने हेतु राष्ट्रीय खुफिया परिषद की स्थापना के लिए कानून को मंजूरी दे दी। परिषद की स्थापना जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची के शासन के प्रमुख उद्देश्यों में एक है। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। मैच की विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन से मुकाबला खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन साथ ही DTH के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। और अब समय है कार्यक्रम विवरण का। अब से कुछ ही देर में शाम 7:21 पर आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा कार्यक्रम ग्राम सभा। शाम 8 बजे कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत होगा। शाम 8:15 पर फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा। रात 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली के अनुप्रसारण में सुन सकते हैं। कार्यक्रम चर्चा का विषय है। रात 10 बजे नाटक उपेक्षित प्रस्तुत होगा, जिसके प्रस्तुतकर्ता जितेंद्र स्वरूप राजन और लेखक घनश्याम सिंह तोमर हैं। रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी में आनंद लीजिएगा पंडित विश्व मोहन भट्ट के गिटार वादन का। राग होगा रागेश्री। अब कुछ मुख्य कार्यक्रम जो आप सुनेंगे कल यानी 28 मई दिन गुरुवार की सभा में। कल सुबह 6:05 पर वंदना और 6:30 पर श्री रामचरितमानस गान का आनंद लीजिएगा। सुबह 6:40 पर चिंतन और कल सुबह 6:45 पर कृषि चर्चा सुनिएगा। कल सुबह 7:20 पर नमस्कार भोपाल प्रस्तुत होगा। कल सुबह 9:02 पर फिल्म संगीत और 9:15 पर सुगम संगीत का आनंद लीजिएगा। कल सुबह 9:30 पर नाटक डाकू बनते बनते प्रस्तुत होगा, जिसकी लेखिका हैं आशा शुक्ला और प्रस्तुतकर्ता जगदीश अधिकारी हैं। कल सुबह 10 जिले की चिट्ठी और सुबह 10:05 पर गीत सागर कार्यक्रम प्रस्तुत होगा। ये थे कल सुबह 11 तक आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण में प्रस्तुत होने वाले कार्यक्रम। अब कुछ प्रमुख कार्यक्रम जो आप सुनेंगे कल सुबह 11 से आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में। कल सुबह 11 फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे प्रस्तुत होगा। कल दोपहर 12:00 2:30 और रात 10:00 आपकी फरमाइश कार्यक्रम प्रस्तुत होगा, जिसमें हम पूरी करेंगे आपके पत्रों द्वारा भेजी गई गीतों की फरमाइश। दोपहर 12:30 पर कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत सिसकियां की दूसरी कड़ी प्रस्तुत होगी। कल दोपहर 1:00 महिला सभा, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर कार्यक्रम युववाणी प्रस्तुत होगा। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर का योगदान रहेंगे। कल शाम 5:33, 6:30, 8:15 और रात 9:30 पर फिल्म संगीत प्रस्तुत होगा। शाम 6:00 NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा और कल रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी में आनंद लीजिएगा पंडित समरेश चौधरी के ख्याल गायन का। राग होगा गोरख कल्याण। इसी के साथ कल और आज की सभा के कार्यक्रमों का विवरण यहीं संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में संध्या के 7:10 हुए हैं और अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। देश भर में बढ़ती गर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से सावधानी बरतने और हाइड्रेटेड रहने की अपील की। केंद्र सरकार ने सार्थक पीडीएस योजना को जारी रखने की मंजूरी दी, जिसके लिए 25,530 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। खजुराहो में केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने योग दिवस काउंटडाउन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज एयर एम्बुलेंस एमपी पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। अब समाचार विस्तार से। देश भर में बढ़ती गर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद को हाइड्रेटेड रखने और दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचने और घर से निकलते वक्त पानी साथ रखने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जो प्यासा हो उसे पानी पिलाएं और जानवरों व पक्षियों के लिए भी बाहर पानी रखें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। समारोह में 33 विभागों के करीब 14,000 छात्रों को उपाधियां प्रदान की गईं। 285 मेधावी छात्रों को स्वर्ण और रजत पदक से नवाजा गया, जिसमें 199 छात्राएं शामिल रहीं। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में सार्थक पीडीएस योजना को अम्ब्रेला योजना के रूप में जारी रखने की मंजूरी दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस योजना के तहत एआई, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग कर पीडीएस संचालन को आधुनिक बनाया जाएगा। सार्थक पीडीएस योजना की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि
1: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन को बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय मौल्या बागची की पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत एसआईआर कराने की पूर्ण शक्ति रखता है। एक्ट्रेस तुषा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में भोपाल कोर्ट ने आरोपी पति समर्थ सिंह को 29 मई तक सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। सीबीआई की टीम उसे लेकर घटनास्थल का निरीक्षण भी करने गई। वहीं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में रिटायर्ड जज और सास गिरबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई की नई भाषा नीति पर रोक को लेकर कोई भी दिशा निर्देश देने से इनकार कर दिया है। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इस मामले में सीबीएसई को जवाब देने के लिए नोटिस दिया है। सीबीएसई की नई नीति के मुताबिक कक्षा 9-10 के लिए स्टूडेंट्स को 3 भाषाएं पढ़नी होंगी, जिसमें 2 भाषाओं का नेटिव इंडियन लैंग्वेज होना जरूरी है। इसी नीति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 15-16 जुलाई की तारीख दी है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। खजुराहो के पश्चिमी मंदिर परिसर में केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 100 दिवसीय काउंटडाउन सीरीज के 25वें कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में करीब 2,000 लोगों ने भाग लिया। श्री जाधव ने घोषणा की कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस बार की थीम स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग रखी गई है। इस मौके पर श्री जाधव ने कहा कि
3: आज खजुराहो और छतरपुर केवल अतीत के प्रतीक नहीं, बल्कि योग अध्यात्म और भारतीय परंपरा के और पुनर्जागरण के जीवित केंद्र के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित कर

0: कर रहे हैं।
1: आधुनिक युग में योग हमारे जीवन का एक अनिवार्य और अभिन्न अंग बनकर उभरा है। योग एक प्रगतिशील और स्वस्थ समाज की आधारशिला है।
2: उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज मंत्रालय में एयर एम्बुलेंस एमपी पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। इसमें एयर एम्बुलेंस सेवा के लिए अनुरोध की प्रक्रिया अब और सरल व तेज हो जाएगी। पोर्टल में रियल टाइम ट्रैकिंग, डिजिटल सेवा अनुरोध और समयबद्ध अनुमोदन अलर्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे के 2 कोचिंग संस्थानों के शिक्षक शामिल हैं। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर भोपाल में आज कांग्रेसजनों ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए। राज्यसभा सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने रोशनपुरा चौराहे पर स्थापित पंडित नेहरू की प्रतिमा पर पुष्पार्चन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी उनके चित्र पर माल्यार्पण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम का 134वां एपिसोड होगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कॉल करके नरेंद्र मोदी एप्लीकेशन या MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। आगामी एपिसोड के लिए सुझाव 29 मई तक स्वीकार किए जाएंगे। प्रदेश ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 13,36,000 किसानों से 103,48,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन कर देश में पहला स्थान हासिल किया है। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि कोविड काल को छोड़कर विगत 10 वर्षों में यह सर्वाधिक गेहूं उपार्जन है। वहीं मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 16 जिलों में पीएम सूर्य घर योजना के तहत अब तक 39,975 उपभोक्ता पंजीकृत हो चुके हैं और उनके खातों में 311,64,00,000 रुपये से अधिक की सब्सिडी जमा कराई जा चुकी है। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में नौतपा के दौरान भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और रीवा जिलों में तीव्र लू का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कल प्रदेश के 16 शहरों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री या उससे अधिक दर्ज किया गया। इसमें खजुराहो सबसे गर्म रहा, जहां तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार 28 मई तक गर्मी अपने चरम पर बनी रहेगी, लेकिन 29 मई से मौसम बदलना शुरू होगा और कई जिलों में आंधी व बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। विभाग का कहना है कि 10 से 16 जून के बीच मानसून प्रदेश में दस्तक दे सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं भोपाल स्थित अनुसंधान संस्थान 3 से 5 जून तक भारतीय ज्ञान परंपरा विषय पर 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसमें विभिन्न शासकीय महाविद्यालयों के 60 प्राध्यापक भाग लेंगे। खरगोन जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की ठिपगांव शाखा में 41,00,000 रुपये के गबन का मामला सामने आने पर बैंक प्रबंधन ने 3 कर्मचारियों को निलंबित कर विभागीय जाँच शुरू कर दी है। शिवपुरी जिले में बाल श्रम रोकथाम को लेकर कलेक्टर ने दुकानों, ढाबों, कारखानों में बाल श्रमिक न होने की जांच करने और होने पर कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। पेयजल समस्याओं की सतत निगरानी और हैंडपंप संधारण संबंधी शिकायतों के निराकरण के लिए आगरमालवा में जिला स्तरीय नियंत्रण कंट्रोल रूम बनाया गया है। कटनी में IHSDP योजना के तहत प्रेमनगर बस्ती में बने आवासों पर 8 अनाधिकृत कब्जों को जिला प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त कराया। राजगढ़ में आज जिला पंचायत सभाकक्ष में जल संचयन जन भागीदारी अभियान के तहत तकनीकी मार्गदर्शन कार्यशाला का आयोजन किया गया। शहडोल जिले में खरीफ फसल की बोनी का लक्ष्य 3,000 हेक्टेयर बढ़ाकर धान की बोली का लक्ष्य 1,50,000 हेक्टेयर किया गया है। खंडवा जिला चिकित्सालय सह चिकित्सा महाविद्यालय में विश्व तम्बाकू निषेध सप्ताह के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नर्मदापुरम कलेक्टर ने आज CM हेल्पलाइन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलाधिकारियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। और IPL में अब से कुछ देर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। जो टीम जीतेगी वह शुक्रवार को गुजरात टाइटन से भिड़ेगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

जय जवान जय किसान। चौपाल कार्यक्रम सुनने वाली सभी भैया बहनों को वर्षा बहन की राम राम। भाइयों बहनों कैसे हैं आप? हम उम्मीद कर रहे थे कि आप सभी अच्छे होंगे। देखो भैया बहनों, अपन तो देख ही रहे कि धूप कैसी तेज पड़ रही है और साथ ही साथ गर्म हवा लू भी चल रही है। और भैया काहे ना हो नौतपा चल रहे हैं। तो भैया जब ऐसी भीषण गर्मी पड़ रही है तो अपन को चाहिए कि अपन अपो गर्मी से बचाव रखें। सुबह 11 से 3 बजे तक अगर बहुत ही आवश्यक है तो घर से निकलें, नहीं तो कोशिश करें कि घर के अंदर ही रहें। और बच्चों को और बड़ों को विशेष ही ध्यान रखें। छोटे छोटे बच्चा हैं, उनको बार बार पानी की पूछना चाहिए और उन्हें ठंडक में रखवो चाहिए। और अगर जैसे अपन घर से बाहर निकलते हैं तो अपन को चाहिए कि अपन हल्की रंग की और सूती कपड़ा ही पहने। और अपन जब भी घर से बाहर निकले तो अपने संगे मुंह पे सूती कपड़ा बांधें और साथ ही साथ एक पानी की बोतल हमेशा पे संग रखें। कैसे भी ये गर्मी को मौसम है, प्यास लगात है। और जब भी बाहर से घर आएँ तो एकदम से ठंडा पानी ना पिए और फ्रिज का पानी तो बिल्कुल ही नहीं पीवो चाहिए। अपन को चाहिए कि अपन मटके को ठंडो पानी पिएँ और तरल पेय पदार्थ को सेवन भी करत रहें। जैसे कि कैरी को बनाएँ, अमरस है और गन्ने को रस है, बेल शरबत है, इन सब को सेवन करवे से का होता है कि एक तो अपन को पानी की कमी पूर्ति हो जाती है और गर्मी भी कम लगाते है। और जाके संगे संगे जावात को भी ध्यान रखो चाहिए कि तलो भुनो बासी खावे से अपन बचें। और जब भी प्यास लगे तो खूब पानी पिएँ। और विशेषकर छोटे छोटे बच्चन को तो बार बार पूछना चाहिए, काहे से बच्चा खेल में लग जाते हैं पानी नहीं पी, तो पानी की कमी हो जाती है और जैसे कई तरह की बीमारियां भी उभर के आ जाते हैं। तो भैया पानी को विशेष ही ध्यान रखने हैं, यही वजह से सलाह दी जाती है कि बेर बेर की पेय पदार्थ को सेवन करें, जूस पिएं, फ्रूट फल खाएं, ताकि पानी की पूर्ति हो सके। और हमारे किसान भैया को तो पशुओं को भी ध्यान रखना होता है। तो भैया जैसे आप ध्यान रखते हैं वैसे पशुओं को भी रखें, उन्हें भी छायादार स्थान पर बांधें और ऐसे उनको भी लू से गर्म हवा से बचाव रखें और समय समय पर उन्हें भी साफ स्वच्छ पानी पीवे को देते रहें। तो भाइयों बहनों चर्चा तो आपसे आगे भी जारी रहेगी, लेकिन अब हम आपको सुनवाते हैं ये संदेश।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: भाइयों बहनों, अब हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के बारे में। भैया बहनों, यूँ तो हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको तरह तरह की योजनाओं की जानकारी देते रहते हैं, और आज भी हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं ऐसी योजना के बारे में जो कि भारत सरकार द्वारा COVID-19 महामारी के दौरान, अपन ने तो सुना ही हुई है, सब जी भी महामारी के दौरान हम सब ने फेस करी है। तो भाइयों बहनों, COVID-19 महामारी के दौरान जो भी औपचारिक क्षेत्र में नए रोजगार सृजित करवे में और नौकरी गवावे वाले जो श्रमिक हैं उनको राहत देवे के लिए ये योजना बहुत ही अच्छी पहल है, एक कल्याणकारी योजना है। कैसे भैया, जो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है वो शुरू करी गई, और इसके लिए सरकार पंजीकृत संस्थानों में नए कर्मचारियों के भविष्य निधि को अंशदान भी करत है। जी योजना के अंतर्गत जो भी लोग महामारी के समय प्रभावित हुए, उन्होंने अपने व्यवसाय खो दिए, बहुत परेशान रहे, तो ऐसे समय में व्यवसायों को प्रोत्साहन देवो और नए रोजगार के अवसर पैदा करवो, ये सब जी योजना को मुख्य उद्देश्य है। और ऐसे कर्मचारी जिनके मासिक वेतन 15,000 से कम हैं, और वो लोग भी शामिल हैं इसमें जो कि जिनकी नौकरी 1 मार्च 2020 से 30 सितंबर 2000 के बीच छूट गई, और उन्होंने 1 अक्टूबर 2020 के बाद दोबारा नौकरी ज्वाइन की हो, वो सब जी योजना को लाभ उठा सकते हैं। भैया बहनों, हम आपको बता दें कि जी योजना की शुरुआत 1 अक्टूबर 2020 में भई थी, जो कि COVID-19 महामारी के दौरान ये योजना शुरू करी गई थी ताकि अर्थव्यवस्था को और बढ़ावा मिल सके, मजबूत हो सके और रोज़गार के नए अवसर पैदा हो सकें, ताकि सभी लोग आत्मनिर्भर बन सकें। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो भी औपचारिक क्षेत्र में नई नियुक्तियां हैं उनको बढ़ावा मिल सके, और जो भी महामारी के दौरान जिन भी भैया बहनों ने अपनी नौकरी गंवाई, ऐसे लोगों की मदद हो सके। और यही वजह है कि ये योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा नए नए कर्मचारियों की EPF अंशदान को भी वित्तीय बोझ उठाओ जाते है। तो भाइयों बहनों, ये बात तो भाई ये योजना के बारे में, और अब हम आपको सुनवाते हैं जे लोकगीत आभा खरे की आवाज़ में।

0: भाई बहनों, कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। हमारे किसान भाई खेती करते हैं, तो खेती में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं बीज। तो बीज कैसे बोएं, कौन सा बीज इस्तेमाल करें, कैसे बुवाई करें, यही से संबंधित भेंट वार्ता आज हम आपको सुनवावे जा रहे हैं। जाको विषय है खेती का सशक्त आधार बीज। जा विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर रिया मिश्रा और इनसे बातचीत कर रहे हैं अपने भैया सोहन सिंह। तो सुनत हैं जी भेंट वार्ता।
1: किसान भाइयों, समय समय पर हम फसलों की बुवाई करते हैं। फसल उत्पादन का मुख्य आधार होता है बीज। बीज के बारे में कहा भी गया है कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे। हमारे किसान भाइयों को बीज कैसा प्रयोग करना चाहिए, बीज में कौन कौन सी गुणवत्ता होनी चाहिए जिससे हमारे किसान भाइयों का फसल उत्पादन अधिक मिले, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे कार्यक्रम में आमंत्रित हैं डॉक्टर रिया मिश्रा। डॉक्टर साहबा, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर साहबा, हमारे किसान भाई कोई भी फसल लेते हैं तो बीज का उपयोग तो करते ही हैं। हमारे किसान भाइयों को सबसे पहले बीज उपयोग करते समय कौन कौन से ऐसी मूलभूत बातें हैं, इनका ध्यान रखकर अगर हमारे किसान भाई फसल की बुवाई करें तो उन्हें अच्छा उत्पादन मिल सकता है।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहली चीज़ यह है कि बीज हमारी खेती की नींव होती है। यदि हमारी शुरुआत अच्छी होती है तो हमारा फसल भी बहुत अच्छा होता है। कि गुणवत्ता युक्त बीज का ही प्रयोग, इसमें कि गुणवत्ता युक्त बीज का इस्तेमाल करने से अंकुरण अच्छा होगा, पौधे स्वस्थ रहते हैं, रोग और कीट कम लगते हैं और उत्पादन भी अधिक मिलता है। ऐसा देखा गया है कि कई बार किसान भाई पूरी मेहनत करते हैं लेकिन यदि बीज अच्छा ना हो तो उत्पादन कम हो जाता है। इसलिए सही बीज का चयन ही खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है।
1: अगर हमारे किसान भाई बीज खरीद रहे हैं तो वो किस तरह उसकी परख करें कि हम जो बीज ले रहे हैं वो गुणवत्तापूर्ण है और बीज अच्छा है, स्वस्थ है?
2: जब भी वे बीज खरीदें तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें, जैसे बीज साफ और चमकदार होना चाहिए। इसके अलावा वह समान आकार का होना चाहिए, उसमें रोग और कीट का प्रकोप नहीं होना चाहिए। एक और बात कि बीज के पैकेट को जब भी खरीदें तो उसमें अवश्य ध्यान दें कि उसमें टैग लगा है या नहीं लगा। जिस तरीके से हमारा आधार कार्ड हमारा पहचान पत्र होता है, उसी तरीके से यह टैग बीज का प्रमाण पत्र होता है। इससे किसान भाई यह जान सकते हैं कि यह कौन सी किस्म है, इसका अंकुरण प्रतिशत कितना है, बीज कब तैयार हुआ है और यह प्रमाणित बीज है या नहीं।
1: डॉक्टर साहब, ये टैग लगे रहते हैं तो इनसे कौन कौन से बीज हैं, उनकी क्या क्या पहचान होती है?
2: मुख्यतः बीज जो होते हैं ये चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है नाभिकीय बीज यानी न्यूक्लियस सीड। यह बीज वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया जाता है। इसके बाद आता है प्रजनक बीज यानी ब्रीडर सीड। यह वैज्ञानिकों की देखरेख में तैयार किया जाता है। इसमें ज़्यादातर सुनहरा पीला रंग का टैग लगा हुआ होता है। फिर आता है आधार बीज यानी फाउंडेशन सीड। इससे मुख्यतः प्रमाणित बीज तैयार किया जाता है और आधार बीज में ज़्यादातर सफ़ेद रंग का टैग लगा हुआ होता है। और अंत में आता है प्रमाणित बीज यानी सर्टिफाइड सीड। यह मुख्यतः किसानों तक पहुँचता है और इसमें नीले रंग का टैग मुख्यतः देखा जाता है।
1: अगर किसी बैग में टैग नहीं लगा है तो हमारे किसान भाइयों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
2: अगर किसी बीज के पैकेट में टैग नहीं है तो उनको ये देखना चाहिए कि हम ये इस बीज को ले या नहीं ले, उसमें प्रॉपर तरीके से चेक कर ले कि क्या उसकी तैयार की डेट है, प्रॉपर तरीके से उसका सोर्स ऑफ ओरिजिनेशन लिखा हुआ है वहाँ कि नहीं लिखा हुआ है। इसके अलावा दुकानदार से सुनिश्चित कर ले कि ये सही बीज है या नहीं है। अगर इसमें प्रॉपर तरीके से उत्पादन नहीं आता है इसको लौटा देंगे। इस तरीके से भी उनसे प्रॉपर बात करके आए जिससे कि आगे उनको अगर

0: उत्पादन सही नहीं मिलता है तो उनका नुकसान ना हो।
1: डॉक्टर साहिबा, अगर हमारे किसान भाई बीज उत्पादन करना चाहते हैं तो उन्हें इससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं?
0: अगर हमारे किसान भाई बीज उत्पादन करना चाहते हैं तो उसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि उनको एक अतिरिक्त आय का माध्यम मिल जाता है। इसके अलावा देखा जाए तो किसान भाइयों को अतिरिक्त आय की वृद्धि होती है, गुणवत्ता युक्त बीज उत्पन्न होता है, वे आपस में इस गुणवत्ता युक्त बीज का आदान प्रदान भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इस प्रमाणित बीज उत्पादन से किसान भाइयों के बीच में वैज्ञानिक तकनीकी खेती करने का प्रचलन भी बढ़ता है।
1: अगर हमारे किसान भाई बीज उत्पादन करना चाहते हैं तो डॉक्टर साहिबा, उन्हें कौन कौन सी एजेंसी हैं जिनसे उन्हें संपर्क करना चाहिए?
0: जब भी किसान भाई हमारे प्रमाणित बीज उत्पादन करना चाहते हैं तो या तो वो कृषि विभाग या बीज निगम या किसी अधिकृत संस्था के पास जाके सबसे पहले पंजीकरण करवाएं। पंजीकरण करवाने के बाद ही उन्हें आधार बीज जो होता है वह स्वीकृत किस्म का प्रदान किया जाता है। और एक चीज़ और होती है कि प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए हमेशा किसान भाइयों को वैज्ञानिक तकनीकों का ही पालन करना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे खेत का सही चयन, इसमें उचित अलगाव दूरी यानी आइसोलेशन डिस्टेंस बनाए रखना, समय पर बुवाई करना, संतुलित उर्वरक बनाए रखना, इसके अलावा रोगिंग जैसी प्रक्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण होती है।
1: सिंचाई प्रबंधन की भी सुविधा होनी चाहिए?
0: सिंचाई प्रबंधन की भी प्रक्रिया होनी चाहिए, क्योंकि देख समय समय पर जो उसका मानक रूप होता है उसी समय पर उनको सिंचाई प्रदान की जाती है। अगर उस समय पर हम बारिश के भरोसे बैठेंगे तो हम उसको सिंचाई नहीं दे पाएंगे, जिससे कि उसका जो मापदंड है वो खरा नहीं उतरेगा और हम बाद में उसको प्रमाणित बीज की तरह इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।
1: ये रोगिंग प्रक्रिया क्या होती है?
0: ये जो रोगिंग प्रक्रिया होती है ये प्रमाणित बीज उत्पादन की एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। इसमें जो रोगग्रस्त, कमजोर और अलग प्रकार के बीज होते हैं इनको निकाल दिया जाता है। इससे क्या होता है कि हमारे बीज की शुद्धता बनी रहती है और गुणवत्ता युक्त बीज अगली जनरेशन में प्रोड्यूस होता है। बिना इस प्रक्रिया के हम आगे जाके प्रमाणित बीज उत्पादन नहीं कर सकते।
1: आजकल जो देसी बीज हैं इनकी भी काफी चर्चा हो रही है, इनको हमारे किसान भाई किस तरह उपयोग कर सकते हैं?
0: लैंड रेसेस या देसी बीजेस जिनके आप बात कर रहे हैं, ये वे बीज होते हैं जिनको किसान अपने क्षेत्र में बहुत वर्षों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आज जो हमारी नई आने वाली प्रजातियां हैं अलग अलग प्रकार की, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। इसमें जो हम वर्षों से पुरानी प्रजातियां हैं उनकी बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, कई प्रकार के विशेष गुण पाए जाते हैं, जैसे इनका सूखा सहनशीलता बहुत अच्छा होता है, इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है, कई बार इनमें विशेष स्वाद और बेहतर पोषण गुणवत्ता भी इनमें देखी जाती है। और एक चीज़ देखी गई है कि आज जो वैज्ञानिक है हमारे, वो नई किस्मों को उत्पन्न करने के लिए इन देसी किस्मों का ही उपयोग कर रहे हैं।
1: जो देसी प्रजातियों के जो कुछ गुण हैं वो नई जो उन्नतशील प्रजातियां डेवलप कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं, उनमें इनका उपयोग करते हैं।
0: जी,
1: बीज उत्पादन में विशेषकर महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है।
0: ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं वो बीज संरक्षण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे देखा जाए तो महिलाएं अच्छे बीज चुनती है, उन्हें सुरक्षित रखती है, अगली फसल के लिए संरक्षित करती है और पारंपरिक किस्मों का भी बचाने का कार्य करती है। महिलाएं प्रकृति और जैव विविधता से गहराई से जुड़ी होती है, इसलिए जर्म प्लांट संरक्षण में भी उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आप भली भांति आप सभी जानते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध महिला किसान लहरी बाई जैसे कई किसानों ने सैकड़ों देसी बीजों का संरक्षण किया है। ऐसे किसानों की वजह से ही आज हमारी कृषि जैव विविधता सुरक्षित है।
1: आजकल ये PPB एंड FR एक्ट है, ये काफी चर्चा में है, इसका क्या उद्देश्य है?
0: सबसे पहले मैं PPV एंड FR का पूरा नाम बताना चाहूंगी। इसका नाम होता है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट। ये केवल एक कानून नहीं होता बल्कि किसानों के अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ देसी किस्मों और लैंड रेसेस के संरक्षण को भी ये बढ़ावा देता है। इसके अंतर्गत किसान जो होते हैं ये अपना बीज बचा सकते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं, उनका आदान प्रदान कर सकते हैं और अपनी पारंपरिक किस्मों का पंजीकरण भी करवा सकते हैं। यदि किसी किसान या समुदाय ने किसी विशेष देसी किस्म का संरक्षण किया है तो उन्हें पहचान और सम्मान और कई बार पुरस्कार एवं लाभ भी प्रदान किए जाते हैं। यह कानून किसानों को केवल उपभोक्ता ही नहीं बल्कि संरक्षक और नवाचारकर्ता के रूप में सम्मान भी देता है।
1: आज के बदलते परिवेश में जो नई प्रजातियां विकसित हो रही हैं इनका उपयोग करना कितना जरूरी हो गया है हमारे किसान भाइयों को?
0: आज हम सभी भली भांति अवगत है कि मौसम कितनी तेजी से बदल रहा है, कहीं सूखा पड़ रहा है तो कहीं अत्यधिक वर्षा हो रही है और इसकी वजह से नई बीमारियां भी बढ़ रही है। ऐसे समय में नई उन्नत और सहनशील किस्मों का उपयोग करना बहुत ही जरूरी हो गया है। वैज्ञानिक लगातार ऐसी किस्में विकसित कर रहे हैं जो अत्यधिक उत्पादन देती है, रोगों के प्रति सहनशील होती है और कम पानी में भी अच्छा प्रदर्शन देती है। एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं किसान भाइयों के साथ साझा करना

0: चाहती हूँ वो ये है कि किसान भाई कई वर्षों तक केवल एक ही किस्म का लगातार इस्तेमाल करते हैं। इसको मोनोक्रॉपिंग ऑफ वैरायटी कहा जाता है। इसकी वजह से कई बार ऐसा देखा गया है कि रोग और कीट तेजी से बढ़ते हैं और उत्पादन धीरे धीरे कम होने लगता है। इसलिए मैं किसान भाइयों को यह सलाह देना चाहूंगी कि सामान्यतः 3 से 4 वर्षों के अंतर्गत अपनी फसल की किस्मों में परिवर्तन लाना चाहिए और नई और विविध किस्मों का इस्तेमाल स्टार्ट कर देना चाहिए।
1: जो कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है या प्रजाति आती है उनमें एक भय का वातावरण बना रहता है कि ये प्रजाति हमारे यहाँ सफल होगी कि नहीं होगी। बहुत कम परसेंटेज किसानों की रहती है जो एक रिस्क होती है उसे उठा सकते हैं। अगर हमारे किसान भाइयों में ये भय न हो, इसके लिए हमारे किसान भाइयों को कहाँ पर संपर्क करना चाहिए?
0: जो भी किसान भाई नई तकनीकों को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं वे बहुत ही अच्छी सोच है। नई किस्मों को अपनाने में देखो और सीखो यानी सीइंग इज बिलीविंग जो है ये हमारे एग्रीकल्चर में बहुत ही उपयोगी माना जाता है। इसके लिए कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विभाग समय समय पर प्रगतिशील किसानों के खेतों पर फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन यानी FLD लगाते हैं। इसके माध्यम से किसान भाई बहुत ही आसानी से नई किस्मों का प्रदर्शन देख सकते हैं कि किसी भी किस्म का उत्पादन कितना है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी है, उसमें कितने पौधों में वृद्धि आ रही है और सबसे महत्वपूर्ण बात कि वे अन्य किसानों का अनुभव भी देख सकते हैं। जब किसान स्वयं अपनी आंखों से वो परिणाम देखते हैं तो उनके अंदर विश्वास बढ़ता है। इसलिए मेरे किसान भाइयों को यह सलाह है कि जब भी उनके आसपास फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन आयोजित किए जाएं या कृषि मेले आयोजित किए जाएं तो वे उसमें अवश्य जाएं।
1: डॉक्टर साहब, अंत में चलते चलते हमारे किसान भाइयों को और क्या सलाह देना चाहेंगी जिन्हें हमारे किसान भाई अपनी कृषि क्रियाओं में अपना कर फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं?
0: आज यदि हमारे देश में इतनी विविध फसलें, देसी किस्में और जर्म प्लाज्म उपलब्ध है तो उसका सबसे बड़ा श्रेय किसान भाइयों को ही जाता है। किसानों का पारंपरिक ज्ञान हमारी कृषि की सबसे बड़ी शक्ति है। हम सभी की यह जिम्मेदारी है कि हम इस अमूल्य धरोहर को अपने आगे आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुँचाए कि उत्तम बीज ही समृद्ध खेती की सबसे पहली सीढ़ी है।
1: डॉक्टर साहब, आज आप हमारे कार्यक्रम में आई और आपने हमारे किसान भाइयों को बीज फसल का मुख्य आधार होता है और अच्छे बीज उपयोग करके ही हमारे किसान भाई अपनी फसलों का उत्पादन बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दी और इस जानकारी से हमारे किसान भाई निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: भाइयों बहनों, अभी अपन सुन रहे थे जी भेंट वार्ता, एक विषय हो खेती का सशक्त आधार बीज, जब विषय पर जानकारी दे रही थी डॉक्टर रिया मिश्रा और इनसे बातचीत कर रहे थे अपय भैया सोहन सिंह। और भाइयों बहनों, अब हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं लू से कैसे बचाव करें पशुओं का, जब विषय पर। देखो भाइयों बहनों, जैसे कि अपन को गर्मी लगत है, लू लगत है, वैसे ही पशुओं को भी लगत है। जैसे हम अपना ध्यान रखते हैं वैसे ही हमें चाहिए कि हम पशुओं को भी ध्यान रखें। कैसे भैया, हमें जब भी कोई भी तकलीफ होता है तो हम तो तुरंत कह देते हैं लेकिन पशु तो कह भी नहीं सकत, तो पशुओं को ध्यान रखो बहुत ही ज़रूरी है। अपन देख ही रहे हैं कि कैसी गर्मी हो रही है, लू चल रही है, गर्म हवाएं चल रही हैं, तो इन सब से पशुओं को बचाव करने के लिए, पशुओं को लू से बचाने के लिए हमें चाहिए कि हम उन्हें सीधी धूप से बचाएँ, उन्हें सीधी धूप में ना रखें, छायादार हवादार जगह पर उन्हें बांधें, उन्हें रखें, दिन में 3 से 4 बार ठंडा पानी पीने को दें उनको और दिन में 2-3 बार उनको नहलाएं। और उनके आहार में जैसे कि हरा चारा और नमक भी शामिल करें, उनके पानी में जैसे नमक डाल दें, इससे क्या होता है कि जैसे ORS भी डाल सकते हैं, जो इससे क्या होता है कि वो हाइड्रेट रहते हैं, उनमें पानी की कमी नहीं होती। और अगर भैया आपको ऐसा लगे कि जैसे लू लग गई है तो लू के लक्षण दिखने पे तुरंत ही पशु चिकित्सक से संपर्क करवो चाहिए। और जी बात को भी ध्यान रखो चाहिए कि जैसे पशु हैं उनको 12 से 4 बजे तक खुले में बिल्कुल ना बांधें और उन्हें हमेशा पक्के छप्पर या पेड़ों की छाया में ही रखें। और जो जैसे पशुशाला है तो पशुशाला ऐसी हो जो हवादार हो, और यदि पशुशाला में ऐसे टीन की छत है तो अपन क्या कर सकते हैं, उस पर बोरे डाल दें, बोरे डालकर पानी को छिड़काव करते रहें ताकि कमरा उनका जो है वो ठंडा बना रहे।

उनको ठंडक मिलत रहे। और भैया जैसे जो अपन देख रहे हैं कि गर्मी है, तो पशुओं को गर्मी को जो तनाव है उससे बचावे के लिए, जैसे जो पशु है शाला है, जैसे जो बाड़ा है उसमें आप का कर सकते हैं कि जैसे पंखा या कूलर की व्यवस्था भी कर सकते हैं। और पशुओं के सामने 24 घंटे, अपन देख रहे हैं कितनी गर्मी हो रही है, अपन को भी बार बार प्यास लगाते हैं, तो भैया पशु उनके सामने भी 24 घंटे स्वच्छ साफ ताज़ा पानी पीवे को रखवो चाहिए। और जब बात को भी ध्यान रखवो चाहिए कि जैसे भारी और अधिक रेशेदार चारे की बजाय आसानी से पचवे वालों संतुलित आहार ही पशुओं को दव जाए। और पशुओं की साफ सफाई को भी पूरा ध्यान रखो जाए, उन्हें 2-3 दिन में 2-3 बार नहलाएं। और जैसे सामान्य ताप वाला, और जैसे एकदम से धूप में तेज तेज धूप है तो ठंडा पानी ना डालें एकदम से, जो सामान्य ताप वाला पानी है वो उसी से चाहिए कि अपन पशुओं को नहलाएं, उन्हें उनकी साफ सफाई करें। और जहाँ पशुशाला हो, पशु बंधे हो, वहाँ फिनाइल डालकर या नीम के पत्ते की धुनी करके आप उस जगह को जैसे कीड़े मकोड़े मच्छरों से आप उनका बचाव कर सकते हैं, ताकि बीमारी से भी बचाव होता है और स्वच्छता भी बनी रहते है। और भैया अपन अगर देखें ऐसा कि कोई पशु है, अगर वो पशु हाँफ रहा है, अत्यधिक लार टपका रहा है, या उसका शरीर का तापमान बहुत अगर बढ़ गया हुआ है, तो भैया, और या वो सुस्त होकर बैठ गया हुआ है, तो ऐसे समय में हो सकता है उसको हीट स्ट्रोक हो सकता है। तो ऐसे समय में पशु को किसी भी ठंडी या हवादार जगह पर ले जाएं, गीले तौलिए से उसका शरीर पोंछें, और जो भी स्थानीय पशु चिकित्सा केंद्र है उससे तुरंत ही संपर्क करवो चाहिए, ताकि पशु को तुरंत ही उपचार मिल सके और वो स्वस्थ हो सके। तो भैया अगर अपन इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें तो अपन पशुओं को उल्लू लगवे से बचा सकते हैं और वो स्वच्छ स्वस्थ रह सकते हैं। तो भैया जी बात तो भाई पशुओं को हीट वेव से बचाव के बारे में, और भैया हमें तो आपके मनोरंजन को सुई ख्याल है, तो अब हम आपको सुनवावे जा रहे हैं जी लोकगीत अंशु मिश्रा की आवाज़ में। तो भैया सुनते हैं जी लोकगीत।

भाइयों बहनों, कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। भैया बहनों, अपन तो देख ही रहे हैं कि गर्मी को मौसम चल रहा है और अपन देखते हैं कि चारों तरफ जी गर्मी के मौसम में बिजली की कितनी खपत होती है। सब जगह एसी, कूलर, पंखा, टीवी सब दिन चलत हैं। उसके अलावा मोटर भी है, चक्की है, घर में फ्रिज है, कूलर, टीवी, बहुत सी चीज़ें हैं, मिक्सी है, हर चीज़ में हमको जैसे पानी, आप दैनिक जीवन में पानी की आवश्यकता पड़त है, ऐसे ही बिजली की आवश्यकता पड़त है। लेकिन भाइयों बहनों, आवश्यकता जी बात की है कि हम बिजली की बचत करवो सीखें। जाके लिए हम का कर सकते हैं कि जब भी अगर हम बैठे जो उस कमरे में, तो उस कमरे का हम कूलर, पंखा, जो भी हमें चलाना है हम चला सकते हैं। लेकिन जब भी अगर हम उठकर दूसरे कमरे में जाएं, तो अगर हम जा रहे हैं तो हमें निश्चित रूप से कूलर, पंखा या लाइट जल रही है अनावश्यक रूप से, तो हमको उसको तुरंत ही बंद कर देना चाहिए। अगर फालतू टीवी चल रही है, मोटर चल रही है, तो हमको तुरंत बंद करवा चाहिए ताकि हम बिजली की बचत कर सकें। इसके अलावा हम देखते हैं कि कई बार पंखा चलत रहे थे, हम कई कहीं सार्वजनिक स्थान पर भी जाते हैं, हम काम करते हैं, उस जगह पर भी हमारा जो कर्तव्य है कि अगर हम देखें कि पंखा, बिजली, लाइट या मोटर चल रही हो, फालतू अगर पानी फैल रहा है, फालतू में बिजली पंखा चल रहा है, तो हम उसको तुरंत ही बंद कर दें। जैसे कहा होते हैं भैया, ऊर्जा की बिजली की बचत होत है और भविष्य में वो भैया कौन के काम आएगी, हम औरन के ही काम आने हैं। तो भैया, अनावश्यक हमें बिजली की बर्बादी को रोकना चाहिए। और ऐसे ही भैया, जैसे हम देख रहे हैं कि गर्मी के दिनों में चारों तरफ त्राही त्राही हो जाता है पानी की, बहुत से लोग बहुत दूर तक उन्हें जाना पड़ता है पानी भरवे के लाने, तो हमें चाहिए कि हम पानी को सदुपयोग करें। जितने पानी की हमें ज़रूरत है उतने पानी हम भर लें, चाहे बाल्टी में साफ़

फेंकें ताकि हमें पानी की बर्बादी कम हो सके। जी नहीं कि लीजम खुली छोड़ दी, नल खुला छोड़ दिया और पानी बह रहा है और हमें कोई फिक्र ही नहीं है। तो भैया ऐसा नहीं करने हैं, हमें बच्चों को भी सिखाने हैं कि जितनी आवश्यकता हो, अगर पानी पीना भी है जितनी आवश्यकता हो उतना ग्लास में लें, पानी पिएं, अनावश्यक पानी की बर्बादी ना करें। नल जब भी खुला देखें, अगर हमारे घर में कोई लीकेज भी है तो भी अगर हम खुला देखते हैं तो हमको चाहिए कि हम उसको तुरंत ही बंद कर दें, जिससे कि पानी की बर्बादी को हम रोक सकें। और भैया आप सब तो जानते ही होगी कि जो ऐसे नल टपकत है तो वो भी वास्तु के हिसाब से भी वो अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए जब भी हम कोई अगर देखते हैं ऐसी कमी तो हमको चाहिए कि हम उसको तुरंत ठीक करवाएं। और भैया जाके संगे संगे जैसे अगर हमारा जो भी हम रसोई घर में काम करते हैं उसका जो भी अगर वेस्टेज पानी निकलत है, हम उसकी ऐसी व्यवस्था करें कि जो हमारे घर में आजकल सब अपन घर में लगाते हैं, गार्डन बनाते हैं, बाग बगीचे लगाते हैं, फल फूल पौधा लगाते हैं, तो भैया हमें चाहिए कि हम ऐसी व्यवस्था करें कि उसका पानी रसोई घर से सीधा होता हुआ हमारे बगीचे में जाए, ताकि पानी की बर्बादी ना हो और पानी का सदुपयोग हो सके। अगर भैया हम ऐसा सोचेंगे, ऐसी सोच रखेंगे, हम कोशिश करेंगे और अपने बच्चों को भी सिखाएं, अगर हम बच्चों से भी कहेंगे तो आप देखें, अगर आप अभी से अगर बच्चों को सिखाएं तो बच्चे बहुत ही जल्दी सीखते हैं और वो अभी से पानी का सदुपयोग करना सीखेंगे और बड़े होकर वो निश्चित रूप से अच्छा काम करेंगे। तो आवश्यकता ये बात की है कि हम उन्हें सिखाएं, हम पहले खुद करें और हमको देख के बच्चे स्वयं ही करते हैं। तो भैया ये बात को विशेष ही ध्यान रखना चाहिए। और जो हमारे ऐसे किसान भाई हैं, सिंचाई के लिए पानी की कितनी आवश्यकता होती है, तो भैया वर्षा के जल को संचयन करके रखें, अपने खेतों में गड्ढा बनाकर जो बारिश का जल है उसको संचयन करके रखें, उससे क्या होता है भैया बाद में वो सिंचाई के काम में ही आते हैं पानी। और आप ड्रिप सिंचाई का उपयोग भी कर सकते हैं, जैसे क्या पानी की बर्बादी कम होती है। और अपन देखते हैं कि मोटर चल रही है बड़ी बड़ी, जो सिंचाई के लिए अपन उपयोग करते हैं तो वो पानी अनावश्यक फैलत रहे थे, तो भैया उसको भी अपन को चाहिए कि अपन उसको समुचित उपयोग करें, उसकी समुचित व्यवस्था करें ताकि पानी की अनावश्यक बर्बादी ना हो। और हम अपने आस पड़ोस अपने गली मोहल्ले में भी देखते हैं कि नल खुले छोड़ देते हैं और नल की पाइप से लीकेज होते रहते हैं, पानी इतना बर्बाद होता है, इतना बर्बाद होता है कि हम देखते रहते हैं और अपने अपने पानी भर के चले जाते हैं। तो भैया ऐसा बिल्कुल नहीं करने हैं, अपन को उसकी पूरी जानकारी रखनी है और अपने जो भी अपना जो वार्ड मेंबर है उससे अपन को शिकायत करके वो सब अपन को सही करवाना चाहिए, ताकि अपन पानी की बर्बादी को रोक सकें। और भैया अब चलत चलत में हम आपसे यही कह वो चाहते हैं कि अब भैया गर्मी पड़ रही है, जैसे अपन को गर्मी से बेहाल है पशुओं को भी है, तो भैया पशुओं को भी अपने घर में अपने आसपास पानी पीवे को ज़रूर से रखें। और भैया आप तो अपन देख ही रहे हैं कि घड़ी की सुई इशारों कर रही है, अपने कार्यक्रम को समय समाप्त हो रहा है। तो अब आपकी वर्षा बहन आपसे विदा लेते हैं, राम राम, जय जवान जय किसान।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में

0: नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार और आज हम चर्चा करेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रमुख निर्णयों पर। हमारे साथ जुड़ी हैं लक्ष्मी देवी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। लक्ष्मी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: लक्ष्मी, सार्थक पीडीएस योजना को दो अलग अलग योजनाओं को मिलाकर के एक तरह से अम्ब्रेला स्कीम के रूप में तैयार किया गया है, जिससे कह सकते हैं कि इसे केवल प्रशासनिक पुनर्गठन नहीं बल्कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है उसमें एक बड़े सुधार की तरह लाए जाने की कोशिश की गई है। तो इससे जो राज्य और केंद्र सरकार के बीच का समन्वय है और जो भी जवाबदेही होती है, जो भी व्यवस्था होती है, उस पर कैसा असर पड़ेगा?
1: इस स्कीम में जो मेन जो कंपोनेंट है, जो स्टेट एजेंसीज जो फूड ग्रेन्स वितरण करने में लगे हैं, उसमें जो उनको दिक्कत आती थी वो जो कॉस्ट लगती थी, जो एक स्टेट से, जैसे सेंटर से स्टेट तक जाता है फूड ग्रेन्स, वहां से फर्दर डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रीब्यूशन और पीडीएस या राशन शॉप तक पहुंचाने का काम हर एक स्टेट का जवाबदारी है। वहां पे उनको कुछ कॉस्ट बेयर करना पड़ता था, अभी उससे वो उठा नहीं पा रहे थे। इस स्कीम के तहत वो वाला जो कॉस्ट, जो भी सपोर्ट है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। इससे उनका थोड़ा सा पीडीएस में जो इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो जाएगा। और दूसरी इशू है जो डीलर्स का है। डीलर्स का जो रेम्यूनरेशन बहुत सालों से स्टैटिक था एंड वो अभी थोड़ा सा बढ़ेगा। इससे क्या है कि डीलर्स को भी वो शॉप्स चलाने में थोड़ा सा हेल्पफुल होगा एंड वो इंटरेस्ट के साथ ये काम करेंगे। और तीसरा है वो जो टेक्नोलॉजी है। ये तीन जो है, जो अडॉप्शन है, उससे जो स्टेट और सेंटर का जो समन्वय से जो काम होना है उसमें और भी ट्रांसपेरेंट वे और एफिशिएंसी बढ़ेगा।
0: आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री ने इस बारे में और क्या कहा है।
2: आज की कैबिनेट में एक ऐसा फैसला लिया गया है जो कि देश के 80 करोड़ नागरिकों को प्रभावित करता है। आप सब जानते हैं कि आज हिंदुस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चल रहा है। फूड सिक्योरिटी से जुड़े जो विषय हैं, उन सबके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आज उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने वाली जो व्यवस्था है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसमें बहुत बड़ा एक फैसला लिया गया है, वो है सार्थक पीडीएस स्कीम। सार्थक पीडीएस स्कीम करीब 25,000 करोड़ का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य में एक जो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट बियर करने में दिक्कत आ रही थी राज्य सरकारों की। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने फैसला लिया है कि उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे इस प्रोग्राम के तहत। दूसरा, जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं, उन फेयर प्राइस शॉप्स में डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, एक लंबे टाइम से वो स्टैटिक था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी इसमें आज फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला लिया गया टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: अभी केंद्र सरकार ने इस सार्थक पीडीएस के लिए अगले 5 वर्षों में लगभग 25,530 करोड़ रुपए के बड़े परिव्यय की मंजूरी दे दी है। तो इस राशि को प्रभावी और पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित करने के लिए किस तरह से काम करना होगा?
1: तो इसके लिए जो रियल टाइम बेनिफिशियरी डेटाबेस है, जो निर्मल प्लेटफॉर्म के तहत ऑलरेडी है, इससे क्या है कि जो राइटफुल बेनिफिशरीज है, वो जो राइटफुल बेनिफिशरीज ने, वो वीड आउट हो जाएगा, उनको निकाल देंगे। उस पैसे को कैसे अच्छे से यूज कर सकते हैं, इसमें एआई का और टेक्नोलॉजी का यूज किया गया ताकि वो पैसे सही तरीके से इस्तेमाल हो। एंड जो इरेगुलरिटीज जो होते थे, पैटर्न को वो डिटेक्ट करना, और होस्ट डुप्लीकेट बेनिफिशरीज जो होते थे, वो एआई और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम से ये सब वो डिटेक्ट होगा। तो इससे क्या है कि हमारा जो सब्सिडी है उसमें भी बचत होगी, और ये जो 25,000 है वो ज्यादातर हमें कमीशन जो डीलर्स के लिए जाएगा, जो स्टेट जो कॉस्ट उठा नहीं पा रहे, तो उसमें ज्यादातर ये खर्चा वो जो रेगुलर है, बट बड़ा जो सेविंग्स होगा जो ये डुप्लीकेट बेनिफिशरीज के लिए और इरेगुलरिटीज जो होता है, तो उससे थोड़ा सा हमारा सब्सिडी जो खर्चा होता है जो इम्प्लीमेंटेशन में, उसमें बचत होगी।
0: बिल्कुल, अभी आपने रियल टाइम मॉनिटरिंग की बात की, एआई आधारित शिकायत निवारण प्रणाली की भी बात की है सार्थक पीडीएस के तहत। तो नई तरह की प्रक्रिया एक अपनाई जा रही है जिसमें शिकायतों के समाधान में तेजी आएगी और इसे पारदर्शी बनाया जाएगा। आइए सुनते हैं इस बारे में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा।
2: तीन बड़े एलिमेंट्स रहेंगे टेक्नोलॉजी के। सबसे पहला निर्मल, वो है पीडीएस बेनिफिशरीज की रजिस्ट्री। करेक्ट व्यक्ति को सुविधा मिले और गलत व्यक्ति को सुविधा न मिले, इसके लिए एआई की टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजीज का यूज करके पीडीएस के बेनिफिशियरीज की एक रजिस्ट्री बनाई जाएगी। दूसरा है, किसी के भी पब्लिक की कोई ग्रीवेंस हो उसको सॉल्व करने के लिए एआई इनेबल्ड सिस्टम है आशा, इसमें प्रोएक्टिव फीडबैक भी है। तीसरा है सक्षम, इसमें सप्लाई चेन के पूरे प्लेटफॉर्म को टेक्नोलॉजी इनेबल करेंगे। हर एक फूड ग्रेन के बैग को क्यूआर कोडिंग करना, जितनी गाड़ियां जाती है उसका जीपीएस टैगिंग रखना, डैशबोर्ड्स प्रॉपर बना के उनका ट्रैकिंग करना, पीडीएस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए ये टेक्नोलॉजी का इनेबलमेंट इससे किया जाए।
0: लक्ष्मी जी, इस योजना में हम देख रहे हैं कि एआई, मशीन लर्निंग, एनएलपी और ब्लॉकचेन जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करने की बात कही जा रही है। अगर एक आम नागरिक के दृष्टिकोण से हम समझने की कोशिश करें तो किस तरह से ये वास्तव में बदलाव लाने का प्रयास करेंगी, जिसमें फर्जी लाभार्थियों की बात होती है, डुप्लीकेट राशन कार्ड की बात होती है या फिर खाद्यान्न लीकेज पर भी काफी चर्चा होती है।
1: देखिए, ये जो ग्रीवियंसेस है, जो भी कंप्लेंट्स है कंज्यूमर्स का और स्पेशली बेनिफिशरीज का, जो आशा एआई असिस्टेंट है, ये जो मल्टीलिंगुअल एआई ग्रीवियंस प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो बेनिफिशरीज कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, चैट बॉट्स भी है, इसके तहत वो जो भी कंप्लेन है उससे वो फास्टर रेजोल्यूशन होगा और वो मल्टीलिंगुअल है, कोई भी लैंग्वेज में वो बेनिफिशरी वहां पे कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि इससे क्या होगा कि सिटीजन का जो बेनिफिशरीज का जो कंप्लेंट्स है, जो एनएलपी टेक्नोलॉजी जो यूज कर रहे हैं वो मल्टीपल लैंग्वेजेस को प्रोसेस करके कैसे वो रिजॉल्व करे, इससे क्या है कि कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन भी होगा इससे बेनिफिशरीज को, हाँ उनका जो कंप्लेंट्स है वो कोई समझ रहे है, कोई भी लैंग्वेज है, उस लेवल के जो राशन जो लेते हैं वो बेनिफिशरीज है, ज्यादातर अलग ही सेगमेंट के कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ नहीं है, तो उनके लिए कई बार खाली लिखित में देना मुश्किल हो जाता है, वो कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप में वो वॉइस चैट भी कर सकते हैं, तो इस तरह का कंप्लेंट्स बहुत ही अच्छे से फास्टर वे में वो एड्रेस हो सकता है।
0: तरह की जब खाद्यान्न योजना की हम बात करते हैं तो हमेशा से सरकार सोच रही है कि लास्ट माइल डिलीवरी को विशेष तौर पर प्राथमिकता दी जाए, यानी कि जो देश के दूर दराज के निवासी हैं, दूर दराज के इलाकों में रहने वाले आदिवासी या फिर भौगोलिक रूप से जो कठिन क्षेत्रों में रहते हैं उनके सामने अक्सर राशन की चुनौतियां आती हैं, तो इस मिशन में अगर हम लक्ष्य की बात करते हैं तो अब जो सरकार ने एक अम्ब्रेला स्कीम तैयार की है, आपको क्या लगता है कि इसमें सफल होने के क्या क्या एलिमेंट्स हैं?
1: देखिए, चैलेंजेस ज्यादातर जो है, रोड्स अच्छे नहीं है, स्टोरेज फैसिलिटीज रिमोट एरियाज में इस तरह का पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होने के वजह से लास्ट माइल डिलीवरी में प्रॉब्लम होता है। सो अभी क्या है कि ये जो डेटा इनएक्यूरेसीज और रियल टाइम मॉनिटरिंग नहीं हो पाता है और इसके वजह से दिक्कत बहुत होता था कि वहां तक पहुंचाना। अभी जीपीएस टैग्ड व्हीकल्स जो इस स्कीम के तहत होगा, रियल टाइम ट्रैकिंग होगा
0: जी,
1: यहाँ से अगर गाड़ी निकलेगी तो कहाँ पे वो स्टक है, वो रोड वहां पे लैंडस्लाइड हुआ है या वहां पे रुका हुआ है या पता, यू कैन मॉनिटर जीपीएस टैग व्हीकल्स कहाँ पे दिक्कत हो रही है, कहाँ पे चोरी हो रही है, उस तरह का। और रूट ऑप्टिमाइजेशन में यहाँ पे होगा एआई एल्गोरिथम्स, जो एआई यूज करके कौन सा रूट्स जो है बहुत एफिशिएंट है, जहां से ट्रैवल टाइम कम ले सकता है, तो वो वाला भी एल्गोरिथम के थ्रू वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वो डिमांड पे फोकस कर सकते हैं कि कौन से सीजन में हम ज्यादातर लोगों का जो है ज्यादा ऑफ टेक है राशन में। कई बार लोग जल्दी ले लेते हैं पहले हफ्ते में क्योंकि वो उनका टाइम स्पैन होता है, एक महीने में राशन कभी भी आप महीने के स्टार्टिंग में उठा सकते हैं या आखिरी में भी उठा सकते, कई बार त्योहार के टाइम पे वो फर्स्ट वीक में उठा सकते, कई बार डीलर के पास उतना स्टॉक नहीं होता, उसके वजह से भी बेनिफिशरीज को टाइम से मिलना मुश्किल होता। तो टेक्नोलॉजी के वजह से वो डिमांड भी फोकस कर सकते हैं कि कौन से वीक या कौन से महीने में स्टॉक सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, उसी के वजह से प्री स्टॉकिंग वहां पे कर सकते हैं। दूसरा है कि वो जो बैग के ऊपर क्यूआर कोडेड के वजह से वो टैम्पर कोई कर ही नहीं सकते, जो जिस फेयर प्राइस शॉप को जो राशन शॉप के लिए जाना है वो वहां पे पता चल जाता है कि ये वाला क्यूआर कोडेड कौन से राशन के दुकान में पहुंचा है और वो ट्रैक भी कर सकते हैं। और रियल टाइम मॉनिटरिंग जो है ना, वेयरहाउस से लेके राशन शॉप की दुकान तक एवरी स्टेप जो डिजिटली कहाँ पे गया, कहाँ पे रुका, कहीं पे दिक्कत हुई, सब कुछ वो ट्रैक कर सकते।
0: लक्ष्मी जी, सरकार का ये भी कहना है कि ये योजना NFSA के तहत लगभग 81.35 करोड़ लोगों की खाद्य सुरक्षा को और मजबूत करेगी। इतनी बड़ी आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासनिक और वित्तीय दोनों ही दृष्टि से चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन इस बारे में केंद्रीय मंत्री क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं।
2: पूरी स्कीम से जो बेनिफिट होंगे, सबसे बड़ा तो एलिजिबल बेनिफिशरीज आइडेंटिफाई होंगे, दूसरा सिटीजंस का सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, तीसरा किसी की भी ग्रीवेंस हो उसको प्रॉपरली रिड्रेस कर पाए। एक जो फाइनेंशियल गेन होगा इस लॉजिस्टिक्स के पूरे रीऑर्गेनाइजेशन से और टेक्नोलॉजी यूज करने से, कॉस्ट ऑफ मूविंग रादर मूवमेंट ऑफ ग्रेन्स विल रिड्यूस ऑलमोस्ट 15-50%। लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट में 280 करोड़ रुपए की एनुअल सेविंग हो, और कार्बन एमिशंस बिकॉज ऑफ लेसर मूवमेंट ऑफ द फूड ग्रेन्स, कार्बन एमिशंस विल रिड्यूस 35%। ये सारे इसमें बेनिफिट।
0: लक्ष्मी जी, पिछले कुछ वर्षों में अगर हम देखें तो राशन कार्ड डिजिटलीकरण, आधार सीडिंग और EPOS मशीनों के माध्यम से काफी सुधार हमें देखने को मिले हैं, लेकिन कुछ तकनीकी बाधाएं भी सामने आई हैं और उन्हीं को दूर करने के लिए सार्थक PDS की बात की गई, और इसमें हम अगर थोड़ा सा आगे बढ़ते तो इंटर ऑपरेबल और सिटीजन सेंट्रिक PDS ढांचे की बात की जा रही है, वन नेशन वन राशन कार्ड के बाद इस तरह की पहल को आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में?
1: क्योंकि वन नेशन वन राशन कार्ड ये बहुत ये इम्प्लीमेंट हो ही रहा है, तो ये अच्छा है कि कहीं पे भी अगर आप जाए वहां पे आप राशन उतारना चाहिए, और उतारने का वो एक प्रोसेस भी होना चाहिए। सो अगर आप दिल्ली में हैं, दिल्ली से अगर आप कोई बॉम्बे जाते हैं वहां पे अगर राशन अगर लेना चाहते हैं तो वहां पे आप ले सकते हो। इस तरह का प्रोविजन अभी है विच इज गुड। बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स है जो एक ही राशन होगा और कहीं पे भी वो ले सकते हैं।
0: जी लक्ष्मी जी, अगर थोड़ा सा पीछे जाकर के हम देखें तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कई समस्याएं रही जिनमें भ्रष्टाचार और बिचौलियों की भूमिका एक लंबे समय तक देखी गई, जिसकी वजह से इतने सारे बदलाव किए गए। आज जो बदलाव हम देखते हैं तो ये पारदर्शिता को काफ़ी हद तक बढ़ा चुके हैं, सरकार को इसमें काफ़ी सफलता भी मिली है। आगे की जो राह है उसमें और भी समस्याएं बिल्कुल ना हो, वो और भी अच्छे से काम करें ताकि और कहीं कहीं पर जो शिकायतें आती हैं उनको दूर किया जा सके, तो इस बारे में आपको क्या लगता है कि सरकार अपने प्रयासों में पूरी तरह सफल हुई है?
1: हाँ, इस सरकार ने इम्प्लीमेंटेशन इतना क्लोजली मॉनिटर करते हैं, अगर कोई भी अगर पॉलिसी डिजाइन करते सोच समझ के करते हैं, और जहां तक मैंने PDS इतने सालों से मैंने ट्रैक किया है
0: जी,
1: और जितना जो इनएलिजिबल बेनिफिशरीज को जो अचीव किया है वो वहां से लेके, और इवन वेयर हाउस मॉनिटरिंग और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन है, एक के बाद एक बहुत ही अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। एंड मुझे लगता है कि अभी ये जो एक ही स्कीम के अंदर जो ये दो कंपोनेंट्स को लाने के बाद टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, इससे और भी ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा और सब्सिडी भी कम होगा सरकार के लिए, और बेनिफिशरीज को टाइम से उनका राशन मिलेगा, और कुछ भी दिक्कत हो तो टाइम से उसका रेजोल्यूशन भी होगा। कि ये पूरा सिस्टम को पेपरलेस और डिजिटली मॉनिटर्ड और ट्रांसपेरेंट सप्लाई चेन को बढ़ावा देगा।
0: जी लक्ष्मी जी, एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछूंगा मैं। लक्ष्मी जी, सार्थक PDS को वर्ष 2031 तक लागू रखने की योजना है, तो यदि इस योजना की सफलता को हम पीछे के वर्षों से मापना चाहें तो आपको क्या लगता है कि इस योजना ने किस तरह के बदलाव हमारे देश में लाए हैं?
1: देखिए, इसमें तो डीलर्स का तो रोल है ही इम्प्लीमेंटेशन में, तो पहले कुछ सपोर्ट नहीं था, अभी सपोर्ट थोड़ा बहुत मार्जिन देते थे, अब बेहतर देने से वो एक अच्छा बदलाव देगा, वो उनको भी प्रेरित करेगा कि उनका काम जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन के काम में वो अब मन लगा के वो इम्प्लीमेंट करें। एंड दूसरा जो स्टेट कॉस्ट इनकर्ड था वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा बहुत मदद कर रहे हैं तो दैट विल ऑल्सो हेल्प इन इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम इन अ मच बेटर वे।
0: जी लक्ष्मी देवी जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और मेरे तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। आग आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में अब आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। संगम फिल्म से ये गीत सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़।

और अब अगली आवाज़ सुनिए किशोर कुमार की याराना फिल्म से, जिसे इस गीत को लिखा है अनजान ने और संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

अगला गीत सुनिए सदमा फिल्म से सुरेश वाडकर की आवाज़ है, गुलजार के लिखे हुए बोल, जिन्हें संगीत में पिरोया है इलैया राजा ने।

आशा भोसले की ये खूबसूरत आवाज में अगला गीत सुनिए, जॉनी मेरा नाम फिल्म से, जिसे लिखा है राजेंद्र कृष्णा ने और संगीत में सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का, और अगला गीत सुनिए कुर्बानी फिल्म से कंचन मनहार और आनंद की आवाज़ है। इंदिवर के लिखे हुए बोल हैं जिन्हें संगीत में पिरोया है कल्याण जी आनंद जी ने।

और अब कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए किशोर कुमार की आवाज में पड़ोसन फिल्म से, जिसे लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और आर डी बर्मन का संगीत है।

0: और इसी के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश और अब लेते हैं एक अंतराल।
1: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।

यानी और फैमिली के साथ रील नहीं है। जुबली हिट्स भी है, न्यू हिट टॉप भी है, कंटेंट क्रिएशन भी है, हिप हॉप भी है, न्यू रिलीजेस बॉलीवुड।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित की जाएगी समाचार संध्या, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। योजना पर 25,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। कहा, यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बढ़ावा देती है। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। और भारत 2027 एशियाई रिले और 2028 एशियाई इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
2: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में जो FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के प्रत्येक जरूरतमंद लोगों को समय पर अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में इस प्रणाली को और अधिक आधुनिक तथा प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
3: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने SIR को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में SIR की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था।
4: असम में समान नागरिक संहिता विधेयक का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानूनी व्यवस्था स्थापित करना है। संवैधानिक संरक्षण और पारंपरिक रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने के लिए अनुसूचित जनजातियों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। वहीं विभिन्न धर्मों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक समान कानूनी ढांचा लागू करने का प्रावधान किया गया है। विवाह संबंधी प्रावधानों के तहत विधेयक में एक विवाह की व्यवस्था अनिवार्य की गई है तथा वर की न्यूनतम आयु

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी के और लू के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। एक रिपोर्ट।
3: आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मौजूदा लू की स्थिति पर चर्चा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उन विशेष कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपने अपने कार्य क्षेत्र में उठा सकते हैं।
4: प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में सुविधा पहुंचाने की किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हुई।
3: आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर विक्रम ने लोगों को लू से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना और ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करना और दिन के समय तपती धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: उधर राजस्थान में भी राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: दिन और रात के बढ़ते तापमान से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में जनजीवन पर असर पड़ा है। दिन के समय गांवों और शहरों में सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही सीमित हो गई है। विभिन्न जिलों में प्रशासन की ओर से गर्मी से निपटने के लिए कई स्तरों पर इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न संस्थाएं भी ठंडे पेय का वितरण कर लोगों को राहत पहुँचाने के जतन में जुटी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करने की भी अपील की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज सभी न्यायाधीशों से अपील की कि वे भीषण गर्मी को देखते हुए मामलों की सुनवाई ऑनलाइन करें। न्यायालय ने कहा कि वह इस संबंध में न्यायिक निर्देश जारी नहीं कर सकता। न्यायालय दिल्ली में बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए सभी अदालतों में ऑनलाइन कार्यवाही करने के निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सरकार द्वारा पूर्व प्रभावी 28% GST को बरकरार रखते हुए इसे वैध बताया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म केवल मध्यस्थ नहीं है बल्कि उन्हें आपूर्तिकर्ता माना जाना चाहिए और उन पर वस्तु तथा सेवा कर GST लागू होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का

एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upssconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश की उन्नति के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास बेहद आवश्यक है। आज गांगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने शिक्षा को सशक्तिकरण का मार्ग बताया और विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने विचारों, नवाचारों और आपसी विश्वास के जरिए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। और खेलों में म्यूनिख में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 43 हिट लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने जूनियर और सीनियर दोनों वर्ग में विश्व रिकॉर्ड कायम किया। फाइनल में ईशा ने पूर्व विश्व चैंपियन मिरोस्लावा मिंचेवा और कोरिया की शीर्ष खिलाड़ी जीन यांग को हराकर पहला स्थान हासिल किया। डेरिन वेनेकैंप दूसरे और मिरोस्लावा मिंचेवा तीसरे स्थान पर रहीं। उधर न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 4 विकेट पर 211 रन बना लिए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने 97 रन की पारी खेली। भारत ने एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 और एशियन रिले 2028 की मेजबानी के अधिकार हासिल कर लिए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष आदिल सुमरेवाला ने आज इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 का आयोजन भुवनेश्वर में जबकि चंडीगढ़ एशियन रिले 2028 की मेजबानी करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक PDS योजना के विस्तार को मंजूरी दी। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, UCC लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। और भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Centre approves extension of Sarthak PDS scheme to modernise public distribution system with outlay of over 25,500 crore rupees. Severe heat wave conditions to continue over central and northwest India during next 2 to 3 days. Prime Minister Narendra Modi urges citizens to take care of vulnerable people amid soaring mercury. Supreme Court upholds legality of Election Commission's SIR drive, says exercise advances free and fair elections.

0: Amit Shah has congratulated the people of Assam for the passage of the Uniform Civil Code in the State Assembly. In a social media post, Mr. Shah said under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, BJP-led state governments are establishing uniform law for every citizen. President Draupadi Murmu today flagged off a women-centric public transport service titled Pink City Runner Ama Didi Bahini Bus Seva at Gangtok in Sikkim. Later in the day, President Murmu addressed the convocation ceremony of the Sikkim University in Gangtok. She said development of the Northeast is vital for the country's overall progress.
1: नॉर्थईस्ट का विकास देश की समग्र विकास के लिए अनिवार्य है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों का विकास और राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ के युवाओं में असीम प्रतिभा है। सिक्किम सहित अन्य राज्यों से आए हुए विद्यार्थियों से मैं आग्रह करना चाहूँगी कि आप सब एक दूसरे के संपर्क में रहे और मिलजुल कर राष्ट्रीय विकास में योगदान देने का भावना में आगे बढ़े।
0: Defence Minister Rajnath Singh today chaired the sixth meeting of the informal group of ministers in New Delhi to review the availability of essential commodities and the resilience of our supply chains amid the West Asia situation. In a social media post, the minister called upon citizens to avoid panic purchase of petrol, diesel and LPG as the government is pulling out all stops to ensure the availability of all essential items. In Kerala, five people were arrested after alleged attacks on Enforcement Directorate ED officials during protests by workers of the Communist Party of India Marxist in Thiruvananthapuram. The ED today conducted raids at multiple locations, including the residences linked to former Chief Minister Pinarayi Vijayan at Thiruvananthapuram and Kannur. The officials were attacked in Thiruvananthapuram while they were returning after carrying out searches, and their vehicles were allegedly vandalized. BJP State President Rajiv Chandrasekhar condemned the attack, while State Home Minister Ramesh Chennithala assured strict action against those involved. The CPM, however, termed the raids politically motivated. Indian shooter Isha Singh today broke the world record in the women's 25-meter pistol event at the ISSF World Cup in Munich. 21-year-old Isha earned 43 points from a possible 50 in the final to surpass the previous record of 42 points held by South Korea's Kim Ye-ji and claimed the gold medal. India has been awarded the hosting rights for the 2027 Asian Relays and the 2028 Asian Indoor Championships. The decision was taken at the Executive Council meeting of the Asian Athletics Association held in Hong Kong ahead of the Asian Under-20 Championships beginning tomorrow. World Athletics Vice President Adil Sumariwala said the 2027 Asian Relays will be held in Chandigarh, while Bhubaneswar will host the 2028 Asian Indoor Championships. In IPL cricket, Rajasthan Royals were 234 for 6 in 18.1 overs against Sunrisers Hyderabad in the eliminator match in New Chandigarh when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Centre approves extension of Sarthak BDS scheme to modernise public distribution system with outlay of over 25,500 crore rupees. Severe heat wave conditions to continue over central and northwest India during next 2 to 3 days. Prime Minister Modi urges citizens to take care of vulnerable people amid soaring mercury. Supreme Court upholds legality of Election Commission's SIR drive, says exercise advances free and fair elections. Assam Assembly passes Uniform Civil Code Bill, becoming third state in the country to adopt the legislation. Indian shooter Isha Singh breaks world record in women's 25-meter pistol event, clinching gold at ISSF World Cup in Munich. That is all in the news at 9. Good night.
2: ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं तनवीरुल फरीद। पहले खबरों की सुर्खियां। मरकज ने अवामी निजाम तकसीम को जदीद बनाने के मकसद से सार्थक पीडीएस स्कीम की तौसी को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 25,500 करोड़ रुपए से ज्यादा मुख्तस किए गए हैं। वस्ती और शुमाल मगरबी भारत में आइंदा 2 से 3 दिन के दौरान शदीद गर्मी की लहर जारी रहेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बढ़ते हुए दर्जे हरारत के दौरान कमजोर अफराद का ध्यान रखने के लिए शहरियों पर जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव कमीशन की एसआईआर मुहिम की कानूनी हैसियत को बरकरार रखा है। उसने कहा है कि ये मश्क आजाद और शफाफ इंतखाबात की राह हमवार करेगी। आसाम असेंबली ने यकसा सिविल कोड बिल को मंजूर कर दिया है और इस कानून को पास करने वाली मुल्क में तीसरी रियासत बन गई है। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ख्वातीन के 25 मीटर पिस्टल मुकाबले में आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने म्यूनिख के ISSF आलमी कप में तलाई तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने मरकजी काबीना की जानिब से सार्थक PDS के दूसरे मरहले के लिए 25,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की मंजूरी दिए जाने को सराहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब शाह ने कहा कि सरकार गरीबी दूर करने की स्कीमों को टेक्नोलॉजी से लैस कर रही है ताकि उन्हें और ज्यादा शफाफ और आसान बनाया जा सके। वजीर दाखला ने मजीद कहा कि AI की मदद से मुस्तफीद होने वाले अफराद का अंदराज GPS के जरिए ट्रैकिंग और QR कोड जैसे आला टेक्नोलॉजी निजाम के जरिए गरीबों को स्कीमों के 100% फायदे मुहैया किए जा सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि रियासतों की बढ़ती हुई लॉजिस्टिक लागत के लिए इक्तसादी मदद की भी गुंजाइश रखी गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए अहदबंद है कि मुल्क में अवामी निजाम तकसीम PDS के जरिए हर जरूरतमंद फर्द को वक्त पर अनाज फराहम हो। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि इस समत में PDS को ज्यादा जदीद और मुअस्सर बनाने के लिए फैसला किया जा रहा है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि ये अकदाम PDS के तहत फराहमी लॉजिस्टिक और नकलो हमल के इंतजाम को मजीद शफाफ और मुअस्सर बनाएगा, जिसके साथ साथ ये शिकायतों को हल करने में तेजी भी लाएगा। इक्तसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी CCEA ने आज PDS में खुदकारी के साथ राशन ट्रांसपोर्ट और हैंडलिंग इनकम में इमदाद के लिए स्कीम सार्थक PDS को एक जामे स्कीम के तौर पर जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस स्कीम को 16वें मालियाती कमीशन अवार्ड मुद्दत में मंजूरी दी गई है, जिसमें मरकज के हिस्से के तौर पर 25,530 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए इतलात नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये स्कीम अनाज के एक रियासत से दूसरी रियासत में नकलो हमल के लिए रियासती एजेंसियों, राशन की दुकानों और अवामी निज़ाम में तकसीम की जदीदकारी में मदद फराहम करेगी।
3: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
2: जनाब वैष्णव ने कहा कि इस स्कीम में तीन बड़े AI पर मबनी मॉड्यूल होंगे, जिनके नाम हैं निर्मल, आशा और सक्षम। उन्होंने कहा कि निर्मल एक AI की क्यादत वाली रियल टाइम PDS मुस्तफिदीन का निज़ाम है। आशा एक कसीर लेसानी मस्नूई ज़हानत का शिकायतों के इजाले और शहरियों को मुंसलिक करने का प्लेटफॉर्म है, जबकि सक्षम AI पर मबनी सप्लाई चेन प्लेटफॉर्म है जिसमें गाड़ियों की ट्रैकिंग भी होगी। वजीर मौसूफ ने कहा कि यह स्कीम खुराक के तहफ्फुज के कौमी कानून के तहत अहाता किए गए 81,35,00,000 अफराद के लिए हुकूमत के अहद को पूरा करने की जानिब काम करेगी। उन्होंने कहा कि यह स्कीम मौजूदा PDS स्कीम की जगह नहीं लेगी।
3: ये सुधार है PDS के सिस्टम में, पूरे डिलीवरी सिस्टम में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, मटेरियल हैंडलिंग में और PDS के बेनिफिशरीज की ग्रीवेंस के रिड्रेसल के लिए बहुत बड़ा ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। और PDS एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर ही सारा काम करते हैं। दूर दराज के क्षेत्र हो, महिलाएं हो, वंचित हो, सबको कवर किया जाता है।
2: मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ते हुए दर्जे हरारत के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो जितना मुमकिन हो ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरतें। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब मोदी ने सबको मशवरा दिया कि वो अपने जिस्म में पानी की कमी ना होने दें और जब कभी घर से बाहर जाएं तो पानी के बोतल के साथ जाएं। गर्मी के बाद रोजमर्रा की जिंदगी में बढ़ती हुई परेशानियों के बारे में जोर देते हुए जनाब मोदी ने कहा कि इस तरह

0: के मौसम में हसासियत मदद का एक बड़ा जरिया बन जाती है। उन्होंने सलाह दी कि अगर कोई प्यासा हो तो उसे पानी का एक गिलास पेश करें। उन्होंने हर किसी पर यह जोर भी दिया कि वो अपने कुनबा के अफराद और अजीज़ो अकरबा के राबते में रहें और उनकी सेहत के बारे में मालूम करते रहें। उन्होंने ज़्यादा मकदार में पानी पीने की याद दहानी कराएं, उन्हें तीसरे पहर सख्त धूप में बाहर निकलने से गुरेज करने और ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने के लिए कहें। उन्होंने मज़ीद कहा कि जानवरों और परिंदों को जहन में रखते हुए घरों के बाहर बालकनियों में, छतों पर, दुकानों पर या दफातर में छोटे बर्तन में पानी भर कर रखें। वज़ीर आज़म ने हर किसी पर जोर दिया कि वो इन मुश्किल अय्याम में मुकम्मल हसासियत और जज्बे के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। पेश है एक रिपोर्ट।
1: आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मौजूदा लू की स्थिति पर चर्चा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उन विशेष कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपने अपने कार्य क्षेत्र में उठा सकते हैं।
2: प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में सुविधा पहुंचाने की किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हुई।
1: आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर विक्रम ने लोगों को लू से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना और ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करना और दिन के समय तपती धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम के शहर गैंगटॉक में पिंक सिटी रनर अमा दीदी बाहनी नामी ख्वातीन मरकूज सरकारी ट्रांसपोर्ट सर्विस को आज झंडी दिखाकर रवाना किया। सिर्फ ख्वातीन के लिए ये बस सर्विस पूरे तौर पर ख्वातीन अमले के जरिए ऑपरेट की जाएगी, जिसका मकसद ख्वातीन मुसाफिरों को महफूज, आरामदेह और सस्ता ट्रांसपोर्ट फराहम करना है। बाद में दिन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने गैंगटॉक में सिक्किम यूनिवर्सिटी की 7वीं तकसीम असनाद की तकरीब से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मुल्क की मजमू तरक्की के लिए शुमाल मशरक की तरक्की इंतहाई अहम है।
3: नॉर्थ ईस्ट का विकास देश की समग्र विकास के लिए अनिवार्य है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों का विकास और राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ के युवाओं में असीम प्रतिभा है। सिक्किम सहित अन्य राज्यों से आए हुए विद्यार्थियों से मैं आग्रह करना चाहूंगी कि आप सब एक दूसरे के संपर्क में रहे और मिलजुल कर राष्ट्रीय विकास में योगदान देने का भावना में आगे बढ़े।
0: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव फहरिस्तों पर खसूसी जाम नजरसानी की इंतखाबी कमीशन की कार्रवाई को कानूनी एतबार से जायज करार दिया है और ये भी कहा है कि आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराने के लिए आईन में इस तरह की नजरसानी के लिए कहा गया है। अदालत आलिया ने कहा कि चुनाव कमीशन को आवामी नुमाइंदगी से मुतालिक कानून मजरिया 1950 की दफा 324 और इसके तहत बनाए गए जाब्तों के मुताबिक चुनाव फहरिस्तों पर खसूसी नजरसानी करने का अख्तियार हासिल है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाला बागची पर मुश्तमिल बेंच ने रिट दरखास्तों पर फैसला सुनाते हुए ये बात कही। इन दरखास्तों में गुज़श्ता साल जून में बिहार में वोटर फहरिस्तों पर खसूसी जाम नजरसानी करने के इंतखाबी कमीशन के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था। अदालत ने कहा कि SIR का अमल आज़ाद और शफाफ इंतखाब करने के मकसद को हासिल करना रहा है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से सुनाए गए इस फैसले में ये भी कहा गया है कि जब खुद कानून में इंतखाबी कमीशन को किसी भी वक्त खसूसी नजरसानी कराने को कहा गया है तो इस सूरत में कमीशन के नजरसानी के अमल को महज इस बुनियाद पर नाजायज करार नहीं दिया जा सकता कि मौजूद तरीक़ाकार माजी में कराई गई नजरसानी से मुताबिकत नहीं रखता। लिहाजा ये नहीं कहा जा सकता कि इंतखाबी कमीशन ने अपने कानूनी इख्तियारात से तजावुज किया है। अदालत ने मजीद कहा कि चुनाव कमीशन ने जो वजूहात रिकॉर्ड की हैं उनका वाज़े मकसद इसकी बुनियादी सियासत को बरकरार रखना है। इनमें 4 दहाइयों से ज्यादा मुद्दत पहले खसूसी नजरसानी कराना, पिछले बरसों में बड़े पैमाने पर राय दहिंदगान का इजाफा होना और हजफ करना नीज तेजी के साथ बढ़ते हुए शहरी इलाके और नकल मकानी के मामलात शामिल हैं, जिनकी वजह से चुनाव फहरिस्तों में मुसन्ना साजी और अदम दुरुस्तगी का इम्कान हो सकता है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। असम कानून साज असेंबली ने आज यकसा सिविल कोड बिल को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद असम इस तरह के बिल को मंजूरी देने वाली शुमाल मशरिक में पहली और मुल्क में तीसरी रियासत बन गई है। यकसा सिविल कोड असम बिल 2026 को पीर के रोज 16वीं असम लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले इजलास के दौरान पेश किया गया था, जिसे ऐवान ने आज इजलास के आखिरी दिन मंजूरी दे दी है। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने रियासती असेंबली में यकसा सिविल कोड मंजूर किए जाने पर असम के लोगों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब शाह ने कहा कि यकसा सिविल कोड उस वक्त से बीजेपी का अज़्म रहा है जब से इसका क़याम अमल में आया है। अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने आज तमाम हाजियों को मुबारकबाद दी है और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब रिजिजू ने कहा कि हुकूमत ने इस साल हज के दौरान भारतीय आज़मीन हज को सहूलत फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश की है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC ने पहली बार सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2026 के लिए आरजी आंसर की जारी की है। एक बयान में कमीशन ने कहा है कि जो उम्मीदवार इम्तिहान में शामिल हुए हैं वो 31 मई शाम 6 बजे तक upscionline.nic.in पर दस्तयाब ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल पर अपना रिप्रेजेंटेशन भेज सकते हैं। एक बड़ी छापेमारी में गुजरात के इंसदादे दहशतगर्दी के स्क्वाड और भारतीय साहिली मुहाफिजों ने आज गुजरात में कुछ जिले के साहिल के पास 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की मुश्तबा मनशियात के 115 पैकेट जब्त किए। ये मनशियात एक कश्ती से बरामद की गई जो कच्छ मुंद्रा बंदरगाह की जानिब जा रही थी। म्यूनिख में मुनक्किदा ISSF वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत की निशानेबाज ईशा ने 25 मीटर पिस्टल शूटिंग मुकाबले में शानदार कारकिर्दगी का मुजाहरा किया है। उन्होंने मुमकिना 50 पॉइंट में 43 पॉइंट्स हासिल करके एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। इससे कबल ये रिकॉर्ड 42 पॉइंट्स के साथ जनूबी कोरिया की किम येजी के नाम था। भारत के शहर चंडीगढ़ और भुवनेश्वर को आइंदा बरस मुनक्किदा होने वाले एशियाई रिले और साल 2028 की एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी के हुकूक दिए गए हैं। इस बात का ऐलान हांगकांग में मुनक्किद होने वाली एग्जीक्यूटिव मीटिंग के दौरान बर आजम एथलेटिक्स की गवर्निंग बॉडी ने किया। एशियन एथलेटिक्स काउंसिल की मीटिंग एशियाई U20 चैंपियनशिप से कबल मुनक्किद हुई, जो 28 से 31 मई तक जारी रहेगी। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकज ने अवामी निजाम तकसीम को जदीद बनाने के मकसद से सार्थक PDS स्कीम की तौसी को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 25,500 करोड़ रुपए से ज्यादा मुख्तस किए गए हैं। वस्ती और शुमाल मगरबी भारत में आइंदा 2 से 3 दिन के दौरान शदीद गर्मी की लहर जारी रहेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बढ़ते हुए दर्जे हरारत के दौरान कमजोर अफराद का ध्यान रखने के लिए शहरियों पर जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव कमीशन की SIR मुहिम की कानूनी हैसियत को बरकरार रखा है। उसने कहा है कि ये मशक आजाद शफाफ इंतखाबात की राह हमवार करेगी। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ख्वातीन के 25 मीटर पिस्टल मुकाबले में आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने म्यूनिख के ISSF आलमी कप में तलाई तमगा हासिल किया है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: चर्चा का विषय है।
1: सीमाएं सिर्फ नक्शों पर खींची गई रेखाएं नहीं होती, ये किसी देश की पहचान होती हैं, उसकी सुरक्षा, उसकी संस्कृति और उसके भविष्य की सबसे मजबूत दीवार होती हैं। लेकिन जब इन्हीं सीमाओं को पार कर अवैध घुसपैठ देश के भीतर प्रवेश करती है तो सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं रह जाता, सवाल उठता है जनसंख्या संतुलन का, सामाजिक ढांचे का, रोजगार, संसाधनों और राष्ट्रीय पहचान का। क्या बदलती जनसंख्या तस्वीर भारत के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को प्रभावित कर रही है? क्या सीमाओं से शुरू होने वाली ये चुनौती अब शहरों और गांवों तक पहुंच चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले वर्षों में ये भारत की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता के लिए गंभीर संकट भी बन सकती है? इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे हमारे विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय है में। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। हमारा आज का विषय है जनसंख्या परिवर्तन का सामाजिक आर्थिक ढांचे पर प्रभाव। आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर और सीमा सुरक्षा की चुनौतियों को बेहद करीब से देखने वाले पूर्व बीएसएफ प्रमुख और असम के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी नमस्कार।
3: नमस्कार
1: प्रकाश जी। आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो सबसे बड़ी चुनौती इस समय भारत के सामने है वो दूसरे देशों से आए लोग हैं। दो तरह के लोग हैं, एक शरणार्थी हैं और दूसरे घुसपैठिए हैं। इसको लेकर जो हमारे बॉर्डर स्टेट हैं वहां पर कई तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है, क्या लगता है? चूंकि आप खुद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के प्रमुख रह चुके हैं, असम एक ऐसे राज्य के आप डीजीपी थे जहां पर इस तरह की बहुत बड़ी समस्या है, कैसे देखते हैं आप इसे भारत के नजरिए से?
3: देखिए, भारत के नजरिए से तो बहुत साफ है और अलग अलग समय पे बड़े बड़े हस्तियों ने इस विषय पे रोशनी डाली है कि ये देश की सामाजिक ढांचे के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए और देश की सुरक्षा के लिए, तीनों ही दृष्टिकोण से ये बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत बड़ा खतरा है। घुसपैठिए जो है आज से नहीं, ये स्वतंत्रता के बाद से, इंडिपेंडेंस के बाद से ही शुरू हो गया था। पर यह है कि इसकी प्रक्रिया अगर हम 1971 के बाद देखें, 1971 में बांग्लादेश बन गया तो उसके पहले जो कुछ उत्पीड़न हुआ था पाकिस्तान आर्मी द्वारा, उस समय आप जानते हैं लाखों की तादाद में बांग्लादेशी आए थे और यहाँ पे उन्होंने शरण ली थी। बाद में बहुतों को वापस भेजा गया, कुछ गए, शायद कुछ नहीं भी गए होंगे। परंतु 1971 के बाद भी ये समस्या ऐसा नहीं है कि इसका समाधान हो गया। हम लोग ये समझते थे कि अब बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हो गया और भारत के सहयोग से हुआ है तो अब हिंदू वहां पे सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे, मुस्लिम तो वहां पे रहेंगे ही। परंतु बहुत सारे कारण ऐसे हुए जिसकी वजह से ये घुसपैठ की समस्या बराबर बनी रही। सबसे बड़ा कारण जो था आर्थिक था। वो बांग्लादेश तो बन गया पर उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो इतनी बड़ी जनसंख्या को सबको एम्प्लॉयमेंट दे सके, सबको रोजी रोटी की व्यवस्था हो सके। नतीजा ये हुआ कि आर्थिक कारणों से बहुत भारी संख्या में 1971 में बांग्लादेश के बनने के बाद भी यहाँ पलायन होता रहा, लोग आते रहे सीमा पार से और जितने बॉर्डरिंग स्टेट से वहां पे बढ़ते गए। इस समस्या से सारी सरकारें अवगत थी। आपको याद होगा कारगिल युद्ध के बाद 4 टास्क फोर्सेस बनी थी बॉर्डर की समस्या देखने के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी की, डिफेंस की, इंटेलिजेंस की, और चारों टास्क फोर्स बड़े हाई पावर्ड बॉडीज थी। इसमें एक बॉर्डर मैनेजमेंट वाली जो बॉडी थी वो माधव गोडबोले उसका नेतृत्व कर रहे थे, जो भारत सरकार के गृह सचिव थे और बड़े योग्य आईएएस अधिकारी थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो अगस्त 2000 में प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट में ये लिखा कि हर वर्ष करीब 300,000 बांग्लादेशी भारत में घुसपैठ कर रहे हैं और इस समय वर्तमान में 2000 में उनकी संख्या 1,50,00,000 है। ये 2000 की बात है, उसके बाद भी बढ़ता ही रहा होगा। आज की तारीख में 3 करोड़ हो गया हो, 3.5 करोड़ हो गया, कुछ कहा नहीं जा सकता। अलग अलग समय पे भारत सरकार ने इसका अलग अलग एस्टिमेट दिया है। 2001 में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना था। ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने चारों टास्क फोर्सेज की रिपोर्ट को इवेल्युएट किया था, उसमें आकलन किया था और इन्होंने भी बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठियों का होना देश की सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा है। फिर बाद में आ जाइए, 2005 में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला गया, सोनोवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस था एक 2005 में। उसमें उन्होंने कहा था कि दिस इज ए डेमोग्राफिक एग्रेशन और एक्सटर्नल एग्रेशन में इसको उन्होंने क्लासिफाई किया था, ये एक्सटर्नल एग्रेशन है ऑन इंडिया, और कहा था इसके लिए भारत की संप्रभुता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो ये समस्या आज से नहीं, बहुत पहले से चली आ रही है। और अगर आप और पहले जाना चाहें तो 1998 में जब जनरल सिन्हा आसाम के राज्यपाल थे, उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को 8 नवंबर 1998 में एक रिपोर्ट भेजी थी जिसमें में लिखा था कि असम में जो घुसपैठ हो रही है उससे जनसंख्या में जो परिवर्तन हो रहे हैं, हो सकता है कि कालांतर में मतलब बहुत कुछ वर्षों बाद बांग्लादेश ये मांग करे कि असम के जो सीमावर्ती मुस्लिम बाहुल्य प्रदेश हैं इन्हें बांग्लादेश में मिला दिया जाए क्योंकि ये मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो ये तो स्थिति है, ये आज से नहीं कम से कम 1998 से बराबर चेतावनी हमको मिल रही है। 26-27 साल हो गए हैं। वर्तमान सरकार को इस बात का श्रेय तो हम देंगे कि इन्होंने इस समस्या की नोटिस ली है और मोदी जी ने अपने इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में कहा है कि एक डेमोग्राफिक कमीशन बनाएंगे तो इस समस्या को गंभीरता से उसको स्टडी करके अपने रिकमेंडेशन देगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई अवसरों पर कहा है कि घुसपैठिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है।
0: जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है। तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।
1: जी हाँ, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को उच्च स्तरीय जनसांख्यिकी मिशन की घोषणा की थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर 2025 को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी और अब न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नवेलकर सेवानिवृत्त समिति के अध्यक्ष होंगे। जनगणना आयुक्त के अतिरिक्त 3 विशिष्ट विशेषज्ञ श्री दुर्गा शंकर मिश्रा सेवानिवृत्त IAS, श्री बालाजी श्रीवास्तव सेवानिवृत्त IPS और डॉक्टर शमिका रवि समिति के सदस्य होंगे और गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव भी समिति के सदस्य सचिव होंगे। ये समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। आवश्यकता पड़ने पर गृह मंत्रालय समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 15 अगस्त 2025 को घोषणा की थी उच्च स्तरीय कमेटी की, अब उसका गठन हो गया है और घुसपैठियों के बुरे दिन की शुरुआत भी इसी के साथ हो गई है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: भारत सरकार ने ये तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे और हमारी जनसांख्यिकी में अकृत्रिम बदलाव नहीं होने देंगे। ये जो जनसांख्यिकी का बदलाव करने का षड्यंत्र है, इसको सीमा सुरक्षा बल ने रोकना है। और आज मैं बड़ी शांति से, निश्चिंत मन से आपको कह रहा हूं कि अब त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए।
1: प्रफुल्ल जी, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि सीमावर्ती जिलों और देश के कुछ चुनिंदा महानगरों में अचानक आई इस जनसांख्यिकी बदलाव के संकेत जो मिल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को ये प्रभावित कर रहा है?
4: जी निश्चित, वैसे तो ये अचानक नहीं आया है, लेकिन समस्या के रूप में अचानक उसको अभी देखा जा रहा है। जैसे हमने हाल ही में देखा नोएडा में अचानक से एक इरप्शन हुआ मूवमेंट के रूप में, और बहुत सारे सोसाइटीज में, क्रिमिनल एक्टिविटीज में जब भी नाम आता था तो शुरू में इसके बारे में चर्चा जरूर होती थी लेकिन कोई एक्शन नहीं होता था। हमको ये ध्यान में रखना चाहिए, अभी IMDT एक्ट 1983 में बना, उस एक्ट का नाम ही था इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल। इसका मतलब पहली बार तो समस्या उस समय से शुरू कम से कम मानी गई कि इलीगल माइग्रेंट्स है। अब इसमें दो तरीके के अलग अलग थे, एक जो 1971 से पहले या 1971 के बाद, फिर 1990 के दशक में भी, 92 के बाद खास करके अयोध्या के आंदोलन के रिएक्शन में वहां पे जो मंदिर गिरा गया, और केवल हिंदू ही नहीं, हिंदू बुद्धिस्ट वहां की सो कॉल्ड जिनको हम माइनॉरिटीज बांग्लादेश के संदर्भ में कह सकते हैं, ऐसे लोग भारत में उनको शरण लेनी पड़ी, जिनके लिए CAA जैसा प्रावधान करना पड़ा। लेकिन दूसरा एक बहुत बड़ा वर्ग था जिसने इलीगल इमिग्रेंट्स की या इलीगल माइग्रेशन की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी इसके आधार पर खड़ी कर दी। प्रकाश सिंह जी ने जैसे बताया कुछ कारण तो पर्यावरणीय, कुछ कारण आर्थिक भी रहे होंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं आप यदि इंटरनेशनल इंडेक्स निकाल लो तो बहुत सारे पैरामीटर्स में असम के सीमावर्ती जिले या बंगाल के सीमावर्ती जिले उनकी तुलना में बांग्लादेश की इकोनॉमी उस समय बहुत अच्छा कर रही थी। तो ऐसे में उनको क्या माइग्रेट होने की जरूरत पड़ी? मुझे लगता है कि इसके पीछे आर्थिक और पर्यावरणीय एनवायरमेंटल कारणों की वजह से, क्योंकि कुछ हिस्से ऐसे हैं बांग्लादेश के जहां पे बाढ़ की स्थिति आती है और वहां से माइग्रेशन होता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे एक सोची समझी राजनीति थी, एक सोची समझी रणनीति भी थी। काउंटरफिट करेंसी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क, जब कालियाचक की पुलिस चौकी को जलाया गया था बंगाल में, तो उस समय उजागर हुआ था। ये साफ साफ दिखाता है, या इलीगल जो आर्म्स का ट्रेडिंग है उसका एक इम्पोर्टेंट रूट रहा है, ड्रग ट्रैफिकिंग का ये एक इम्पोर्टेंट रूट रहा है। यही रास्ता है जहां म्यांमार से बांग्लादेश में गए हुए रोहिंग्या रेफ्यूजीज भी सीधे आकर उसी रूट से कोई जम्मू कश्मीर तक, कोई हैदराबाद तक पहुंच गया। वो यदि रेफ्यूजी थे तो वो वहीं पे शरण ले सकते थे, उनको जम्मू कश्मीर तक जाने की क्या जरूरत थी? किसने पहुंचने के लिए उनको मदद की? उनके कार्ड्स भी बन जाते थे वहां, बॉर्डर क्रॉस करने से पहले उनको सारे आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट्स बनाने की प्रक्रिया एक चलाने का प्रयास शुरू हुआ, और उसके बहुत सारे नेटवर्क भी भारत के अन्य शहरों से एक्सपोज हुए। क्या हुआ दुर्भाग्य से, 1980 के बाद, मुझे याद है उस समय ममता बनर्जी का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट पार्लियामेंट में था 2005 में शायद, और उस समय वो लेफ्ट गवर्नमेंट को और बुद्धदेव भट्टाचार्य को घेर रही थी, और उस समय वो पूछ रही थी कि कब तक इन इलीगल माइग्रेंट्स को वोट बैंक बनाकर अपने लिए पोसोगे। दुर्भाग्य से वही ममता बनर्जी बाद में वही नीति आगे बढ़ाने लगी, तो सामाजिक ताना बाना बिगड़ता है, वहां की सांस्कृतिक स्थिति खराब होती है, वहां के रिसोर्सेस पर अतिरिक्त भार पैदा होता है, और ये इलीगल एक्टिविटीज को बढ़ावा भी मिलता है। तो एक समग्र दृष्टि से आंकड़े अलग अलग होंगे, क्वेश्चन ये है कि पहली बात किस कारण से इसको बढ़ावा मिला, दूसरा उसको रोकने की, तीसरा जो भारत में आ गए है उनको आइडेंटिफाई करने की। तो डिटेक्शन इज द फर्स्ट स्टेज, एक्सेप्टेंस एंड डिटेंशन जब तक डिटेक्ट नहीं होंगे उसके बाद तो बाकी सारी प्रोसेस आएंगी कि उनको वोटर्स लिस्ट से डिलीट करना है या डिपोर्ट करना है, ये तो बाद की स्टेज है। उनको वर्क परमिट्स भी दिए जा सकते हैं, लेकिन कम से कम आइडेंटिफाइड हो कि विदेशी मूल का नागरिक है, बिना पासपोर्ट के आया है और हमारे पास इसका एक ठोस डेटा है। और पूरे विश्व भर में ये होता है, उसमें भारत को अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हमने यदि बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये दो अलग अलग बॉर्डर्स पार्टीशन के बाद एक्सेप्ट किए हैं, तो वैश्विक नियमों के अनुसार उनको भारत में आना है तो वीजा लेकर ही आना चाहिए, लीगल तरीके से ही आना चाहिए, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन उसका रास्ता नहीं हो सकता। तो इसके नेटवर्क को डिसमेंटल करना, ये राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर भी एक महत्वपूर्ण विषय है, और मुझे लगता है आने वाले समय में ये जो समिति बनी है वो उस दिशा में एक साल के अंदर समग्र रिपोर्ट भी देगी और इसके आधार पर नीति भी बनेगी।
1: जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि शरणार्थी और घुसपैठियों को अलग अलग तरह से देखना चाहिए, क्योंकि दोनों के साथ अलग तरह की चुनौतियां हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
5: शरणार्थी और घुसपैठिया दोनों को एक पेज पर रखकर नहीं सोचना चाहिए। जो हमारे संविधान को जानते हैं, जो हमारे इतिहास को जानते हैं, हमारे देश की राजनीतिक इतिहास को जानते हैं, उन्होंने कम से कम ये गलती नहीं करनी चाहिए। हमारा संविधान बहुत स्पष्ट है, घुसपैठ कर आते हो, अलग अलग उद्देश्यों से आते हो, तो आपको जरूर घुसपैठी का लेबल लगेगा और वो लगाना चाहिए शासन में। फिर कुछ लोग दलील करते हैं कि अगर वो भारत में ही रहना चाहते हैं तो हम क्यों सीमित करते हैं, कुछ सीमित नहीं करते हैं, इसके लिए भी कानून है। किसी भी धर्म का व्यक्ति एप्लीकेशन करे और एप्लीकेशन करके वैध तरीके से पासपोर्ट लेकर वीजा लेकर आए, हम उनके क्रेडेंशियल देखकर उनको नागरिकता देंगे, ये रास्ता खुला ही है। मगर आप अवैध तरीके से घुसपैठ करोगे तो सीमाएं पोरस नहीं हो सकती, सीमाओं से घुसपैठ नहीं होनी चाहिए और उनको संभालना भी चाहिए।
1: प्रकाश जी, चूंकि इन चुनौतियों को आपने काफी करीब से देखा है और अक्सर देखा जाता है कि सीमा पार करने के बाद जो घुसपैठिए हैं वो स्थानीय आबादी में घुल मिल जाते हैं, सुरक्षा बलों और स्थानीय राज्य पुलिस या खुफिया एजेंसियों के बीच जो तालमेल है उसको आप कैसे देखते हैं इस समस्या के निराकरण में?
3: देखिए, तालमेल तो बहुत जरूरी है, पर मेरा अपना अनुभव यह है कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज है अगर वो डिटरमिन्ड है तो इसका बहुत तरह से उपाय है। मैंने एज IGBSF पंजाब कुछ ऐसा काम किया है जिसको 25 साल तक तो उसको गोपनीय रखा मैंने, उसके बाद उसकी किताब में मैंने खोल के रख दिया। बहुत सारे भारी बांग्लादेशी जो थे, भारी मुसलमान बांग्लादेश से चलते थे और वो पंजाब में आ जाते थे और पंजाब में गुरुद्वारों में लंगर खाते थे, फिर जब उनको मौका मिला तो बॉर्डर पार करते थे। अब मेरे जाने के पहले BSF क्या करती थी, उसको बॉर्डर पे रोकती थी, उनको पंजाब पुलिस को हैंडओवर करती थी, पंजाब पुलिस 2-4 दिन रखते थे, उसके बाद कहते थे हम आतंकवाद से लड़ें कि इनको कलकत्ते पहुंचाएं, ये छोड़ दो इनको, फिर थोड़े दिन बाद फिर वो वापस जा रहे हैं। तो मैंने अपने जिम्मेदारी पे बिना किसी होम मिनिस्ट्री के सैंक्शन के चिदम्बरम साहब से जब मैंने पूछा तो उनका यू विल बी डूइंग दिस एट योर ओन रिस्क, आई कैन नॉट परमिट दैट ऑफिशियली। मैंने अपने कहा जितने लोग हैं इनको अपने BSF के कैंप्स में रात भर रखो और जब अंधेरी रात हो तो इनको सीमा से पार से इनको पाकिस्तान भेज दो। मैंने कम से कम 25-30 हजार आदमी तो भेज दिए। इसका उपाय हर आदमी अपने लेवल पे काम कर सकता है। मैंने पर इसका ढिंढोरा नहीं पीटा, कोई इनाम नहीं मांगा, इसका ढोल नहीं बजाया, चुपचाप ये काम हो गया। फिर 25 साल बाद मैंने कहा कि मैंने इस तरह का काम मैंने किया था। पर यह है कि अभी भी इस समस्या का देखिए कुछ निदान हमें ढूंढना पड़ेगा। कुछ सुझाव तो गोडबोले साहब ने अपने कमेटी की रिपोर्ट में दे रखा है, मैं कहूंगा कि उस रिपोर्ट को फिर से अध्ययन किया जाए सरकार द्वारा, और जिन समस्याओं के लिए ये डेमोग्राफी कमीशन बन रहा है उन समस्याओं पे गोडबोले साहब ने बहुत गहन चिंतन किया है। इसके अलावा देखिए अभी जैसे प्रफुल्ल जी ने कहा उनको हमें डिटेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करके उसके बाद उनको डिपोर्ट करना है। अब डिपोर्टेशन में दिक्कत आ सकती है, बांग्लादेश उसको नहीं मानेगा तो उसका क्या करना होगा ये हमें बाद में देखेंगे। पर अगर मान लीजिए एक संख्या कोई आपने रखी है जो होल्डिंग सेंटर्स बनाए हैं, उनको कहिए कि भाई अगर तुम हिंदुस्तान में रहना है तो हम तुम्हें रहने देंगे, पर तुम्हें अपना सिटीजनशिप कार्ड या आधार कार्ड तो सरेंडर करना पड़ेगा और तुम्हें एक बांग्लादेश का एक कार्ड दिया जाएगा कि तुम बांग्लादेश के नागरिक हो, इस देश में तुम्हें 2 साल रहने की और काम करने की इजाजत दी जाती है, 2 साल बाद फिर हम इसको रिव्यू करेंगे कि तुम्हारा क्या किया जाए। और पर इन आदमियों को जिनको ये बांग्लादेश का कार्ड दिया जाता है ये हमारे आई कार्ड से रंग में फर्क होना चाहिए, केवल कार्ड को देखकर ही मालूम हो जाए कि ये बांग्लादेश का ये आदमी, और इस आदमी को 2 कंडीशन होनी चाहिए कि तुम हिंदुस्तान में रह सकते हो और अपनी जीविका उपार्जन कर सकते हो परंतु तुम वोट नहीं दे सकते और कोई अचल संपत्ति नहीं खरीद सकते। ये 2 कंडीशन उस पर इम्पोज की जाए और उसको सख्ती से लागू किया जाए कि मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीदोगे और तुम्हारा नाम इलेक्टोरल लिस्ट में नहीं होगा। तो इसमें हमें थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन भी रखना पड़ेगा और कालांतर में मैं कहता हूँ कि इस पे हमें बांग्लादेश से सख्ती से कहना पड़ेगा, देखिए आपके अभी भी हमारे पास 2.5 करोड़ जितना भारत सरकार का आकलन हो इतने आदमी है, या तो आप इन्हें वापस लीजिए या इसके बदले में हमें जमीन दीजिए, और वो जमीन हम मांगे ठीक चिकन नेक के अगल बगल रंगपुर डिवीजन में मांगे, हमारा चिकन नेक की समस्या भी हल हो जाएगी और इन आदमियों को हम वहां बसाएं या जहां भी बसाएं, पर हम कहीं इतने आदमियों को रहने के लिए इतने वर्ग फुट हमें जमीन चाहिए, इतनी जमीन आपको देना पड़ेगा, बस सख्ती तो करनी पड़ेगी, या तो इनको वापस लो, तो एक स्ट्रिक्ट लाइन ऑफ एक्शन लेना पड़ेगा हमें और उसकी भी शायद नौबत कालांतर में आएगी। पर यह है कि इस समस्या का हमें निदान ढूंढना है वरना ये तो हमारे ऊपर बोझ है आज की तारीख में।
1: जी प्रफुल्ल सर, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो अवैध रूप से जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं जब स्थानीय श्रम बाजार यानी लेबर मार्केट में शामिल होते हैं तो रोजगार, सब्सिडी, राशन और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे सीमित सरकारी संसाधनों पर इसका जो असर पड़ रहा है वो एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए चुनौती है और वो कितनी गंभीर समस्या बनते जा रही है भारत जैसे देश में जहाँ की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है।
4: देखिए आज की भाषा में जैसे कहा जाता है कि डेमोग्राफी इज डेस्टिनी, और डेमोग्राफी इज डेस्टिनी ये मोर रिलेवेंट हो जाता है जब आपकी डेमोक्रेसी हो, क्योंकि उस डेमोक्रेसी में आपको सरकार चुनने का भी अधिकार मिल जाता है और उस सरकार से दिए हुए योजनाओं का लाभ लेने का भी। मैं उस पर आऊंगा लेकिन उससे पहले और एक बिंदु मैं श्रोताओं के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूँ।
1: जी
4: 1983 में जो IMDT एक्ट बना, जनरल सिन्हा की रिपोर्ट ने उस पर बहुत डिटेल में ये दिया था और वेंकैया नायडू उस समय मंत्री थे, मुझे स्मरण है शायद ठीक बता रहा हूँ, तो उन्होंने पार्लियामेंट में उसको लेकर स्टेटमेंट भी दिया था, गोडबोले कमेटी ने भी उसका रेफरेंस लिया था। IMDT एक्ट ने एक बहुत बड़ा लूपहोल था। IMDT एक्ट में जो इलीगल व्यक्ति जो आया है वहां से उसको अपनी नागरिकता प्रूव करने का कोई भी बंधन नहीं था। जो कंप्लेन उसके विरोध में करेगा कि ये बाहर से आया हुआ है और ये भारत का नागरिक नहीं है, उस पर ओनस था कि वो ये प्रूव करे कि ये भारत का नहीं है। और ऐसे में भारत में स्वाभाविक रूप से मानसिकता होती है और इसने भारत में कॉम्पिटिटिव वोट बैंक पॉलिटिक्स को जन्म दिया। शायद मुझे पता नहीं है जानबूझकर रखा गया था उस समय का उसका क्या लॉजिक था, क्या कारण थे, लेकिन इसने इस समस्या को बढ़ाया। अब आपने जो पूछा कि सरकार की योजनाएं हो, चाहे वो खाद्यान्न से जुड़ी हुई हो या अन्य योजनाओं का लाभ हो, इन सबके लिए अल्टीमेटली बेनिफिशियरी कौन होता है, जिसका हक ये मारते हैं? भारत का जो गरीब तबका है उसके अधिकारों का, उनके रिसोर्सेस का एक तरीके से ये इलीगल माइग्रेंट जो है, जो रोजगार के नाम पर या अन्य किसी नाम पर आते हैं, मैं नहीं मानता रोजगार पर, भारत के लोग नहीं जाते क्या रोजगार के लिए बाहर? लेकिन क्या वो इलीगल बाउंड्री क्रॉस करके जाते हैं? बाउंड्री क्रॉस करके जाते तो भी भारत उनको स्वीकार करता है? ऐसी कुछ घटनाएं बाहर के देशों में हुई तो हमने कहा कि भाई हम उनको कोई भारत बढ़ावा नहीं देता है। तो हमको वही नीति हमारे पड़ोसी देशों के बारे में या भारत और नेपाल के बीच में बहुत सारे लोग आते जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक प्रावधान बना हुआ है, एक आई कार्ड दिखाकर वो आते हैं, वर्क परमिट के नाते यहाँ पे रहते भी है। तो मुझे लगता है इसका जो परिणाम होता है वो स्थानिक संसाधनों पर होता है, सरकारी योजनाओं के लाभ लेने के कारण होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर होता है, और खास करके असम में जो समस्या आई स्थानिक संस्कृति, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे जंगलों के, और अभी पूर्वोत्तर के बहुत राज्यों में ही आ रहा है जहां पे भारत के सामान्य व्यक्ति को भी जाने के लिए एक परमिट लेना पड़ता है, इनर लाइन परमिट जिसको कहते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां पर आकर बैठ गए हैं, वहां के जंगल संसाधनों का नुकसान कर रहे हैं। तो ये हमारा मल्टीपल रिसोर्सेस का एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन भी है, उन पर स्ट्रेन भी है। तो मुझे लगता है कि ये

0: हुए लोग देश की समस्या के साथ साथ असम के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
1: आई थिंक चैलेंज हैज बिकम मोर ग्रेव, द डेमोग्राफिक पैटर्न इज चेंजिंग फास्ट। टुडे ऑलमोस्ट 40% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन विल बी फ्रॉम दोज हु हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। लीगलिटीज अपार्ट, Today, Assamese is marginalized in our own land. Our culture is marginalized in our own land. Economy is fast shifting to those people who were never associated with our culture and with our history. So the silence continue. But one good thing is that there is a collective spirit today to face the silence. And I am sure that our new generation will fight, will keep on fighting and God will bless us, we'll survive.
0: प्रफुल्ल जी, आप बहुत समय से भारत के अलग अलग विषयों पर पैनी नजर रखते हैं। ये जो समिति बनी है और प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले के प्राचीर से इसकी घोषणा की थी, क्या लगता है कि इस समिति के बनने से क्या कुछ बदलने वाला है निकट भविष्य में?
2: देखिए, मुझे इसमें सबसे बड़ा जो बदलाव लग रहा है बंगाल के चुनाव के बाद, मुझे लगता है एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन से भी ज्यादा इसमें अलग अलग स्टेट्स की कोऑर्डिनेशन की बड़ी समस्या रहती थी। बांग्लादेश से एंटर कर रहे हैं असम में जा रहे हैं, असम से एंटर कर रहे हैं बिहार तक पहुंच रहे हैं या झारखंड तक पहुंच रहे हैं, और ऐसे में फिर एक राज्य दूसरे राज्य पर ये चीज झकेल देता था कि ये तो हमारी समस्या नहीं है, ये तो आपको रोकना है, और फिर ये वहां का राज्य ये केंद्र पर कि ये तो आपको बीएसएफ के लेवल पर हैंडल करना चाहिए, लेकिन बॉर्डर की जो लैंड है वो पोरस रखेंगे, उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे बीएसएफ को। तो ये सारा कॉम्प्लेक्स सिनारियो था। आज अभी राजनीतिक स्तर पर मुझे लगता है प्रधानमंत्री ये निर्णय ले पाए, उसमें एक महत्वपूर्ण कारण आज ये है कि इस सीमावर्ती क्षेत्र में झारखंड छोड़कर लगभग सारे हिस्सों में सत्ताधारी दल एक ही है, और या वो एनडीए का हिस्सा है या भाजपा से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में ये समन्वय ऐसे ही हुआ था। नक्सलवादी समस्या के बारे में तुरंत बॉर्डर क्रॉस करके चले जाते थे, और फिर छत्तीसगढ़ का ये कहता था नहीं मध्य प्रदेश की समस्या है, मध्य प्रदेश वाला कहता था तो उसने क्राइम तो हमारे यहाँ पे नहीं किया है, वो तो महाराष्ट्र भाग गया है। तो ऐसे में पहली मीटिंग जब की थी गृहमंत्री, मुझे याद है चारों राज्यों के गृहमंत्री और डीजीपीस को लेकर मीटिंग की थी। अब ये समन्वय संभव हो पाएगा केंद्र सरकार ने जब ये समिति बनाई है, तो मुझे लगता है समिति एक तो इसका समग्रता से अध्ययन करेगी, पिछले रिपोर्ट्स के आधार पर इसका एक जिसको हम कह सकते हैं क्लियर पिक्चर इसके कारण सामने आएगा। दूसरा, मुझे लगता है कि इसके समस्या के निराकरण के लिए भी नीतिगत सीधा सीधा एक मुझे लगता है कि क्लियर कट पिक्चर सरकार के सामने भी आएगा कि नीतिगत विषय में इसको आगे कैसे बढ़ाना है, और समन्वय के नाते कौन कौन सी एजेंसीज की क्या क्या भूमिका रहेगी, ये भी स्पष्टता इस समिति के गठन के कारण आने की संभावना है। तो आने वाले जैसे शब्द तीन चले, डिटेक्ट डिलीट एंड डिपोर्ट, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम डिटेक्शन और आने वाले कालखंड में इसको फिर से और आगे ना बढ़े, ये इलीगल माइग्रेशन ना बढ़े, जो है उनको डिटेक्ट करके क्या करना है वो तो है ही, लेकिन वो ना बढ़े इसके लिए क्या हो, इसके लिए निश्चित रूप से हमको एक नीतिगत दिशा मिलने की संभावना इस समिति से बनेगी, यह मेरा विश्वास है।
0: जी हाँ, बिल्कुल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल अगर होगा तो इस चुनौती से पार पाया जा सकता है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
3: सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा कर हम देश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते, हमने क्षेत्रीय सुरक्षा का राज्य सरकारों के साथ रहकर चिंता भी करना पड़ेगा और वो जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि सीमा से नजदीक 50 किलोमीटर के किसी भी गांव में कोई अवैध निर्माण होता है तो हम सिविल प्रशासन को सूचित कर, कलेक्टर को सूचित करें, एसपी को सूचित करें। हमारी जिम्मेदारी है कि 50 किलोमीटर की बॉर्डर तक के सभी गांवों में जनसांख्यिकी का परिवर्तन हो रहा है, कृत्रिम परिवर्तन हो रहा है, तो उसके प्रति सजग रहकर राज्य सरकार को आगाह करें।
0: प्रकाश जी, एक और सवाल आपसे समझना चाहेंगे कि 2014 के बाद इस समस्या को लेकर वर्तमान केंद्र सरकार ने बहुत सारी कोशिशें की हैं और उसी दिशा में इस समिति का गठन भी है, कैसे देखते हैं पिछले 12 वर्षों के मौजूदा सरकार के प्रयासों को घुसपैठियों और ये जो डेमोग्राफिकल चेंज है इससे पार पाने की दिशा में?
4: देखिए, समस्या की गंभीरता को समझा गया है, उसको स्वीकारा गया है और उसके निदान के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं, ये तो यहाँ तक तो सार्थक है। अब हमें अपनी लॉ एनफोर्समेंट मशीनरी से ये काम लेना पड़ेगा, और ये काम मतलब वर्तमान सरकार लेने में सक्षम है। उन्होंने नक्सलियों को कहा कि हम

0: से 2026 तक खत्म कर दें, उन्होंने खत्म कर दिया। ठीक है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस समस्या के लिए भी उनको कुछ टारगेट रखना पड़ेगा और इसकी मंथली ईयरली या क्वार्टरली कुछ चीज की मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। हम पहले ये एस्टिमेट बनाए कि हर स्टेट में कितने कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उसके बाद हर स्टेट पे कहें कि इस महीने में आपने इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की, इनको कितने को डिटेक्ट किया, कितने होल्डिंग सेंटर में है, किनको डिपोर्ट करने के लिए क्या कार्रवाई की, इसका रेगुलर मॉनिटरिंग होनी पड़ेगी। इसमें सख्ती बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ कि वर्तमान सरकार करने में सक्षम है, इन्होंने नक्सल समस्या पे विजय पा ली है, तो इस समस्या का भी ये समाधान प्रभावी ढंग से ढूंढ सकते हैं। इसके लिए सख्ती करनी पड़ेगी और मैं समझता हूँ कि सरकार ये सख्ती कर सकती है।
1: प्रफुल्ल जी, कार्यक्रम के अंत में एक और सवाल बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे कि आज के दौर में जब सोशल मीडिया का जमाना है, तो सोशल मीडिया और फेक डॉक्यूमेंट नेटवर्क, आपको क्या लगता है ये घुसपैठ को बढ़ाने में कितनी भूमिका निभा रहे हैं?
2: देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि इसके जुड़ी हुई एक इकोनॉमी है। ये केवल फेक डॉक्यूमेंट नेटवर्क नहीं है, ये फेक करेंसी नेटवर्क है, ये ड्रग ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है, इसमें आर्म्स के ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है और एक क्रिमिनल सिंडिकेट के रूप में ये काम करता है। तो मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से जिम्मेदार है और आज के जमाने में सोशल मीडिया इसको एम्पलीफाई करता है ह्यूमैनिटेरियन के नाम पर। जैसे ही ऐसी कुछ केसेस होती है, डिपोर्टेशन के लिए कुछ बात बढ़ती है, तो सोशल मीडिया में एक्टिविज्म चलता है, राजनीतिक कारणों से भी चलता है, कुछ धार्मिक कारणों से भी चलता है, कुछ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरसीज के द्वारा भी चलता है। तो ऐसे में एक बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी देश के लिए किसी भी इलीगल माइग्रेंट्स के विरोध में सख्त कदम लेना। और आज जब टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग एक अच्छा उपयोग हो सकता है गवर्नेंस में आइडेंटिफाई करने के लिए, चाहे सीसीटीवी कैमरेज के रूप में, चाहे सेंसर्स के रूप में, हम बहुत सारी चीजों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये सिंडिकेट्स डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मुझे लगता है कि जब अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज के बारे में सोचा जाएगा, तो इसके टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, मीडिया एक्टिविज्म के एस्पेक्ट्स और अन्य जो इससे जुड़े हुए सिंडिकेट और क्रिमिनल एस्पेक्ट्स है, इस पर भी मुझे लगता है ये समिति सोचेगी भी और उस पर कुछ उपाय योजना भी सरकार को बताएगी।
1: सीमाओं की सुरक्षा सिर्फ जवानों की जिम्मेदारी नहीं होती, ये पूरे राष्ट्र की सामूहिक चेतना का विषय है। जनसंख्या परिवर्तन और अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दे केवल आंकड़ों की बहस नहीं है, इनका सीधा संबंध देश की सामाजिक स्थिरता, आर्थिक संसाधनों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से है। आज की चर्चा ने यह साफ कर दिया है कि चुनौती केवल सीमा पार से आने वालों की नहीं, बल्कि उस सोच की भी है जो राष्ट्रीय हित से ऊपर व्यक्तिगत और राजनीतिक लाभ को रख देती है। जरूरत है सजग नीति की, मजबूत सीमा प्रबंधन की और सबसे बढ़कर जागरूक समाज की। प्रफुल्ल केतकर जी आपका, प्रकाश सिंह जी आपका, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: चर्चा का विषय है।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है नाटक उपेक्षित, जिसके लेखक हैं घनश्याम सिंह तोमर और प्रस्तुत करता है जितेंद्र स्वरूप राजन।
1: प्रस्तुत है वृद्ध जनों की रहन सहन की समस्या पर केंद्रित नाटक उपेक्षित, लेखक घनश्याम सिंह तोमर, प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन।

0: महेश, जरा देखो तो कौन साहब हैं।
1: जी मालिक।
2: क्या प्रसाद साहब हैं?
1: जी हाँ, अंदर हैं।
2: उनसे बोलो जोशी जी आए हैं।
1: मालिक, कौनो जोशी जी आए हैं?
0: भाई उन्हें ड्राइंग रूम में बैठा दो, मैं अभी आता हूँ।
1: जी आप बैठिए, मालिक अभी आते हैं।
0: नमस्कार जोशी जी।
2: नमस्कार, नमस्कार। अरे प्रसाद जी, आप तो बहुत कमजोर दिख रहे हैं, ये क्या हालत बना ली है आपने?
0: शारदा के जाने के बाद अब किसी भी काम में मन नहीं लगता।
2: ओहो,
0: ना तो कोई बात अच्छी लगती है, ना ही कुछ करने का मन होता है।
2: सही।
0: सच पूछिए तो अब जीवन में इतनी रिक्तता आ गई है कि जीने का मन ही नहीं करता। शारदा के देहांत के बाद बच्चे और बहुएं आई थी।
2: अच्छा।
0: कुछ दिन उनके रहने से मन बहला रहा।
2: हाँ हाँ।
0: अब सब चले गए तो घर काटने को दौड़ता है। ऐसा लगता है कि अब जीने का कोई उद्देश्य ही नहीं रह गया है।
2: क्या बात करते हैं प्रसाद जी, आप जैसा बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार की बात करे तो आश्चर्य होता है। मेरे विचार में पहले तो आप कुछ दिन अपने बच्चों के यहाँ हो आइए। 3 बच्चे हैं आपके, बहू और बेटों में आपका मन बहल जाएगा, पोते पोतियों की देखभाल करने में समय गुजरेगा। प्रसाद जी, बच्चे कहाँ कहाँ हैं आपके?
0: बड़ा शैलेंद्र जो है वो खंडवा में है।
2: अच्छा।
0: दूसरा पटना में।
2: हम्म।
0: और तीसरा धर्मेंद्र जबलपुर में।
2: बिल्कुल।
0: प्रोफेसर है।
2: तो अब आप अपना कार्यक्रम बना लीजिए और उस पर अमल कर डालिए।
0: ऐसा ही करूंगा, करना ही पड़ेगा, घर छोड़ने का मन बनाना ही पड़ेगा। इस घर से बहुत सी यादें जुड़ी हैं, उन्हें भुलाना ही पड़ेगा।
2: देखिए प्रसाद जी, भावुकता एक सीमा तक तो ठीक होती है, किंतु उस सीमा के बाद तो वो एक अभिशाप बन जाती है, जिसके नतीजे में आदमी को कष्ट उठाना पड़ता है, वही कष्ट जो आप अब उठा रहे हैं।
0: आपका कहना कुछ हद ठीक है, लेकिन स्वभाव और प्रवृत्ति को बदलना आसान नहीं होता। अच्छा आप बताइए, ठंडा लेंगे या गरम? बातों में ये सब भूल ही गया था।
2: प्रसाद जी
0: क्षमा करिए,
2: अतिथि से पूछा नहीं जाता, जो अच्छा हो मंगवा लीजिए। मैं भी कॉलेज से चला आ रहा हूँ, सोचा रास्ते में आपसे मिलता चलूँ, बहुत दिनों से आपसे भेंट नहीं हुई थी।
0: अच्छा हुआ आप आ गए, आप जैसे मित्रों के मिलने से बड़ा बल मिलता है।
1: मालिक ये लीजिए।
0: हाँ, हाँ रखो रखो,
1: यहाँ रख दें।
0: हाँ लीजिए, जलपान कीजिए।
2: ये नाश्ता शायद महेश ने बनाया है।
0: अब तो महेश ही ये सब घर संभाल रहा है।
2: ये आपके यहाँ कब से काम कर रहा है?
0: यही कोई 2-3 महीने से।
2: क्या इसके बारे में आपको पूरी जानकारी है?
0: क्या मतलब?
2: यही कि आप जानते हैं ये कौन है, कहाँ का रहने वाला है, इसका और कौन कौन है, पहले क्या करता था, अगर पहले कहीं और काम करता था तो काम छोड़ने की वजह क्या है।
0: क्या ये सब जानने की जरूरत है? क्या
2: है जरूरत है? इस घर में आप अकेले रहते हैं, ऐसे में कोई भी कुछ कर सकता है, आपको सावधान रहना चाहिए।
0: सावधान रहने के लिए अब रही क्या?
2: आहा, फिर वही बात निराशा की। प्रसाद जी, मैं मानता हूँ आपको भाभी के देहांत से बहुत बड़ा आघात पहुँचा है, परंतु
0: किंतु परंतु कुछ नहीं जोशी जी, अब तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ समाप्त।
2: नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपको बहुत कुछ करना है, अपने पोते पोतियों के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए। आप जैसे बुद्धिजीवी यदि जीवन के अंधेरे पहलू को लेकर मौन साध लें, निष्क्रिय हो जाएं, तो भविष्य अंधकार

0: में हो जाएगा। आने वाली पीढ़ी किसके अनुभवों और मार्गदर्शन का सहारा लेगी, बताइए? ईश्वर ने हमें मनुष्य यौनी इसलिए तो नहीं दी कि हम उसे व्यर्थ गंवा दें? निराशा छोड़िए, विवेक को जगाइए, कुछ कीजिए जिससे मानवता और देश का भला हो। आपसे बहुत सी आशाएं हैं।
1: क्या ये जरूरी है कि मैं इसके बारे में मालूमत की जाए?
0: जी हाँ, यह आवश्यक है। सरकार ने भी इस बारे में सजग रहने की आवश्यकता पर जोर दिया है। किसी को भी नौकर रखने पर उसके बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी है। मुझे उसका पता दीजिए। मेरे एक मित्र मिस्टर पेंगे पुलिस अधिकारी हैं, वो इसके बारे में पूरी मालूमात करवा लेंगे।
1: अगर ये इतना ज़रूरी है तो पता मैं दिए देता हूँ। ये लीजिए।
0: लाइए। धन्यवाद। अच्छा, अब जाने की इजाज़त दीजिए।
1: अच्छी बात है, फिर कब आ रहे हैं?
0: जल्दी आऊँगा। इस बीच आप अपने बच्चों के पास जाने का प्रोग्राम बना लें और मुझे बताएं।
1: बना लूँगा और आपको सूचना भी दे दूँगा।
0: आप मुझे फ़ोन पर बता दें, मैं उसी दिन आ जाऊँगा। अच्छा, नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हेलो प्रसाद जी, हाँ हाँ मैं जोशी बोल रहा हूँ जी। नमस्कार, कुछ प्रोग्राम बनाया आपने जी? हाँ हाँ हाँ, अरे बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो शाम को तो आप घर ही पर भी रहेंगे ना? जी हाँ, मैं आ जाऊँगा। मैंने भी अपने जाने का प्रोग्राम बना लिया है, कुछ दिन मैं भी अपने बच्चों के साथ जाकर रहूँगा। अच्छा बाय।
1: जोशी जी आ जाइए, दरवाजा खुला है।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार, आइए तो, बैठिए।
0: तो आपने बच्चों के पास जाने का मन बना लिया?
1: जी हाँ, अब आपकी सलाह पर कुछ न कुछ तो करना ही था। लेकिन एक बात की चिंता है।
0: क्या?
1: इतना बड़ा घर सुना छोड़कर कैसे चला जाऊं?
0: अरे महेश के भरोसे, मैंने उसके बारे में पूरा पता लगा लिया है। वो मंदसौर का रहने वाला है, ईमानदार और सीधा सच्चा आदमी है, उस पर भरोसा किया जा सकता है। वो और उसका परिवार वहाँ सिलेट कारखाने में काम करते थे। उसके बच्चे की मृत्यु हो जाने के बाद वो मंदसौर से यहाँ चला आया। पहले एक होटल में काम करता था, लेकिन होटल का वातावरण उसे रास नहीं आया, इसलिए उसने होटल का काम छोड़ दिया। आपने उसको नौकर रख लिया, अब यही काम कर रहा है।
1: ठीक है, अब ये जिम्मेदारी सौंप कर एक और परीक्षा से गुजरना पड़ेगा।
0: वैसे जोखिम की चीजें आप बैंक के लाकर में रख दें, घर में कमरे में लॉक लगा दें, एक कमरा उसके लिए छोड़ दें। मैं समझता हूँ महेश आपको धोखा नहीं देगा।
1: ठीक है, मैं दो एक दिन में ही जाने का सोच रहा हूँ।
0: इस यात्रा से आपको कुछ ताजगी मिलेगी और फिर आप हवा भी बदल जाएगी। स्थान बदलने से आपका मानसिक तनाव भी कम हो जाएगा।
1: जोशी जी, जहाँ तक वातावरण का सवाल है, वातावरण तो सब जगह एक सा है। वही तनाव, वही घुटन, वही जिंदगी, पैसे के लिए दौड़ धूप, कुछ और अच्छा पाने की लालसा। हाँ, आबो हवा जरूर बदल जाएगी, जिसका असर स्वभाव और स्वास्थ्य पर पड़ सकता है।
0: जी हाँ, मेरा मतलब वातावरण से जलवायु बदलने का ही था। आपने शब्द पकड़ लिया और अपने बौद्धिक होने का सबूत दे ही दिया। इन दिनों

0: कुछ लिखा हो तो सुनाइए।
1: लिखा तो है, अब खाली समय में यही काम रह गया है। शारदा थी तो उनसे बातचीत में समय कट जाता था। अब तो केवल पढ़ना और लिखना ही रह गया है। जो कुछ लिखा है उसे फिर आप निराशावादी लेखन कहने लगेंगे।
0: फिर भी सुनाइए तो।
1: लिखा तो बहुत कुछ है पर सुनाने का मन नहीं होता, इसलिए कि मैं तो दुखी हूँ ही। दूसरों को उसे सुनाकर दुखी क्यों करूँ।
0: फिर वही बात प्रसाद जी, आप सुनाइए। यदि मनुष्य को दुख का अनुभव नहीं हो तो वह सुख के स्वरूप की न तो कल्पना कर सकता है और न उसे भोग सकता है। कठिन परिस्थितियों से गुजरने के बाद ही हमें सहज और सरल स्थिति में जो खुशी आनंद मिलता है उसका उपयोग हम ज़्यादा मज़ा लेकर करते हैं। आपने जो भी लिखा है सुनाइए, वो ज़रूर सार्थक होगा।
1: अब आपका आग्रह है तो कुछ सुनाई देता हूँ।
0: हाँ ज़रूर
1: सुनिए
0: जी।
1: याद दुख की तो दुख देती है।
0: याद दुख की तो दुख देती है, वाह।
1: याद दुख की तो दुख देती है।
0: हाँ हाँ।
1: याद सुख की भी दुख देती है।
0: हाँ, क्या बात है, क्या बात है, वाह।
1: कितनी अच्छी ये बात हो जाती।
0: हाँ।
1: काश के याददाश्त खो जाती।
0: वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब। आपने अपनी बात बड़े ढंग से कही है, हालांकि आपकी निजी अनुभूति है, किंतु इसमें एक दर्शन भी है, एक वास्तविकता है, हकीकत जिसे नकारा नहीं जा सकता। हाँ कुछ और सुनाइए।
1: जोशी जी
0: जी,
1: कुछ पंक्तियां और हैं। जिंदगी एक हसी परिंदा है।
0: हाँ, जिंदगी एक हसी परिंदा है, वाह।
1: जिंदगी
0: एक हसी परिंदा है।
1: एक हसी परिंदा है। समय की शाख पर नजाकत से
0: हाँ
1: रुक के कुछ देर चहचहाता है।
0: क्या बात है,
1: झूलती शाख छोड़
0: क्या। वाह वाह वाह वाह वाह वाह, जिंदगी और उसके बाद उसके वजूद के आभास की इससे और अच्छी तस्वीर शब्दों में नहीं पेश की जा सकती। भाई प्रसाद जी, मान गए, आपके कलम में बहुत जोर है, बड़ी ताकत है।
1: जोशी जी, मैं अगर गलत नहीं सोचता तो हमारे बाद हमारे निशान ही हमारी पहचान बताते हैं।
0: बेशक बेशक प्रसाद जी, तो आप कल जा रहे हैं?
1: हाँ, मैंने अपने पहुंचने का तार भी दे दिया है।
0: जाइए, आपकी यात्रा शुभ हो। अच्छा, मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: आपकी यात्रा भी शुभ हो। नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हाँ बच्चों, अब जरा फिर से करके दिखाओ। अरे आप, इतनी जल्दी? क्या ऑफिस से छुट्टी हो गई?
1: अरे नहीं भारती, मुझे जल्दी आना पड़ा।
0: सब कुशल तो है? आपकी तबीयत तो ठीक है?
1: हाँ तबीयत भी ठीक है।
0: ओहो, तो फिर क्या बात है?
1: अरे पहले अपना डांस क्लास बंद करो, फिर बतलाता हूँ।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, बच्चों आप लोग आज जाइए, हाँ कल जल्दी आ जाना। हाँ आप बताइए क्या बात है?
1: वो बाबूजी का तार आया है।
0: सब ठीक तो है? अरे अभी तो मम्मी का आघात ही नहीं भूले हैं हम लोग।
1: शुभ शुभ बोलो मालती, बाबूजी अभी आ रहे हैं, मैंने सोचा तुमको पहले बता दूं और उसके बाद उनको लेने स्टेशन चला जाऊं।
0: ओहो, फिर मेरी डांस क्लास का क्या होगा? और फिर उनके ठहराने के लिए भी तो
1: उन्हें बच्चों वाले कमरे में ठहरा देंगे।
0: और फिर बच्चे?
1: वो कुछ दिन जब तक बाबूजी रहेंगे अपने कमरे में रह लेंगे।
0: ओहो, उनकी पढ़ाई का क्या होगा?
1: ओफो, वो भी अपने कमरे में उन्हें करना पड़ेगी। ऐसा करो, डांस क्लास की कुछ दिन छुट्टी कर दो और बच्चों का सामान अपने कमरे में शिफ्ट कर दो।
0: आप भी कमाल करते हैं। अरे डांस क्लास बंद कर देने से उतने दिन के पैसे नहीं काट लेंगे वो लोग?
1: अब क्या किया जा सकता है, यही करना पड़ेगा।
0: ओहो, अब देखो बच्चों को भी कितनी तकलीफ हो जाएगी ना।
1: भाई वो तकलीफ तो उठानी ही पड़ेगी।
0: लेकिन अब ये कब तक?
1: ओफो, वो 2-4 दिन रहकर चले जाएंगे, तब तक तो हम ये सब कर सकते हैं ना। जल्दी करो, वक्त इन सब बातों का नहीं है, गाड़ी का समय हो रहा है, मुझे स्टेशन जाना है।
2: ये बाबा आ रहे हैं।
3: बाबा आ रहे हैं, ये
2: वो हमें कितना प्यार करते हैं ना।
3: वे हमें अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए भी ला कर देते हैं, याद है जब हम भोपाल गए थे?
2: हाँ याद है, जब बेचारी दादी नहीं रही।
0: अरे चुप रहो तुम लोग, तुम्हें कुछ मालूम भी है उनके आने से हम लोगों को कितनी तकलीफ हो जाएगी?
2: क्यों मम्मी?
0: क्योंकि बाबूजी जो है ना, वो तुम्हारे कमरे में रहेंगे और तुम दोनों को हम लोगों के कमरे में आना पड़ेगा, वहीं पढ़ना और वहीं सोना, समझे?
1: अरे अब ये सब बातें बंद करो और कमरा ठीक कर दो, मैं स्टेशन जाता हूँ।
0: ठीक है।
4: अरे भाई हनी, आशु कहाँ हो?
0: ओहो, लगता है बाबूजी आ ही गए।
1: बाबूजी मैं स्टेशन आ ही रहा था, तार अभी अभी मिला है।
4: हाँ बेटे, तार चलने के पहले ही दे दिया था।
2: बाबा आप आ गए,
3: हम आप ही का रास्ता देख रहे थे।
4: अच्छा, और क्या सोच रहे थे?
3: और बाबा, और हम सोच रहे थे कि आप हमारे लिए जरूर कुछ लाएंगे।
2: और बाबा मेरे लिए भी।
0: अरे अब बाबा को बैठने तो दो, जरा चैन तो लेने दो, हटो तुम दोनों, जरा बाबूजी के चरण स्पर्श तो कर लूं।
4: सौभाग्यवती रहो, खूब फलो फूलो।
0: बाबूजी अब आप हाथ मुंह धो लीजिए।
4: हाँ बेटी, बाथरूम में पानी तो होगा?
0: हाँ बाबूजी, हाथ मुंह धोने लायक तो मिल ही जाएगा, आज जरा नल जल्दी चले गए थे ना, इसलिए पानी की कुछ कमी है। और वैसे भी यहाँ तो अक्सर नल थोड़े से समय के लिए आते हैं, इसलिए पानी की कमी तो बनी ही रहती है बाबूजी। इस शहर में तो बस कभी पानी की कमी तो कभी बिजली नदारत तो कभी गैस की शॉर्टेज, एक ना एक मुसीबत तो झेलनी ही पड़ती है। और कभी कभी तो बाबूजी गैस नहीं होने से खाना बाहर से लाकर खाना पड़ता है, बड़ी मुसीबत है यहाँ तो।
4: बेटी हमें संतोष तब मिलता है जब हम अपने से नीचे के वर्ग को देखें, फिर मन करता है कि ईश्वर को धन्यवाद दें कि उसने हमें ऐसी बहुत सी चीजें दी हैं जो औरों को नहीं दी।
0: हाँ बाबूजी वो तो ठीक है, मगर अब ये सब कुछ कहने में तो आ ही जाता है ना।
1: अरे क्या घर का दुखड़ा लेकर बैठ गई, चाय नाश्ता लाओ। लीजिए बाबूजी ये तौलिया, हाथ में पहुंच लीजिए।
4: आओ बच्चों आओ, हमारे साथ नाश्ता कर लो।
2: नहीं बाबा,
3: हमने अभी खाना खाया है।
2: आप नाश्ता करिए।
4: अभी बच्चों की पढ़ाई कैसे चल रही है?
1: हाँ पढ़ाई तो ठीक है बाबूजी, लेकिन फीस और बस्ते का बोझ बढ़ता ही जा रहा है।
4: न जाने कौन सा तरीका अपनाया जा रहा है पढ़ाने का, हमारे ज़माने में तो कम सब्जेक्ट होते थे और आधा काम जो है वो जबानी होता था। गिनती पहाड़े पौने सवैया अधे सब जबानी और हिसाब फटाफट।
1: बाबूजी अब तो किताबें कॉपियां यूनिफॉर्म और आए दिन के चंदे और फीस इतना बोझ हो गया है कि उठाना मुश्किल पड़ रहा है। इसकी वजह से घर का खर्च चलाना बहुत कठिन हो गया है बाबूजी।
4: बहू तुमको भी कुछ करना चाहिए। आजकल एक की कमाई में घर खर्च बड़ी मुश्किल से चलता है।
0: अब और क्या करूं बाबूजी मैं, बस थोड़ा बहुत डांस क्लासेस चला लेती हूं, 100-200 रुपए वो मिल ही जाते हैं। अब घर के कामों में ही इतनी उलझी रहती हूं कि कुछ दूसरा करने की फुर्सत ही नहीं मिलती।
4: तुम बेटी कोई क्राफ्ट क्लास ज्वाइन कर लो और फिर सीख करके उससे थोड़ा सा लाभ उठा लो।
0: अब उसके लिए भी तो फीस देनी पड़ेगी ना बाबूजी, वो कहाँ से आएगी?
4: अरे भाई जब तक तुम प्रशिक्षण लोगी तुम्हें फीस के लिए पैसे

0: हम बेचते रहेंगे।
1: छोड़िए बाबूजी, आप यहाँ आए हैं आराम करने के लिए और गले लगा रहे हैं झंझटें।
2: अच्छा, तो आपको ये झंझट लग रही है? अरे बाबूजी, अपनी मर्जी से कुछ देने की बात कर रहे हैं तो आप बीच में अड़ंगा क्यों डाल रहे हैं जी?
0: ठीक है भाई, तुम लोग विवाद क्यों करते हो? मैं अपनी पेंशन से तुम्हें कुछ भेज दिया करूँगा।
1: अरे चलिए बाबूजी, आराम कर लीजिए, सफर में थक गए होंगे।
0: मैं यहीं पलंग पर लेट जाता हूँ।
3: मैं ऑफिस जा रहा हूँ मालती, तुम बाजार से सब्जी ले आना।
2: अरे आप रुकिए जरा, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मुझे मार्केट में छोड़ देना, आप सब्जी ले लूंगी वहीं से।
0: हनी बेटे
4: जी,
0: एक गिलास पानी पिलाओगे?
4: बाबा मैं आपके लिए क्या लाऊं?
0: अरे भाई तुम खुद आ जाओ, हम दोनों बातें करेंगे।
4: जी लीजिए बाबा पानी। बाबा आप हमारे लिए जो लाए हैं वो तो आपने अभी तक दिया ही नहीं।
0: अरे भाई तुम्हारे लिए हम जीन्स का कपड़ा लाए हैं और आशु के लिए फ्रॉक लाए हैं।
4: कपड़ा?
0: क्यों, क्या हुआ, इतना बुरा मुंह क्यों बना रहे हो?
4: बाबा 3 महीने तक जीन्स सिलने के लिए भी नहीं डाली जाएगी।
0: क्यों?
4: मम्मी पापा के पास उसके लिए पैसे कहाँ निकलेंगे?
0: क्यों नहीं निकलेंगे?
4: मम्मी पापा कहते हैं कि उनके सब पैसे खर्च हो जाते हैं।
0: किस बात में?
4: अब देखिए ना, हम दोनों की फीस, घर के सामान का खरीदना, क्लब की फीस, ब्यूटी पार्लर का खर्चा, और भी खर्चे हैं बाबा, अब मैं आपको क्या क्या बताऊं?
0: अच्छा भाई, हम दर्जी के यहाँ चलकर तुम्हारी जींस सिलवा लेंगे।
4: जी।
0: और हमारी आशु बेटी को क्या चाहिए?
5: बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपके पैसे खर्च करवाना नहीं चाहती।
0: अच्छा, तो तुम इतनी समझदार कब से हो गई?
5: बाबा मम्मी कहती हैं पैसे जोड़ जोड़ कर रखने चाहिए, वक्त जरूरत पर काम आते हैं।
0: वो ठीक कहती हैं।
4: बाबा अब हमें मम्मी पापा के कमरे में रहना पड़ेगा, वहीं पढ़ना पड़ेगा, वहीं सोना पड़ेगा।
0: क्यों?
4: आप आए हैं ना, आपको हमारे कमरे में ठहराएंगे। मम्मी कह रही थी जब 2-4 दिन बाद आप चले जाएंगे तो फिर हम अपने कमरे में रहने लगेंगे।
0: 2-4 दिनों में नहीं बेटे, हम कल ही चले जाएंगे। मैं तुम लोगों को तकलीफ देने नहीं आया हूँ बेटे। अच्छा अब थोड़ी देर आराम।
2: बाबूजी सो गए क्या?
0: अरे बेटी इतनी जल्दी आ गई तुम। और हाँ, कल मुझे जबलपुर जाना है, ये पैसे लो, मेरे लिए रिजर्वेशन करा दो।
1: क्या बात है बाबूजी, अभी आए हैं और अभी जाने की बात करने लगे।
0: अरे भाई तुम लोगों को देखने का मन था, देख लिया। बच्चों और बहू से मिल लिया, अब थोड़ा सा धर्मेंद्र के पास भी हुआ हूँ, उसे भी देख लूँ।

0: बेटा धर्मेंद्र।
1: अरे अरे बाबूजी आप, बाबूजी आप, अरे आने की सूचना तो दे दी होती, मैं स्टेशन पर आ जाता। मकान ढूंढने की परेशानी तो नहीं उठानी पड़ती आपको?
0: अरे नहीं भाई, कोई परेशानी नहीं। बहू कहाँ है?
1: जी बहू जी, वो डॉक्टर के यहाँ गई है।
0: डॉक्टर के यहाँ?
1: जी
0: क्यों?
1: बाबूजी वो प्रेग्नेंट है ना।
0: धर्मेंद्र
1: जी,
0: तुम लोग पढ़े लिखे हो, तुम्हारे दो दो बच्चियां हैं
1: जी,
0: फिर भी ये सब क्या है? क्या तुम्हें भविष्य की चिंता नहीं है?
1: है ना बाबूजी, लेकिन वो क्या है?

0: बाबू जी, आपकी बहू को एक लड़के की चाह है।
1: क्या पागलपन है। लड़का और लड़की दोनों बराबर होते हैं। तुम अपनी सास को बुलाओ।
0: जी।
1: उसको बुला लो।
0: हाँ।
1: वो यहाँ आकर के तुम लोगों की और बहू की देखभाल करेगी।
0: जी जी।
1: हाँ, एक बात और।
0: जी बोलिए बाबू जी।
1: कल मेरा वापस जाने का रिजर्वेशन भी करा दो।
0: जी, इतनी जल्दी बाबू जी?
1: तुम लोगों की तकलीफों में एक और तकलीफ बढ़ाना मैं नहीं चाहता।

0: अरे मालिक प्रणाम, आप बहुत जल्दी आ गए।
1: हाँ महेश, ऑटो से सामान तो उतार ला।
0: जी मालिक।
2: अरे भाई प्रसाद जी, इतनी जल्दी आ गए।
1: हाँ भाई, मगर आप भी तो यहीं दिख रहे हैं, क्या बच्चों के पास नहीं गए?
2: गया था, परंतु मैं उनके यहाँ फिट नहीं हो पा रहा था, इसलिए तीसरे ही दिन चल दिया। और आप?
1: मैं दूसरे ही दिन।
2: क्या हम बूढ़े यूं ही उपेक्षित रहेंगे?
1: लगता है अब यही नियति हो गई है।
2: जब तक सांसें हैं तन्हाई झेलनी है।
1: सच में जोशी जी, मन बना लो। क्योंकि बहुत दिनों तक रहना होगा उपेक्षित।

0: अभी आप सुन रहे थे नाटक उपेक्षित। लेखक थे घनश्याम सिंह तोमर। भाग लेने वाले कलाकार थे के बी सोनी, मकबूल हसन, प्रेम प्रकाश अष्ठाना, राकेश जैमिनी, बद्रुन्निसा, पूनम भार्गव, प्रेरणा थॉमस और अशोक बुलानी। प्रस्तुति सहयोग आनंद सिंह उद्दे का था और इस नाटक के प्रस्तुतकर्ता थे चित्रेंद्र स्वरूप राजन।
1: अभी आप घनश्याम सिंह तोमर द्वारा लिखित नाटक उपेक्षित सुन रहे थे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। कार्यक्रम में आनंद लीजिए पंडित विश्व मोहन भट्ट द्वारा गिटार वादन का। राग है रागेश्री।

0: अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे हिंदी में समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में आज 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR कराने का अधिकार रखता है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये

0: नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरा पर भी यह पराजय हुई है।
1: असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है। राष्ट्रपति ने ईद उज जुहा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि यह पर्व समर्पण, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर जरूरतमंद वरिष्ठजन और बच्चों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन साथ ही DTH के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय हमारे स्टूडियोज़ की घड़ी में रात्रि के 11:10:18 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा यहीं संपन्न होती है। कल सुबह 5:55 पर आकाशवाणी प्रसारण सेवा लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।